मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:55 और 46 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

सुबह की बेला में जब रिमझिम बारिश की बूंदें धरती को छूती हैं, तो सारा वातावरण सौंधी खुशबू से महक उठता है। पत्तों पर ठहरी हुई मोतियों सी चमकती हैं ये बूंदें, और पक्षियों का मधुर कलरव मन को आनंद से भर देता है। हर बूंद जैसे संदेश देती है कि जीवन में नई शुरुआत का अवसर हमेशा मौजूद है। नमस्ते लखनऊ में, मैं अंजलि श्रीवास्तव भोर की सुहानी बेला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, समय है समाचारों का। आइए चलते हैं दिल्ली केंद्र।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
1: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। आईएमएफ द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वो ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से समाचार। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6:05 हो चुके हैं। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम वंदना का।

आप सुन रहे थे संवेद स्वर में देश के देवता। आइए अब सुनते हैं किशोरी अमोनकर के स्वर में मारो प्रणाम।

भक्ति वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है। भक्ति वह सरिता है जो मन को निर्मल और हृदय को पावन बनाती है। और वंदना वह सेतु है जो भक्त को भगवान से जोड़ देती है।

0: कार्यक्रम वंद्रा में आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में मूल आलन सो प्रीत बनी, और उससे पहले सुना आपने हरिओम शरण के स्वर में तेरे द्वार खड़ा आन मिलो। इसी के साथ ही कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम चिंतन का।
1: मनुष्य के जीवन का इतिहास सदियों पुराना है। इस विश्व में प्रत्येक पल में जीवन आगमन होता है, लेकिन महामानव सदियों में एक पैदा होता है। और महात्मा गांधी एक ऐसे ही महामानव थे जिनका व्यक्तित्व बहुआयामी तथा चिंतन व्यापक, विशाल, आधार सत्य, अहिंसा व लक्ष्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था। गांधी जी के चिंतन बोध में सत्य अहिंसा के अतिरिक्त उनका एक अत्यंत महत्वपूर्ण व चर्चित संबल था सत्याग्रह। 11 सितंबर 1906 के दिन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा के उस शस्त्र साधन का जन्म हुआ जिसने निर्बल को बलवान बनाया, सभी कौम को एक किया और इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का अंत किया। बापू ने सत्याग्रह की शक्ति का प्रयोग कर दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार के दमन के खिलाफ आवाज उठाई। ये बतलाया कि हिंसा से केवल बड़ी हिंसा का ही साम्राज्य बढ़ता है। इसके साथ ही इसमें केवल राज्यकर्ता बदलते हैं और राजतंत्र वही रहता है, और इसी कारण कमजोर वर्ग के लोगों का शोषण करने की सत्ता केवल कुछ लोगों के हाथों में ही फेर बदल कर आती रहती है। 11 सितंबर 2001 और 11 सितंबर 1906 विश्व इतिहास के पटल पर ये दो अहम तारीख हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं, एक प्रतिबिंब की तरह। यदि यह केवल एक संयोग है तो कोई मामूली संयोग नहीं, शायद प्रकृति की तरफ से हमें एक वैधानिक चेतावनी, क्योंकि सत्याग्रह का जन्म भी 100 वर्ष पूर्व 11 सितंबर के दिन ही हुआ। एक तारीख निर्भय व स्वाधीन बनाने की तो दूसरी भयभीत और पराधीन करने की। इसमें से हम जिस किसी के इतिहास को अपना इतिहास समझेंगे वही यह तय करेगा कि दुनिया में कौन सी छवि को हम अहमियत देना चाहते हैं और किस छवि के साथ जीना व बढ़ना चाहते हैं। साम्राज्यवाद व आतंकवाद की शक्ति का हिस्सा बनके या उसके जवाब की शक्ति का हिस्सा बनकर। जिस 11 सितंबर का दिन सन 2001 से पूरे विश्व में आतंकवाद के लिए याद किया जाने लगा, तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इसके ठीक उलट 11 सितंबर 1906 का दिन भी इतिहास में सत्य और अहिंसा की शक्ति सत्याग्रह को मनवाने वाले दिन के तौर पर ही दर्ज है। गांधी जी द्वारा यही तारीख अहिंसावादी और सत्य के दर्शन सत्याग्रह के नाम पर भी इतिहास में दर्ज है। 11 सितंबर 2001 की घटना जिसने मानवता को शर्मसार किया, हमें यदि इसका सशक्त व उचित जवाब देना है तो हमें चाहिए कि हम फिर से 11 सितंबर 1906 को रचे इतिहास को दोहराएं। पश्चिम वाले गांधी जी की प्रासंगिकता को समझ गए हैं और कई जगह पर प्रयास जारी हैं। विश्व में बस दो ही विकल्प बचे हैं, पहला है हिंसा और मानव जाति के अंत का, और दूसरा है प्रेम, आपसी भाईचारे, सद्भाव और इन सब की परिणति के लिए सत्याग्रह का। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गांधी अपने चिंतन के साथ अमर थे, अमर हैं और हमेशा रहेंगे।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर 6:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार होंगे रंजना जोगिलकर और संगीत होगा सतीश भाटिया का। कार्यक्रम खेती की बातें में 6:45 पर सुनी जा सकेगी डॉक्टर जेपी सिंह की वार्ता। वार्ता का विषय होगा कृषि कार्यों के साथ लघु उद्योग। और 7:10 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आप सुनिएगा डायबिटीज कारण और उपचार पर डॉक्टर मनोज शर्मा से पृथ्वीराज चौहान की बातचीत।

प्रातः 7:31 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम आसपास। सुनीता धाकड़ के गाए हुए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:45 पर। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा पंडित निखिल बैनर्जी से राग अहीर भैरव में सितार वादन। 11:00 आज के कलाकार कार्यक्रम में हम बात करेंगे निर्देशक गुरु दत्त के बारे में और सुनवाएंगे उन्हीं की फिल्मों से कुछ नगमे। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा हरियाली और खुशहाली। 12:00 आप सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

दोपहर 1:15 पर कार्यक्रम घर संसार में सुनी जा सकेगी। घरेलू हिंसा से ना हारे पर चर्चा। साथ ही आप सुनेगा डॉक्टर शैली अग्रवाल से वार्ता, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। 3:30 पर कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में सुनेगा डॉक्टर अंकिता शर्मा से अनिंद्र सिंह की बातचीत। भेंट वार्ता का विषय होगा फाइलेरिया हाथी पांव, लक्षण कारण और बचाव। 4:00 आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से संदेश डू सोल्जर्स। हमारी संध्याकालीन सभा में शाम 5:30 पर आप सुन पाएंगे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, जिसमें चर्चा का विषय होगा कमी समय की या स्पष्टता की। साथ ही आप सुनेंगे नीलम जादौन से वार्ता, योग से कैसे रहें स्वस्थ। शाम 6:00 कार्यक्रम ग्राम्य लोक में आप सुनेंगे कैसे पूरा हो किसान की 2 गुनी आय का सपना के विषय में डॉक्टर वीके सचान से अनिंद्र सिंह की बातचीत। इसी कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना।

शाम 6:30 पर मजदूर मंडल कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा के विषय होंगे संयुक्त परिवार और श्रमिक जीवन और मेरा देश मेरी शान। 7:10 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेगा डॉक्टर आर के भारती से धमनियों में घुलता जहर। रात्रि 10 बजे आकाशवाणी आगरा से आप सुनेंगे काव्य गोष्ठी संख्या संवाद।

और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित मल्लिका अर्जुन मंसूर से राग रामदासी मल्हार में ख्याल गायन। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

प्रभु की लीला और माया का अद्भुत दृश्य उपस्थित है अयोध्या में, जो सर्वत्र व्याप्त निरंजन अर्थात माया रहित निर्गुण और अजन्मा ब्रह्म है। वह भक्ति और प्रेम के वश होकर माता कौशल्या की गोद में नन्हा शिशु बनकर खेल रहा है। नील कमल और जल से भरे मेघ के समान इस बालक के शरीर में करोड़ों कामदेवों का अनुपम मनोहारी रूप है। चरण के तलवों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह अंकित हैं। नन्हे नन्हे पांव से पैंजनी की ध्वनि मुखरित होती है तो मुनियों का मन विमोहित हो जाता है। लाल कोमल होठों से उच्चरित मधुर तोतले शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। चिकने घुंघराले बालों को माता ने कई प्रकार से बनाया संवारा है। ऐसी ही मनोहारी छवि है पीले झंगली में लिपटे शरीर के हाथों और घुटनों के बल चलने की। बाल लीला देखने और उसके सुख का भागी होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति जोड़ी है। भगवान शंकर पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, इस प्रकार जगत के माता पिता अवधपुर के निवासियों को सुख दे रहे हैं।

0: आप सुन रहे थे रंजना जोगिल कर के स्वर में श्री राम चरित मानस कान। संगीत था सतीश भाटिया का। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम खेती की बातें का, तो आइए सुनते हैं डॉक्टर जेपी सिंह की वार्ता। वार्ता का विषय है कृषि कार्यों के साथ लघु उद्योग।
1: प्रिय किसान भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप सभी लोग परिचित हैं कि कृषि व्यवसाय एक प्रमुख धंधा माना जाता है और अपने

इस व्यवसाय एक प्रमुख धंधा माना जाता है और अपने देश की कुल जनसंख्या का लगभग 70% लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े कार्यों पर कार्यरत हैं। कृषि कार्यों की जब बात आती है तो मुख्य रूप से कृषि व्यवसाय पर आधारित उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है जिनके अंतर्गत ज़्यादातर किसान भाई कार्यरत हैं। इनमें मुख्य रूप से फसल संबंधी कार्य, जिनके खेत की तैयारी से लेकर बीज की बुआई एवं बीज शोधन, खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग, विधि एवं मात्रा, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, मात्रा एवं विधि, उचित सिंचाई का प्रबंध, जल निकास का प्रबंध, खरपतवार नाशक दवाइयों एवं इनके निराकरण संबंधी कार्य, फसल की कटाई मड़ाई और अन्न भंडारण एवं विपणन करना, सभी कुछ आता है। यह कृषि कार्य वर्ष भर ऋतुओं और फसल प्रणाली पर आधारित होते हैं। फसलों के अलावा साग भाजी, सब्जियों की खेती, फल उत्पादन एवं फूल वाली फसलों के कृषि कार्य भी होते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो एक सफल एवं प्रगतिशील किसान को चाहिए कि वो प्रमुख कृषि कार्यों के साथ साथ लघु उद्योगों का अवश्य अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में योगदान करें। समय परिवर्तन के कारण कृषि धंधा पर आधारित जीवन यापन करना मुश्किल होता जा रहा है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाने की वजह से समय पर बरसात करना होना अनुत्पादन में बाधक हो रही है। जोत के हिसाब से ज़्यादातर किसान छोटे एवं सीमांत जमीन वाले हैं और ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को चाहिए कि अपनी सहूलियत, कच्चे माल की उपलब्धता, विपणन की उचित व्यवस्था एवं कार्य कौशल एवं उचित देखभाल की सुविधा को देखते हुए लघु उद्योगों को अपनाने में आगे आएं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त के बाद से प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत लघु उद्योगों, जिनमें कुटीर उद्योगों को भी शामिल किया गया है, काफ़ी जोर दिया गया है। इन लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने देश के गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों को अनेकों प्रकार की वित्तीय सहायता व छूट का प्रावधान रखा है। लघु उद्योगों की संख्या वैसे तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिनका योगदान आर्थिक रूप से बेहतर है उनमें पशुपालन, भेड़ बकरी पालन, खरगोश पालन, बटेर पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, बतख पालन, मत्स्य पालन, रेशम के कीड़ों का पालन, मधुमक्खी पालन, तेंदुपत्ता द्वारा बीड़ी निर्मित कार एवं सामाजिक वानिकी आदि में से किसी एक दो का चुनाव करके अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात का उल्लेख अवश्य करना चाहेंगे कि लघु उद्योगों में मजदूरों का प्रयोग ज़्यादा होता है, इसलिए इस बात का किसान भाई अवश्य ध्यान रखें कि मजदूरों की उपलब्धता किसी भी लघु उद्योग को शुरू करने से पहले सुनिश्चित कर ले। इन लघु उद्योगों की द्वितीय श्रेणी, जिनको कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है, इनके बारे में भी कुछ जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से किसान भाई ऐसे भी हैं जिनके पास खुद के परिवार के सदस्य संख्या में ज़्यादा हैं और उनके पास समय होते हुए भी कार्य करने के अवसर कम होते हैं। ऐसे में कुटीर उद्योगों को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। प्रमुख कुटीर उद्योगों में सिलाई कढ़ाई व बुनाई का कार्य, खिलौने बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मूर्ति बनाना, मोमबत्ती बनाना, लाख का सामान बनाना, साबुन बनाना, जूट एवं नारियल से रस्सी बनाने का कार्य, चटाई व पंखे बनाने का कार्य, अचार मुरब्बा बनाने का कार्य, ऊन से धागों गोलों का निर्माण, बबूल खैर एवं अन्य प्रकार के पेड़ों से गोंद निकालकर उससे उपयोगी सामग्री का निर्माण, बढ़ई एवं लोहारगिरी से निर्मित वस्तुओं का निर्माण, पत्तल दोनों का निर्माण एवं अन्य कार्य आते हैं। किसान भाई एवं कृषक मजदूर अपनी सुविधा, रुचि, आवश्यकता एवं श्रम करने वाले सदस्यों की संख्या के आधार पर कोई सा उद्योग का चुनाव कर सकते हैं। कृषि कार्य से जुड़े लोगों के पास साल भर में बहुत सा समय खाली रहता है अथवा परिवार के बहुत से सदस्य व्यर्थ में बैठे रहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक परिवार कम से कम एक उद्योग को अपनाकर अपने श्रम,
कार्य कौशल का प्रयोग

0: करके आर्थिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों ने विशेष रूप से योजनाएं बनाई हैं, जिनके क्रियान्वयन हेतु समाज के अति कमजोर वर्ग के लोगों, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के उत्थान हेतु विशेष अनुदान एवं ऋण व्यवस्था को सुनिश्चित किया है। ग्रामीण महिलाओं के लिए नवाकरा कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक और राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा आर्थिक सहायता देकर छोटे छोटे नए काम धंधे शुरू करने में मदद कर रही हैं। इनमें महिला उद्यम निधि, महिला विकास निधि, जिनके अंतर्गत रेशम उद्योग, कताई, कसीदाकारी, हथकरघा, बांस का सामान, बेकरी का काम व चमड़े का काम इत्यादि धंधों में प्रशिक्षण देकर महिलाओं को निजी धंधा करने हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अलावा ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम ये माइक्रो क्रेडिट योजना के अंतर्गत देश में छोटे काम धंधों को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी सुधार कार्यक्रम, कुशल संचालन, अच्छा सामान बनाना, काम के लिए पूंजी उपलब्ध कराना आदि भी जो है कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ऐसे काम धंधों में तसर रेशम, मुर्गी पालन, दूध और दूध से बनी चीज़ें, मछली उद्योग, सिले सिलाए वस्त्र, सिलाई, मशरूम उगाना, कलाई बुनाई व ऊन इत्यादि आज सम्मिलित है। इस प्रकार से किसान भाई एवं अन्य वर्ग के लोग लघु एवं कुटीर उद्योगों को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में आप सुन रहे थे डॉक्टर जेपी सिंह की वार्ता। वार्ता का विषय था कृषि कार्यों के साथ लघु उद्योग।

मीडियम वेव 196.1 मीटर था 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, आप सुनेंगे कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: यत् असौ ऑस्ट्रेलिया देशस्य समकक्षेण एन्थनी एल्बनीज इत्यनेन सह संवादम् आचरिष्यति। असौ एतदपि कथितवान् यत् भारताऑस्ट्रेलिया सहभागित्वस्य महत्वपूर्ण स्तम्भेन भारतीय प्रवासिना सह संवादाय अवसरः अपि प्राप्स्यामि इति। यात्रावधौ श्रीमोदी तृतीये भारताऑस्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। असौ भारताऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकार्याधिकारी मञ्चे अपि भागं ग्रहीष्यति, यत्र सः उभय देशयोः प्रमुखानां व्यापार नेतृणां समागममपि सम्बोधयिष्यति। भारत म्यांमार देशौ द्वैपाक्षिक सुरक्षा सहकारिता विषये चर्चां कृतवन्तौ। द्वैपाक्षिक संवाद व्यवस्थायाः अन्तर्गते प्रगतिं च समीक्षितवन्तौ। भारत म्यांमार देशयोः मध्ये त्रयोविंशतितमं द्विदिवसीय राष्ट्रिय स्तरीय सम्मेलनम् अद्य ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। गृहमन्त्रालयः अवदत् यत् भयोत्पादनं विद्रोहः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणं शस्त्राणां क्रयविक्रयणं मानवव्यापारं वन्यजीवानां क्रयविक्रयणम् इत्यादीनां संघटितानां अपराध प्रकाराणां निवारणार्थं सहकारिता विषये उभयपक्षौ चर्चां कृतवन्तौ। भारत रूस देशाभ्यां ह्यः संयुक्त राष्ट्र ब्रिक्स यूरेशियन समूह शंघाई सहयोग संघटनानि समेत्य बहुपाक्षिक मंचेषु आतंकवादरोधी सहयोगम् इतोपि सुदृढीकरणस्य प्रतिबद्धता पुनरुद्घाटिता। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूहस्य चतुर्दशोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितमासीत्। द्वौ देशौ सीमापारे आतंकवादं समेत्य आतंकवादस्य सर्वेषां रूपाणां अभिव्यक्तिनां च निन्दां कृतवन्तौ। भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान संघटनम् मध्यप्रदेशस्य श्योपुरनगरस्य एरियल डिलीवरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इत्यस्य ड्रॉप जोन इत्यत्र गगनयान उपक्रमस्य कृते महत्वपूर्णं एकीकृतं IMAT इति परीक्षा सफलतया आयोजिता। भारतर्तु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैऋत्य प्रावृषे उत्तर अरबसागर राजस्थाने गुजरात हरियाणा पंजाब इत्येतेषां शेष भागेषु अग्रे गन्तुं स्थितिः अनुकूलः अस्ति। अद्य अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय बिहार पूर्व राजस्थान मध्यप्रदेश उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम पश्चिमोत्तर प्रदेशानां केषुचित् भागेषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानितम्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन ह्यः श्री अमरनाथजी यात्रामुद्दिश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता, यस्यां सर्वैः तीर्थयात्रिभिः पञ्जीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकञ्च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्योपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् एव पूर्वमेव अग्रिम पञ्जीकरणं करणीयम् अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनांके एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पञ्जीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसंख्यासु एव उपलब्धा अस्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी आधिकारिक मंच को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापारिक साझेदारियों को हमें ऊंचाइयों पर ले जाना है।
2: भारत आपके फंड्स को सेफ स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है।

0: पेकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय को गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे और इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के फिर से किए गए हमलों को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की समाप्ति के बाद किए गए हैं। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का 4th मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इससे पहले 3rd मैच में भारत को इंग्लैंड से 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Discussions between the two leaders are expected to focus on strengthening cooperation in trade, defence, critical technologies, education and people-to-people ties. His visit is expected to provide fresh momentum to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. Prime Minister Modi participated in the India-Australia CEOs Forum in Melbourne this morning and addressed business leaders from both the countries.
0: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का

0: बाद
1: अच्छा
0: या जो भी। और यदि ये सुगर की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, 200 के आसपास पहुंच जाती है, तो ये शरीर में हानिकारक प्रभाव डालती है, तभी बीमारी का रूप ले लेती है। हम इस बीमारी को मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं।
1: डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या होते हैं?
0: मधुमेह जब या डायबिटीज बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ती है, शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ती है, तो पेशाब बहुत ज्यादा आती है।
1: अच्छा,
0: पेशाब जब जहां जाएंगे तो वहां हो सकता है कि चींटे लग जाएं, प्यास, क्योंकि पेशाब ज्यादा जाएगी तो प्यास ज्यादा लगेगी, पेशाब में शुगर निकलेगा, इसलिए आपको भूख भी बहुत ज्यादा लगेगी।
1: अच्छा,
0: ये तो सीधे सीधे से लक्षण हुए। इसके अलावा क्योंकि शरीर में शुगर ज्यादा है तो कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसी के हिसाब से लक्षण बनते चले जाते हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे कि आपके पैर में कोई चीज कट गई तो अब वो ठीक नहीं हो रहा, जुकाम खांसी बार बार हो रहा है, कहीं और इन्फेक्शन, पेशाब में बार बार इन्फेक्शन लग रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेशन के रूप में आती हैं। यदि हम लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन की बात करें

0: आपको बच्चों में भी ये टाइप 2 वैरायटी मिलती है।
1: अच्छा।
0: और ये ज्यादातर मोटे लोगों में बहुत मिलती है, जिनके घर में डायबिटीज है उनमें भी मिलती है।
1: हाँ।
0: सेडेंटरी जो कि काम नहीं करते जो लोग, उनमें भी काफी मात्रा में ये पाई जाती है।
1: अच्छा।
0: तो अब उम्र का जो क्लासिफिकेशन था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अभी किसी भी उम्र में पाई जा सकती है।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब मधुमेह की चपेट में ना आए या ये रोग ना पकड़े, इसके लिए ऐसे क्या प्रयास होने चाहिए?
0: इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने जीवन दिनचर्या में बदलाव लाया जाए।
1: अच्छा।
0: और इसके लिए हम सुबह या दोपहर या शाम कभी भी व्यायाम कर सकते हैं, आधा एक घंटे रोज व्यायाम करें, अच्छा हो सुबह करें।
1: अच्छा।
0: शरीर का वजन ज्यादा है तो उसे आदर्श स्तर पर वजन कम करके लेके आए, परहेज करें, मीठा बहुत ज्यादा ना खाएं। यदि हमें कहीं जाना है, पैदल चल सकते हैं तो पैदल चलें, सीढ़ियां चढ़ें, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। तो ये 2-3 चीजें हैं, व्यायाम, इसके अलावा परहेज और वजन कम करना। ये 3 काम यदि करेंगे हम,
1: हाँ।
0: तो इस शुगर की चपेट में शायद हम ना आए। और यदि कोई आ भी गया है,
1: हाँ।
0: शुरुआती तौर में है, तो ये 3 दवाइयां ही समझें आप जो शुगर को कंट्रोल कर लेंगे।
1: अच्छा।
0: तो ये अत्यावश्यक है कि 3 चीजें करें। उसके बाद फिर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो फिर दवाइयों की बात आती है, जिसमें कि ओरल दवाइयां भी हैं, इंजेक्शन भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किन्हीं को मधुमेह हो गई है तो वो गोलियां इसके लिए खाएं या इंसुलिन का इंजेक्शन लगाएं, इस पशुपेश में रहते हैं और ये तय नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं, तो क्या उपयुक्त रहता है?
0: जैसा मैंने बताया कि डायबिटीज 2 तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 का मतलब है कि शरीर में जो शुगर के इस्तेमाल के लिए इंसुलिन की मात्रा की आवश्यकता है वो शरीर में बन ही नहीं रही है या बहुत कम बन रही है, तो आपको बाहर से इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरे टाइप की जो डायबिटीज है, जिसमें इंसुलिन बन रही है, शुरुआत में थोड़ी ज्यादा भी बन रही है, लेकिन इंसुलिन जो बन रही है काम नहीं कर रही है आपके शरीर में, इसलिए वो टाइप 2 डायबिटीज में ओरल दवाइयों से, मुंह से खाने वाली दवाइयों से काम चल सकता है शुरुआत के दौर में, और आप बहुत लंबे टाइम तक उसे कंट्रोल रख सकते हैं दवाइयों से। तो इसलिए टाइप 1 में तो बिना दवाइयों का कोई चारा है ही नहीं, बिना इंसुलिन का कोई चारा है ही नहीं, आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने ही पड़ेंगे। टाइप 2 में कुछ टाइम तक, कुछ समय तक आप दवाइयों से काम चला सकते हैं। अब ये कहा जाता है कि पैंक्रिया जो इंसुलिन बनाता है वो यदि हम उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व रखें टाइप 2 डायबिटीज में भी, वो हम ये कर सकते हैं कि कुछ दवाइयां खाएं और कुछ इंसुलिन बाहर से ले लें, तो हमें सबसे अच्छा इलाज मिलेगा।
2: कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आप सुन रहे थे डॉक्टर मनोज शर्मा से पृथ्वीराज चौहान की बातचीत। भेंट वार्ता का विषय था डायबिटीज कारण और उपचार।

इसी देशगान के साथ ये कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: दुर्घटना कवर, 1.6 करोड़ का ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के साथ ही किसी अनहोनी की दिशा में शिक्षक या कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर इसमें प्रदान किया जाएगा। यह एक नई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिली है।
1: प्रदेश के अन्य जिलों में भी मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ के मौके पर कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इस अवसर पर सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित कार्यक्रम को डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने संबोधित किया। श्री पाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की इस पहल से शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के लाखों परिवारों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए आभार जताते हुए जौनपुर के शिक्षक राजेश पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस योजना के माध्यम से शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए समस्त शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना की जो शुरुआत की है, यह बहुत ही सराहनीय पहल है। इसके लिए पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह योजना लाखों लाख शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी समस्याओं और उनकी चिंताओं का समाधान करेगा।
1: वाराणसी के बाद मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर में पहुंचकर माँ विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया और विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। श्री योगी ने विंध्य मंडल के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं से संबंधित सभी प्रस्ताव 15 जुलाई तक शासन को भेज दिए जाएं। श्री योगी ने कहा कि 15 अगस्त तक स्वीकृत योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की लागत वाली 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट में अब निवेश आ रहा है, जिससे जनपद के विकास को गति मिल रही है।
3: अब निवेश यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि अब भय नहीं है, अब तो निवेश का वातावरण है। 4 लेन की सड़कें हैं, एक सुंदर चित्रकूट हम सबके सामने है और वह आज हम सबको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज तो यहाँ पे हम लोग एक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में, यानी ये आध्यात्मिक टूरिज्म तो था ही, अब इको टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व को भी यहाँ पे के लिए आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने कल 3 आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लोकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग भी पहुंची। वहीं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से कल कई साधु संतों ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद महंत राजकुमार दास ने कहा कि आगामी दिनों में ट्रस्ट में बड़े परिवर्तन होंगे, जिसकी जानकारी जल्द ही ट्रस्ट द्वारा साझा की जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कल उन्होंने बताया कि 450 मीटर लंबा यह अंडरपास देश की अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। वहां ऊपर विमानों के संचालन के दौरान नीचे सड़क यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का कल 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में 1246 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने भाषा विश्वविद्यालय में शुरू होने जा रहे

0: नए कोर्सेज के बारे में चर्चा की।
1: ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में पूर्व से संचालित भाषाओं के साथ साथ अब जर्मन, जापानी और चीनी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। यह पहल विद्यार्थियों के लिए विश्व के ज्ञान द्वार खोलने के साथ साथ उन्हें वैश्विक अवसरों से भी जोड़ेगी। इसके साथ ही अवधि भाषा में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रयास विशेष रूप से अभिनंदनीय है।
0: प्रदेश में 12 जुलाई को होने वाले पौधरोपण महाअभियान को लेकर वन विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रदेश की 2600 से अधिक नर्सरियों में 57 करोड़ 62 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। प्रयागराज पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश के वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है।
2: पूरी दुनिया इस समय ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रही और इस बार 35 करोड़ जब हमारे यहाँ पेड़ लग जाएंगे, जब से 9 साल में हम लोग 275 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड 35 करोड़ का इस बार का लक्ष्य है, उससे ज्यादा ही लगते हैं जितना लक्ष्य होता है, तो यह हम लगाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वन आच्छादन का जो क्षेत्र है वो घटा नहीं, वो बढ़ा है।
0: राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में कल हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। वहीं गोरखपुर सहित कई पूर्वी जिलों में हल्की बूंदाबांदी का क्रम जारी है। इस अंचल में हल्की हवाओं के चलने के बावजूद उमस का असर कायम है। इस बीच मौसम विभाग ने 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1,320 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है चित्रकूट। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी। 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर की गई पूछताछ। और वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर बनाया जा रहा है देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपको। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
5: आप सुन रहे थे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा, और मैं हूं आपका मित्र सागर छकी। स्वागत है आपके पसंदीदा सूचना परक कार्यक्रम आस पास में। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं हमारे चारों ओर घट रही

गतिविधियों की, उन छोटी बड़ी घटनाओं की जो सीधे तौर पर हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। दोस्तों, हमारे आसपास हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है, कहीं सामाजिक पहल, कहीं सांस्कृतिक आयोजन, तो कहीं नई योजनाएं और सुविधाएं। लेकिन व्यस्त जीवन की दौड़ में हम कई बार इन जरूरी जानकारियों से दूर रह जाते हैं। यही कारण है कि आसपास लेकर आता है आपके लिए आपके ही शहर, आपके ही इलाके की ताजा और उपयोगी जानकारी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको आपके आसपास की हर जरूरी खबर से रूबरू कराएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की पहली जानकारी के साथ।

श्रोताओं, यूपी बनेगा स्टार्टअप हब, भत्ता बढ़कर 20,000। उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप का केंद्र बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए राज्य सरकार ने नई स्टार्टअप नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत स्टार्टअप का भरण पोषण भत्ता बढ़कर 20,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। साथ ही 100 करोड़ रुपए तक की दीर्घावधि पूंजीगत सहायता दी जाएगी। नई नीति में पूर्वांचल और बुंदेलखंड पर विशेष फोकस किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 17,000 स्टार्टअप पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में एक स्टार्टअप मिशन निदेशालय के गठन के प्रस्ताव और डाटा सेंटर नीति 2026 को भी मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री व सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई स्टार्टअप नीति का उद्देश्य नवाचार और निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार व स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। नई नीति के तहत स्टार्टअप के भरण पोषण भत्ते को 17,500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। यूपी में कक्षा 6 से करियर काउंसलिंग। श्रोता, मुख्य सचिव ने भारत सरकार की नई इंटीग्रेटेड स्कीम इन स्किलिंग आर्किटेक्चर की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना को विभागों के बेहतर समन्वय, उद्योगों की सक्रिय भागीदारी और परिणाम आधारित कार्य प्रणाली के साथ लागू किया जाए। बैठक में कक्षा 6 से विद्यार्थियों के लिए चरणबद्ध करियर काउंसलिंग व्यवस्था, विद्यालय प्रबंधन समितियों में उद्योग विशेषज्ञों की भागीदारी, विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत बनाने, आईटीआई और उद्योगों के बीच समन्वय बढ़ाने, राज्य इंटर्नशिप योजना, अंतर्राष्ट्रीय भाषा प्रशिक्षण, कौशल मंदिरों की स्थापना, रोजगार संगम पोर्टल के उन्नयन, विभागों के प्रभावी अभिसरण जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया गया। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण, करियर मार्गदर्शन और रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे। श्रोताओं, पिछले एक दशक में भारत में जबरदस्त तकनीकी बदलाव आया है। कभी डिजिटल उत्पादों और सेवाओं के एक बड़े बाजार के रूप में देखे जाने वाला भारत अब तेजी से प्रौद्योगिकी निर्माता, नवाचार केंद्र और वैश्विक डिजिटल विकास में एक भरोसेमंद साझेदार।

के रूप में उभर रहा है। निरंतर निवेश, मिशन आधारित कार्यक्रमों और बड़े पैमाने की डिजिटल हम संरचना के माध्यम से भारत विकसित भारत 2047 की तकनीकी नींव तैयार कर रहा है। यह परिवर्तन आपस में जुड़े तीन स्तंभों, राष्ट्रीय क्षमता का विस्तार, तकनीकी सामर्थ्य को मजबूत करना और वैश्विक विश्वसनीयता बढ़ाना पर आधारित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सेमीकंडक्टर से लेकर क्वांटम प्रौद्योगिकी, सुपर कंप्यूटिंग, क्लाउड अनुसंरचना और जैव प्रौद्योगिकी तक भारत भविष्य की तकनीकी में नेतृत्व के लिए आवश्यक इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। 2015 में शुरू किया गया डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत की तकनीकी यात्रा की रीढ़ रहा है। कनेक्टिविटी में बड़े निवेश से ऑप्टिकल फाइबर कवरेज 2019 के 19.35 लाख रूट किलोमीटर से बढ़कर 2025 में 42 लाख रूट किलोमीटर से अधिक हो गया है। भारत ने दुनिया में सबसे तेज 5G विस्तारों में से एक हासिल किया है, जहां सेवाएं लगभग हर जिले तक पहुंच चुकी हैं। इसका प्रभाव व्यापक रहा है। इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या वर्ष 2014 में 25 करोड़ थी, जो वर्ष 2026 में बढ़कर 102 करोड़ से अधिक हो गई है। वहीं ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या भी 6 करोड़ से बढ़कर लगभग 100 करोड़ हो गई है। इस दौरान सस्ता डेटा भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा। औसत मासिक डेटा खपत वर्ष 2014 के 61 MB से बढ़कर वर्ष 2025 तक 24 GB से अधिक हो गई, जबकि डेटा की कीमतों में भारी कमी आई। कनेक्टिविटी और किफायत के इस मेल ने लाखों लोगों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ा है। इसे ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल भुगतान, ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिला है। इसी आधार पर AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, फिनटेक और ब्लॉकचेन जैसी उभरती तकनीकों के विकास का मार्ग भी खुला है।

साथ ही होमगार्ड को 5 लाख के कैशलेस इलाज की सुविधा। कैबिनेट में प्रस्ताव को मिली मंजूरी, आश्रित परिजनों को भी मिलेगा फायदा। प्रदेश सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में होमगार्ड स्वयं सेवकों, अवैतनिक अधिकारियों और उनके आश्रित परिजनों को परिवार कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रत्येक पात्र परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने पिछले साल 6 दिसंबर को होमगार्ड दिवस के अवसर पर होमगार्ड जवानों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की थी। उसी के तहत तैयार प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत लाभार्थी राजकीय अस्पतालों के साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी उपचार करा सकेंगे। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आईपीडी उपचार के लिए भी कैशलेस सुविधा उपलब्ध होगी। योजना के संचालन पर प्रति होमगार्ड स्वयंसेवक एवं अवैतनिक अधिकारी 3,000 रुपए वार्षिक प्रीमियम के हिसाब से करीब 35.50 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय आने का अनुमान है। योजना का संचालन स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज के माध्यम से किया जाएगा।

श्रोताओं, वक्त है कुछ जरूरी सूचना देने का, तो शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में। ये एक महिला है, इनका शुभ नाम है पूनम, पुत्री सुखराम, निवासी श्याम नगर देवरी रोड थाना सदर बाजार आगरा। इनकी उम्र करीब 22 वर्ष है, कद करीब 162.56 सेंटीमीटर है, नीले रंग का सूट पहन रखा है। लापता होने की तारीख 12/5/2026। कृपया इनकी कोई भी जानकारी आपको मिले तो यहां सूचित करने का कष्ट करें। श्याम नगर देवरी रोड थाना सदर बाजार आगरा। श्रोताओं, एक और महिला है जिनका नाम है कोमल, पत्नी जितेंद्र, निवासी बरपुरा रोहता थाना सदर बाजार आगरा। लापता होने की तारीख 14/5/2026। अब हम आपको इनके हुलिये के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको पहचानने में सहायता मिले। इनकी उम्र करीब 28 वर्ष है, कद करीब 157.45 सेंटीमीटर है। कृपया इनके बारे में आपको कुछ भी जानकारी मिले तो इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। बरपुरा रोहता थाना सदर बाजार आगरा। श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और आपको एक और व्यक्ति के बारे में जानकारी दे देते हैं। ये एक पुरुष हैं जिनका नाम है राकेश, पुत्र श्री महेंद्र सिंह, निवासी 31/165 लंगड़े की चौकी छिद्दा थाना हरिपर्वत आगरा। अब हम आपको इनके हुलिये के बारे में जानकारी दे देते हैं। इनका रंग है सांवला, कद करीब 5 फुट 5 इंच है, इनकी उम्र करीब 52 वर्ष है, काली पैंट चेक शर्ट और पैरों में चप्पल पहन रखी है। घटना की तिथि 3/5/2026। कृपया इनके संदर्भ में आपको कोई भी जानकारी मिले तो इस पते पर जानकारी साझा करने का कष्ट करें। 31/165 लंगड़े की चौकी छिद्दा थाना हरिपर्वत आगरा। एक और महिला है श्रोताओं जिनका नाम है नरगेश, पुत्री गुबरुद्दीन खां, निवासी ग्राम नगला बेल थाना बरहन आगरा। अब हम आपको इनके हुलिये के बारे में जानकारी दे देते हैं। रंग गोरा है इनका, चेहरा सामान्य, उम्र करीब 23 वर्ष है, कद 4.6 फीट है। लापता होने की तारीख व समय 1/5/2026, समय 1 बजे। कृपया इनके संदर्भ में आपको कोई भी जानकारी मिले तो यहां साझा करने का कष्ट करें। ग्राम नगला बेल थाना बरहन आगरा। फिर से बता देते हैं, इस पते पर आप जानकारी साझा कर सकते हैं। ग्राम नगला बेल थाना बरहन आगरा।

इसी के साथ ये कार्यक्रम आसपास यही संपर्क होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के

0: तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स है, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे

0: सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर

0: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोक सत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of Khopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Papar

0: Joker creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एकता समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
1: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूअल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।
0: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence of Australian universities in India.
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap business event, a large gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides. Speaking about natural synergies between India and Australia, he highlighted that shared democratic values, a common vision for the Indo-Pacific, vibrant people-to-people ties and strong political understanding created fertile ground for the business partnership between the two countries to grow and prosper together.
1: लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का ये संवाद नए आइडियाज, नई पार्टनरशिप और नए कमिटमेंट्स को जन्म देगा।
0: Now we go over to our Melbourne correspondent who is sharing more details on the Prime Minister's visit.
2: The India-Australia CEOs Forum marked a decisive shift from parallel diplomatic tracks to an integrated, future-proof economic engine. Prime Minister Modi signaled a new era of decentralized economic diplomacy, calling for direct state-to-state corridors that link Australia's raw resources directly with India's massive clean energy, chip manufacturing and digital infrastructure pipelines. Echoing this vision, Prime Minister Albanese mapped out massive capital commitments, anchored by Australian super's multi-billion dollar investments, unprecedented higher education partnerships and landmark industrial projects like the Perdaman plant. Together, both leaders made it clear that while policy sets the runway, it is a direct synergy of our corporate titans and the unstoppable aspiration of 1 million strong diaspora.

0: दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत के तौर पर अपना ताज बरकरार रखे हुए है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर ट्रंप के उस बयान के बाद किए गए हैं जिसमें कहा गया था कि ईरान के ताजा हमलों से जंगबंदी खत्म हो गई है। और विंबलडन जूनियर्स 2026 में भारत के अर्णब पापरकर ने एक तारीख रकम की है और वो 36 साल में ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जो लड़कों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हमनसब एंथोनी अल्बनीज़ के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया के सीओज़ फोरम और इक्तसादी रोडमैप बिजनेस रिसेप्शन में शिरकत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार है। सप्लाई चेन में रुकावट के अलावा तवानाई के बहरान से भी दोचार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसे वक्त में ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए फितरी और लाजमी है कि वो एक भरोसेमंद शराकतदारों की हैसियत से आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि माशी ताउन और तिजारती समझौता 2022 में एक रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान माशी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बहुत से शोबों में भारत में दस्तियाब वसी मौके का जिक्र करते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया की मईशतों के दरमियान तकमील को भी वाज़े किया।
1: न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया की फाइनेंस, एजुकेशन, मेडिकल टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना के साथ मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशंस बना सकते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस, स्पेस और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उत्तर प्रदेश और केरलम के साथ नए अवसर बना सकते। मेरा सुझाव है कि हम आने वाले समय में कुछ फोकस स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर पार्टनरशिप की पहचान करें और उन्हें आगे ले जाने के लिए रणनीति बनाए।
0: जनाब मोदी ने मुल्क में तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए मौके का फायदा उठाने की गरज से ऑस्ट्रेलिया के सरमायाकारों को मधु किया और साथ ही साथ भारत में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों की बढ़ती हुई मौजूदगी का भी खैर मकदम किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: सीओज फोरम के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इक्तसादी रोडमैप बिजनेस से मुतालिक तकरीब से भी खिताब किया जिसमें दोनों मुल्कों के 200 से ज्यादा सीओज और कारोबारी रहनुमाओं ने शिरकत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फितरी तालमेल के बारे में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मुश्तरका जमहूरी कदरें भारत बहरुल काहिल के लिए एक मुश्तरका विजन, अवाम से अवाम के दरमियान वसी ताल्लुकात और मजबूत सियासी मफाहमत ने दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी शराकतदारी के लिए एक जबरदस्त बुनियाद की राह हमवार की है जिससे दोनों मुल्क मिलकर आगे बढ़ेंगे और खुशहाली लाएंगे। अब हम मेलबर्न में अपने नामानिगार के पास चलते हैं जो वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बारे में मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम ने मुतबादिल सिफारती रास्तों से हटकर एक मजबूत मुस्तकबिल के लिए महफूज इक्तिसादी इंजन की तरफ एक फैसलाकुन तब्दीली की निशानदेही की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लामरकजी इक्तिसादी सिफारतकारी के एक नए दौर का इशारा देते हुए बराह रास्त मुल्क से मुल्क के कॉरिडोर का मुतालबा किया है जो ऑस्ट्रेलिया

0: है। इस दौरान आज सुबह कौमी राजधानी के मुख्तलिफ हिस्सों में औसत बारिश हुई, जिससे शहरियों का काफी राहत मिली। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद किए गए, जिसमें कहा गया था कि ईरान के ताज़ा हमलों से जंगबंदी मौसर तौर से खत्म हो गई है। सदर ट्रंप ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया कि वह अब नए हुरमुज में तिजारती जहाज़ों पर हमले कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमरीका के ताज़ा हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए हैं। उन्होंने इस बात के लिए भी खबरदार किया कि अगर ईरान ने मजीद हमले जारी रखे तो वाशिंगटन और ज्यादा सख्ती से जवाबी कार्रवाई करेगा और ईरानी हमलों का सख्त जवाब देगा। भारत के अर्णब परकर ने 36 साल में विमंडल जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। 18 साल पापरकर ने क्वार्टर फाइनल में महज 52 मिनट में जापान के रियो तबाता को 6-2 6-1 से हराया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया फैसल। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 3 रोजा सरकारी दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इंकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। वजीर आजम का यह दौरा भारत ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात को एक नई समत देगा। रोजनामा प्रताप ने कई रियासतों में मूसलाधार बारिश की खबर को नुमाया तौर पर शाया करते हुए सुर्खी लगाई है, मानसून ने पकड़ी रफ्तार, दिल्ली एनसीआर में बारिश शुरू, मुंबई से उत्तर प्रदेश तक संगीन सूरत हाल। वजीर दाखिला ने 3 रियासतों के वज़राए आला से फोन पर बात करके मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। रोजनामा इनकलाब ने अपने आलमी सफ़े पर एक अहम खबर को सुर्खी बनाया है, मशरक़ वस्ता में फिर जंग के खतरात, सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी मुआहदा खत्म किया। अखबारात की अहम बैन अलाक़वामी खबरें इस तरह है, विजय दिवस से पहले फौज ने कारगिल के जाबाजों को याद किया, नायब सदर जमहूरिया आज 1 रोजा दौरे पर उड़ीसा जाएंगे।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर, ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथोनी अल्बानीज आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया के सीओज फोरम में शरीक हुए। दोनों लीडरों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथोनी अल्बानीज के साथ भी मुजाकरात करेंगे। मरकज ने किसानों के मफादात के तहफ़ के लिए तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातिज़ा के साथ साथ गैर तदरीसी अमले के लिए सेहत की कैशलेस स्कीम शुरू की है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर ट्रंप के बयान के बाद किए गए हैं, जिसमें सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के ताजा हमलों से जंगबंदी खत्म हो गई है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का आग्रह केंद्र है। श्रोताओं, सुरों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर धुन कहती है गीतांजलि सुनिए और दिल से मुस्कुराइए। तो आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि।

यार रहमान के संगीत निर्देशन में गुलजार के लिखे हुए गीत को आप सुन रहे थे फिल्म दिल से। आवाजें थी सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की। चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो कि फिल्म कोयला से कुमार सानू, अलका याग्निक एवं साथियों की आवाजों में, जिसको लिखा है इंदीवर ने और संगीत है राजेश रोशन का।

0: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आगर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम गीतांजलि में।

उदित नारायण और का याग्निक की आवाजों में ये गीत आपने सुना फिल्म ताल से, जिसको लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था आर रहमान का। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म कुछ कुछ होता है से, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार जतिन ललित।

इसी के साथ आज का हमारा प्रिय कार्यक्रम गीतांजलि यही संपन्न होता है। उम्मीद है आज के सुनहरे नगमे आपके दिलों को छू गए होंगे। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में लखनऊ केंद्र से जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए लखनऊ और रामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। लखनऊ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ा। लखनऊ में यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ एक रोजगार योजना से कहीं अधिक है। यह एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य पहली नौकरी में प्रवेश करने वाले युवाओं की आकांक्षाओं को मजबूत करना और उद्योग व कार्यबल के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण करना है।
2: हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है, हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से EPFO की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया।
1: लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र अब क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 जून 2026 को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में की। इस अवसर पर भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री

0: योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज लखनऊ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। यह विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो काम पिछले 65 वर्षों में नहीं हो पाया उसे बीते एक दशक में पूरा करने का प्रयास किया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में आधुनिक मौसम उपकरणों की स्थापना से अब सटीक और समय पर पूर्वानुमान लगाना संभव हो सकेगा। योजना भवन लखनऊ में 25 जून 2026 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हाई लेवल समीक्षा बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं, चना, मसूर जैसी फसलों की एमएसपी पर खरीद अवधि 24 जून से 8 जुलाई 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी का पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नए चरण के तहत यूपी के लिए 6,18,482 पक्के मकानों की स्वीकृति का अनुमोदन पत्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया। केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री रोनी सिंह बिट्टू 1 जुलाई 2026 को लखनऊ स्थित अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन RDSO पहुंचे। उन्होंने जानकारी दी कि स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच अब भारतीय रेलवे के 3,500 किलोमीटर से अधिक नेटवर्क पर तैनात हो चुका है। यह प्रणाली ट्रेन की टक्कर रोकने और यात्री सुरक्षा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 4 जुलाई 2026 को प्रथम लखनऊ आगमन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंह, लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित कैबिनेट मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और विधायकों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय तक निकली अभिनंदन यात्रा में 42 स्थानों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन श्री नवीन ने 5 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के सहयोगी दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। नितिन नवीन ने दावा किया कि 2027 में प्रचंड बहुमत से लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून 2026 को लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर योग अभ्यास किया गया। योग अभ्यास कार्यक्रमों में अधिकारियों, कर्मचारियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और समाज के संभ्रांत नागरिकों के साथ गणमान्य लोगों ने भी भाग लिया। 22 जून 2026 को लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक व्यवसायिक इमारत में आग लगने से 15 लोगों की जान चली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विभिन्न नेताओं ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद घायलों से अस्पताल में जाकर मुलाकात। मामले की जाँच के लिए गठित 2 सदस्यीय विशेष जाँच दल SIT ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। यह जांच रिपोर्ट जल्दी मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और ADG जोन लखनऊ प्रवीण कुमार को सौंपी थी। 23 जून 2026 को दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कारों का वितरण किया। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में लखनऊ के प्रसिद्ध रंगकर्मी डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी भी शामिल थे। लखनऊ के कलाकार को पद्म पुरस्कार मिलने पर शहरवासियों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। पूरे विश्व में तादियादारी और अदादारी के लिए मशहूर लखनऊ में मुहर्रम का महीना शोक के साथ मनाया जा रहा है। इमाम बारगाहों, इमाम बाड़ों और घरों में मजलिसों का दौर जारी है। 26 जून 2026 यानी 10 मुहर्रम को ताजियों को जुलूस की चक में करबला तक ले जाकर दफन किया गया। पहली मुहर्रम को शाही दरी का जुलूस अपने रवायती अंदाज में निकला। 7 मुहर्रम को मेहदी और 8 मुहर्रम को अलम फातह अफराद के बाद 9 मुहर्रम को अलम शबे आशूर का जुलूस गमगीन माहौल में निकाला गया।
1: लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शन्नू खान का।
2: रामपुर में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं नकल विहीन वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा जनपद के केंद्रों पर शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप कड़ी सुरक्षा एवं प्रशासनिक निगरानी के बीच आयोजित कराई गई। परीक्षा में 92% उपस्थिति दर्ज हुई। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई थी। सभी अधिकारियों ने अपने दायित्वों का पूरी सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया, जिससे परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। जिलाधिकारी अजय द्विवेदी ने स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि बेहतर जीवन जीने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, बैंकिंग, डिजिटल सेवाओं तथा दैनिक आवश्यकताओं को सहज रूप से पूरा करने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना समाज समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं व्यक्तित्व निर्माण का आधार है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों का वातावरण बच्चों के लिए आकर्षक एवं प्रेरणादायी होना चाहिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी ने मिशन कायाकल्प के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले

0: ग्राम प्रधानों तथा नामांकन अभियान में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। रामपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को एक अनुरोध पत्र सौंपा। इस अवसर पर संगठन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश अग्रवाल ने कहा कि PPE मॉडल पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए 100 बीघा भूमि ग्राम जगतपुर व ग्राम बेनजीर में अधिग्रहण की कार्रवाई की गई है। कॉलेज स्वीकृत हो चुका है, लेकिन भूमि अधिग्रहण कार्रवाई पूर्ण न होने से मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं हो पा रहा है। मेडिकल कॉलेज शुरू न होने से आम जनता समय से बेहतर इलाज न मिल पाने से परेशान है। संगठन ने मांग की है कि भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई जल्द पूरी होनी चाहिए। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जनपद योग में दिखाई दिया। जिला प्रशासन एवं आयुष विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पनवड़िया स्थित सांस्कृतिक सद्भावना मंडप में जनपद स्तरीय भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, विद्यार्थियों एवं आमजन की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही। योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में सभी प्रतिभागियों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत विभिन्न योगासनों, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास किया। मुख्य अतिथि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज विश्व के अनेक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत की प्राचीन योग, आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा परंपरा को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। योग हमारी हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो आज पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रहा है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र कुमार मीणा ने तहसील सदर के परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों को पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी माँ के सम्मान में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए तथा उसके वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल एवं संरक्षण भी सुनिश्चित करे।
1: जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है एक पेड़ माँ के नाम, उसको जरूर अपनाएं और सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कम से कम एक पेड़ जरूर अपने संरक्षण में उसको बड़ा करें।
0: रामपुर में पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक सिंह द्वारा किया गया। डॉक्टर दीपक सिंह द्वारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद गेट स्थित पोलियो बूथ पर फीता काटकर एवं बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाकर अभियान की शुरुआत की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस मौके पर कहा कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक अभिभावक जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: आप सुन रहे थे लखनऊ केंद्र से जिले की हलचल।

श्रोताओं, वक्त है पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम, गीत मंजू शाह का। पेश है हिंदी फिल्म जगत के वो अनमोल गीत जिन्होंने दशकों तक दिलों पर राज किया है। कभी रोमांस की मिठास, कभी जुदाई की कसक, तो कभी दोस्ती की मस्ती, हर एहसास को बखूबी बयां करते हैं गीत। आज फिर गूंजेंगे आपकी धड़कनों में।

एचडी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी के लिखे हुए गीत को आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में फिल्म चलती का नाम गाड़ी से। आइए अब सुनते हैं फिल्म श्री 420 से ये गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में, जिसको लिखा है शैलेंद्र ने और उसमें संगीत है शंकर जयकिशन का।

शैलेंद्र के लिखे हुए गीत को आपने सुना फिल्म दिल तेरा दीवाना से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। संगीत था शंकर जयकिशन का। आइए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म वो कौन थी से, लता मंगेशकर की आवाज में, जिसको लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत है मदन मोहन का।

कुछ धुनें दिल को छू जाती हैं और कुछ यादों को जगा देती हैं। उम्मीद है ये गीत भी आपके दिल तक पहुंचा होगा। इसी के साथ ये कार्यक्रम गीत मंजूषा यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आग्र केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम लोक संगीत का।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सुनीता धाकड़ के स्वर में जूनागढ़ के रेवे बारे। आइए आप सुनते हैं अगला लोकगीत उन्हीं के स्वर में, जा घर में मेरो गुजारो नाए नंदी।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आग्रह केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम सुर सरिता का। सदाबहार फिल्म संगीत की वो धारा जहां हर सुर में एहसास है, हर गीत में कहानी है और हर धुन दिल से दिल का रिश्ता जोड़ती है। तो आइए इन सुनहरे नगमों के साथ यादों के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां।

कुछ नगमे आवाज नहीं होते, वो एहसास बनकर दिल में उतर जाते हैं और जब भी बजते हैं बीते लम्हों से फिर मुलाकात करा जाते हैं। आप सुन रहे थे फिल्म वीर ज़ारा से ये गीत लता मंगेशकर और सोनू निगम की।

आवाज में, जिसको लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीता मदन मोहन का। अगला गीत है फिल्म जब वी मेट से मोहित चौहान की आवाज में, जिसको लिखा है इरशाद कामिल ने और धुन है प्रीतम की।

0: सुर जब दिल से निकलते हैं तो जुबान की जरूरत नहीं होती। फिल्मी गीतों की यही खूबी है, हर कहानी अपनी सी लगती है। आइए अब सुनते हैं अगला गीत, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम सुर सरिता में। तो चलिए सुनते हैं ये गीत फिल्म जैकपॉट से अरिजीत सिंह की आवाज में, जिसको लिखा है तुराज और अजीम शिराजी ने और संगीत है शारेब और तोशी का।

प्रीतम के संगीत निर्देशन में अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे हुए गीत को आप सुन रहे थे। फिल्म ये जवानी है दीवानी से आवाजें थी रेखा भारद्वाज और तोची रैना की। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत जो कि फिल्म फना से सोनू निगम और सुमिधि चौहान की आवाज में, जिसको लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीत है जतिन ललित का।

आप सुन रहे थे प्रीतम के संगीत निर्देशन में आशीष पंडित के लिखे हुए गीत को फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। आवाजें थी आतिफ असलम और अलीशा चिनॉय की। इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम सुर सरिता यही संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का, तो आइए सुनते हैं पंडित निखिल बैनर्जी से राग अहीर भैरव में सितार वादन।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आपने सुनी कलाकार पंडित निखिल बनर्जी द्वारा राग अहीर भैरव में सितार वादन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। हमारे स्टूडियो में दिन के ठीक 11 बजे हैं। श्रोता आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के कलाकार।

स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम आज के कलाकार में। और कार्यक्रम के अंतर्गत आज एक विशेष कलाकार के जीवन का सफर आप तय करेंगे आपकी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय के साथ। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं कल्पना कीजिए कि एक विशाल स्टूडियो, चारों ओर सन्नाटा पसरा है, तेज रोशनियों के बीच एक अकेली कुर्सी रखी है, कैमरा चालू है लेकिन निर्देशक एक्शन नहीं बोल रहा। कलाकार अपने संवाद भूल चुके हैं क्योंकि सबकी नजर उस व्यक्ति पर टिकी है जिसकी आंखों में किसी अधूरे सपने की बेचैनी साफ दिखाई देती है। वह कभी कैमरे के लेंस को देखता है, कभी सेट के किसी अंधेरे कोने को। ऐसा लगता है मानो वह दृश्य नहीं अपनी जिंदगी के बिखरे हुए पलों को जोड़ रहा हो। उसकी खामोशी में भी उसकी कहानी है, उसकी मुस्कान में भी दर्द है और उसकी हर फिल्म में कहीं ना कहीं उसका अपना जीवन धड़कता है। कौन था वह? क्या वह केवल एक सफल निर्देशक था या क्या वह एक सिर्फ अभिनेता था, या फिर वह एक ऐसा कलाकार था जिसने अपने दिल के घावों को पर्दे पर अमर चित्रों में बदल दिया। श्रोताओं उसने ऐसी फिल्में बनाई जिन्हें शुरू में हर किसी ने नहीं समझा लेकिन समय ने उन्हें विश्व सिनेमा की अनमोल धरोहर घोषित कर दिया। उसने रोशनी और साए का एक ऐसा जादू रचा कि हर फ्रेम किसी चित्रकार की बनाई हुई पेंटिंग जैसा लगता है। उसकी कहानियों में प्रेम था, पीड़ा थी, समाज पर सवाल थे और इंसान के भीतर छिपे अकेलेपन की गूंज थी। दर्शक सिनेमा घरों से लौटते समय केवल फिल्म देखकर नहीं आते थे, वे अपने साथ कई सवाल, कई भावनाएं और जीवन को देखने का एक नजरिया लेकर लौटते थे। उसकी फिल्मों में टूटे हुए सपनों की टीस थी, अधूरे मोहब्बत की कसक थी, समाज की विडंबनाओं पर तीखा व्यंग्य था और

इंसानियत के लिए गहरी संवेदना थी। यही कारण है कि दशकों के बाद भी उसकी रचनाएं उतनी ही जीवंत प्रतीत होती हैं जितनी कि अपने समय में थी। श्रोताओं, ये कहानी है उस महान फिल्मकार की जिसने भारतीय सिनेमा को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहने दिया बल्कि उसे साहित्य, कविता और चित्रकला की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। यह कहानी है उस कलाकार की जिसने सफलता के शिखर को भी देखा और अकेलेपन की अथाह गहराइयों को भी महसूस किया। यह कहानी है उस निर्देशक की जिसके कैमरे ने भावनाओं को बोलना सिखाया। जी हाँ, यह कहानी है गुरु दत्त की। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आप सफर तय करेंगे गुरु दत्त के जीवन का, और रेडियो पर आपके साथ हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से कार्यक्रम आज के कलाकार, और कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे आज के कलाकार हैं गुरु दत्त, मशहूर निर्देशक गुरु दत्त। जी हाँ श्रोताओं, कुछ चेहरे वक्त के साथ धुंधले हो जाते हैं, कुछ नाम इतिहास के पन्नों में सिमट जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर पीढ़ी की आंखों में नया सपना जगाते हैं। वह मुस्कुराया भी तो दर्द झलक पड़ा, वह चुप रहा तो जमाना बोल पड़ा। जिसने कैमरे से इंसानी जज्बातों को अमर कर दिया, वही था गुरु दत्त। श्रोतो, गुरु दत्त का जन्म 9 जुलाई यानी कि आज ही के दिन 1925 को बेंगलुरु में हुआ था। उनका वास्तविक नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। बाद में वे पूरे देश में गुरु दत्त के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पिता शिवशंकर राव पादुकोण एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक तथा बैंक कर्मचारी रहे, जबकि उनकी माता बसंती पादुकोण शिक्षिका होने के साथ साथ साहित्य और लेखन में भी रुचि रखती थीं। घर का सांस्कृतिक वातावरण उनके व्यक्तित्व और कलात्मक दृष्टि के निर्माण में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। बचपन से ही गुरु दत्त अत्यंत संवेदनशील, कल्पनाशील और कला प्रेमी थे। उन्हें नृत्य, संगीत, चित्रकला और साहित्य में विशेष रुचि थी। यही रुचियां आगे चलकर उनकी फिल्मों की सबसे बड़ी

श्रोताओं, इस समय आपके रेडियो सेट पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार में कहानी एक ऐसे निदेशक की जिसके निर्देशन में अंधेरा भी बोल पड़ता था। जी हाँ, गुरुदत्त साहब। श्रोताओं, गुरुदत्त का बचपन आर्थिक दृष्टि से बहुत आसान नहीं था। परिवार समय समय पर विभिन्न शहरों में रहा, जिसके कारण उनकी पढ़ाई भी अलग अलग स्थानों पर हुई। लेकिन परिस्थितियां चाहे जैसी भी रहीं, उनके भीतर कला के प्रति प्रेम कभी नहीं हुआ। युवा अवस्था में उन्होंने नृत्य सीखने का निश्चय किया और प्रसिद्ध नृत्याचार्य उदय शंकर के सांस्कृतिक केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त भी किया। वहां उन्होंने केवल नृत्य ही नहीं सीखा, बल्कि संगीत, मंच सज्जा, अभिनय, प्रकाश व्यवस्था और कलात्मक अभिव्यक्ति की बारीकियों को भी समझा। यही प्रशिक्षण आगे चलकर उनके निर्देशन की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। लेकिन भाग्य ने उनकी एक और परीक्षा ली। कुछ समय बाद यह प्रशिक्षण केंद्र बंद हो गया और गुरुदत्त को फिर से अपने भविष्य की तलाश करनी पड़ी। उन्होंने जीविका के लिए कई छोटे मोटे काम किए। कभी टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में कार्य किया तो कभी अन्य नौकरियां की। इन संघर्षों ने उन्हें जीवन की वास्तविकताओं से परिचित कराया। बाद में यही अनुभव उनकी फिल्मों में गहराई बनकर दिखाई दिए। श्रोताओं, संघर्ष से सफलता तक के इस सफर में एक कलाकार का जन्म हुआ। जी हाँ, 1940 के दशक के मध्य में गुरुदत्त को पुणे स्थित प्रभात फिल्म कंपनी में काम करने का अवसर मिला। शुरुआत में वे नृत्य निदेशक के सहायक और छोटे छोटे रचनात्मक कार्यों से जुड़े। प्रभात स्टूडियो उनके लिए किसी विश्वविद्यालय से कम नहीं था। उन्हें यहां पर कैमरे की भाषा, प्रकाश और छाया का उपयोग, दृश्य संयोजन, संपादन तथा कलाकारों से अभिनय करवाने की कला को बहुत ध्यान से उन्होंने सीखा। वे घंटों तक शूटिंग देखते रहते और हर दृश्य से कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहते। यही उनकी मुलाकात दो ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने आगे चलकर उनके जीवन और करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी हाँ, देव आनंद और रहमान। कहा जाता है कि गुरुदत्त और देवानंद के बीच गहरी मित्रता हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि यदि भविष्य में किसी को पहले सफलता मिली तो वह दूसरे का हाथ अवश्य थामेगा। और यही मित्रता भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे चर्चित मित्रताओं में गिनी जाती है।

जी हाँ श्रोताओं, अपने जीवन के सफर में भी गुरुदत्त साहब धीरे धीरे तो चले, लेकिन ऐसा नहीं था कि वे कहीं रुक गए हों। और शीघ्र ही उन्होंने अपने इस सफर में निर्देशन की शुरुआत भी की। समय बदला और देवानंद ने अपनी निर्माण संस्था नवकेतन फिल्म्स की स्थापना की और अपने पुराने वादे को निभाते हुए उन्होंने गुरुदत्त को फिल्म बाजी के निर्देशन का अवसर दिया। सन 1951 में प्रदर्शित बाजी ने गुरुदत्त को एक प्रतिभाशाली निर्देशक के रूप में स्थापित कर दिया। यह केवल एक सफल फिल्म नहीं थी, सफल फिल्म के अलावा यह इस फिल्म ने यह भी साबित किया कि भारतीय सिनेमा को नया और अलग दृष्टिकोण रखने वाला एक निर्देशक अब मिल चुका है। फिल्म की कहानी, कैमरे का प्रयोग, गीतों की प्रस्तुति और वातावरण निर्माण ने दर्शकों और समीक्षकों को प्रभावित किया। गुरुदत्त ने दिखा दिया कि मनोरंजन और कलात्मकता साथ साथ चल सकते हैं। बाजी की सफलता के बाद गुरुदत्त ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक ऐसी फिल्में बनाई जिनमें केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि समाज, इंसान और उसकी भावनाओं का गहरा चित्रण था। उनकी निर्देशन शैली अन्य फिल्मकारों से बिल्कुल अलग थी। वे हर दृश्य को पहले अपने मन में चित्र की तरह बनाते, फिर कैमरे के माध्यम से उसे जीवंत करते। प्रकाश और अंधेरे का अद्भुत संतुलन, क्लोजअप का प्रभावी उपयोग, गीतों के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाना और पात्रों की मन स्थिति को दृश्य भाषा में व्यक्त करना उनकी विशेषता बन गया था।

श्रोतो, बाजी फिल्म की सफलता ने गुरुदत्त को पहचान दिलाई, लेकिन वे केवल लोकप्रिय निर्देशक बनकर संतुष्ट नहीं थे। वे ऐसी फिल्में बनाना चाहते थे जो मनुष्य की आत्मा को छू ले। उनके लिए सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज संवेदनाओं और जीवन दर्शन को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम था। सन 1957 में आई प्यासा भारतीय सिनेमा की महानतम फिल्मों में गिनी जाती है। इसमें गुरुदत्त ने एक ऐसे संवेदनशील कवि की भूमिका निभाई जिसे समाज उसकी जीवित अवस्था में ठुकरा देता है, लेकिन मृत्यु की अफवाह फैलते ही उसी की रचनाओं का सम्मान होने लगता है। यह फिल्म केवल एक कलाकार की नहीं थी बल्कि उस समाज पर प्रश्न चिन्ह थी जो व्यक्ति की प्रतिभा को जीवित रहते हुए नहीं पहचानता। फिल्म के गीत आज भी कालजयी माने जाते हैं, विशेष रूप से जाने वो कैसे लोग थे, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, और जिन्हें नाज है हिंद पर। ये केवल गीत नहीं बल्कि सामाजिक चेतना की गूंज बन गए। गुरुदत्त के अभिनय की संवेदनशीलता और निर्देशन की परिपक्वता ने प्यासा को विश्व सिनेमा में भी विशेष स्थान दिलाया। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं गुरुदत्त साहब की ही इस फिल्म से ये अगला गीत।

के पन्नों में सिमट जाते हैं, पर जो कलाकार अपनी आत्मा को अपनी कला में उतार देता है वह कभी नहीं मरता, वह हर पीढ़ी के दिलों में फिर से जन्म लेता है। गुरुदत्त ऐसे ही अमर कलाकार थे। उन्होंने कैमरे से केवल दृश्य नहीं रचे बल्कि इंसानी भावनाओं की ऐसी दुनिया बनाई जो आज भी दर्शकों की आंखों को नम और दिलों को विचारों से भर देती है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में उनका नाम सदैव सम्मान, संवेदना और उत्कृष्टता के साथ ही लिया जाएगा। तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम, आज के कलाकार। कार्यक्रम में आपने आज सफर तय किया गुरुदत्त यानी कि महान हिंदी फिल्म सिनेमा जगत के निर्देशक गुरुदत्त साहब का। श्रोताओं, मिलेंगे कल एक और नए कलाकार के साथ, उनके कुछ विचारों के साथ। उनके जीवन का हम सफर तय करेंगे और सुनेंगे उनके फिल्माए हुए या उनके अभिनय किए हुए कुछ गीतों को। तब तक के लिए कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त अपनी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय को। नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम आज के कलाकार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:30 हुए हैं। श्रोता अब सुनेंगे सूचना परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। और आज का ये अंक लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, धरती की हरियाली में जीवन का संगीत बसता है। हर पत्ता भविष्य की उम्मीदों का दीपक लगता है। पेड़ अगर मुस्कुराते रहें तो ऋतुएं भी गुनगुनाती हैं। हरियाली रहे जहां सदा, वहीं खुशियां घर बनाती हैं। जी हाँ, कल्पना कीजिए कि एक ऐसी सुबह की जहां न पक्षियों का मधुर कलरव हो, न पेड़ों की ठंडी छाया, न खेतों की हरियाली और न फूलों की सुगंध, चारों ओर केवल धूल धुआं कंक्रीट के जंगल हों, तो क्या ऐसी दुनिया में जीवन की कल्पना की जा सकती है? शायद नहीं। यही कारण है कि कहा जाता है कि हरियाली है तो खुशहाली है। और श्रोताओं, आगरा शहर में तो आप महसूस कर ही रहे होंगे कि कल से जिस तरह से बारिश का आगमन हुआ है, बारिश ने अपनी दस्तक दी है और मानसून ने हमारे दरवाजे को खटखटाया है। किस तरह से हमारे पेड़, हमारे आसपास की हरियाली जो है एकदम नया जीवन ले चुकी है। जो पत्ते हर समय मिट्टी धूल इससे दबे हुए सांस लेने में खुद को से महसूस करते थे कि जैसे कि उनको सांस ना आ रही हो, इस समय बिल्कुल धुले चमकते हरे हमारी आंखों को एक तरह से शीतलता प्रदान कर रहे हैं। माना कि आप सभी को इस बारिश के मौसम में थोड़ी सी परेशानी तो हो रही है, क्योंकि बारिश लगातार कल से हो रही है और जिसकी वजह से सड़कों पर हमें निकलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन श्रोताओं, ये मौसम, ये बारिश और ये बूंदे, ये भी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अगर ये बारिश ही नहीं होगी तो फिर हरियाली कहाँ से होगी? और जब हरियाली ही नहीं होगी तो हमारे जीवन में खुशहाली कहाँ से आएगी? हरियाली केवल पेड़ों का एक समूह नहीं है श्रोताओं।

बल्कि जीवन का ये आधार है। ये हरियाली हमारी सांसों की सुरक्षा है, किसानों की समृद्धि है और नदियों का अस्तित्व है, पशु पक्षियों का आश्रय है और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आज विज्ञान जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से प्रकृति हमसे पीछे छूटती जा रही है। जंगल कट रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं, तापमान बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बन चुका है। और ऐसे समय में हरियाली है तो खुशहाली है केवल एक ये नारा नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व का एक संदेश है। जी हाँ, हरियाली का अर्थ है केवल वृक्षारोपण, शायद ऐसा आप समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीना, जल का संरक्षण करना, मिट्टी को बचाना, जैव विविधता की रक्षा करना और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाना। एक पेड़ अपने जीवन काल में लाखों रुपए के बराबर पर्यावरणीय सेवाएं देता है। वह ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, वर्षा चक्र को संतुलित रखने में वो हमारी मदद करता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है और असंख्य जीव जंतुओं का घर बनाता है। किसान की मुस्कान भी हरियाली से ही जुड़ी है। श्रोताओं, जब खेत लहराते हैं तब घरों में समृद्धि आती है, इसीलिए हरियाली केवल पर्यावरण का विषय नहीं है, बल्कि ये हमारी अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, संस्कृति और समाज की खुशहाली का भी आधार है। जी हाँ श्रोताओं, जिस तरह से कल से हमारे मानसून ने दस्तक दी है और आगरा शहर के तापमान में अंतर आया है, उससे कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा अपने जीवन में रिलैक्स जो कहते हैं थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिक्कतें तो उनका सामना हम सभी को करना पड़ रहा है और कुछ लोगों को शायद कुछ ज़्यादा ही करना पड़ रहा हो, लेकिन यकीन मानिए प्रकृति का ये चक्र भी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्वागत कीजिए मानसून का, मुस्कुराइए, क्योंकि इन बूंदों में ही हरियाली का जो राज है वो छिपा हुआ है। क्योंकि अब आप देखेंगे कि चंद दिनों में ही ये पेड़ों की हरियाली किस तरह से वापस लौट आएगी। मिट्टी से ढके हुए अपने जो पेड़ हमें सांसें प्रदान करते हैं, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, शायद इस धूल मिट्टी कंक्रीट की बनी हुई सड़कों के साइड लगे हुए ये पेड़ खुद ही सांस लेने के लिए तरसते हैं। लेकिन अब इन दिनों में आप देखेंगे कि किस तरह से ये हरे भरे लहराते पेड़ खुद भी खुश दिखाई देंगे और हमें भी खुशहाली प्रदान करेंगे।

श्रोताओं, जी हाँ, बरखा बहार ने अब जैसे कि दस्तक दे ही दी है। आप और हम इस समय बात कर रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आकाशवाणी के आगरा केंद्र से, और हम बात कर रहे हैं हरियाली और हरियाली पर आश्रित हमारी खुशहाली की। श्रोताओं, आज आवश्यकता केवल सरकार के प्रयासों की नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक के संकल्प की है। यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो देश का पर्यावरण बहुत हद तक बदल सकता है। विद्यालयों, महाविद्यालयों, कार्यालयों और घरों में नियमित वृक्षारोपण अभियान चलाए जाने हमें चाहिए। बच्चों में बचपन से ही प्रकृति प्रेम की भावना भी हमें विकसित करनी चाहिए ताकि बच्चे प्रकृति का महत्व समझें। यदि आपके पास इतना स्पेस नहीं है, इतनी जगह नहीं है कि आप बड़े वृक्ष नहीं लगा सकते, तो अपने घर आंगन में ही कुछ गमलों से शुरुआत कीजिए और उस शुरुआत में अपने घर के नन्हे हाथों का भी सहारा लीजिए। बच्चों को सिखाइए, इस मिट्टी से जुड़ना सिखाइए, इन पौधों से जुड़ना सिखाइए, और पौधे लगाने के बाद उनमें पानी देखना सिखाइए कि किस तरह से वृक्षों के जीवन में भी पानी का महत्व है। एक एक बूंद उनके जीवन को बढ़ाती है, और जब वे बढ़ते हैं, हरे भरे होते हैं, गमलों में भी बढ़ते हैं और सुंदर दिखते हैं, तो किस तरह से हमारे जीवन में भी एक सुकून आता है, और यही सुकून तो वास्तव में खुशहाली है। श्रोताओं, जहां हरियाली है वहां खुशहाली होना बिल्कुल लाजमी है, और जहां आप विकास देखेंगे, कंक्रीट हैं, सड़कें हैं, कटे हुए जंगल हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वहां आप देखेंगे कि बस चारों तरफ सूना ही सूना है। हरियाली के नाम पर मुश्किल से लगाए हुए कुछ सजावटी पौधे होंगे, या वो भी नहीं होंगे तो कुछ आर्टिफिशियल पौधों के द्वारा काम चलाया जा रहा होगा। लेकिन समय के साथ ऐसी जगहों पर ही काफी अन्य तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि स्वच्छ वायु का ना होना, प्रदूषण का बढ़ना, इसके अलावा पानी की समस्या का होना। और अगर आप अपने घर के आसपास या पार्क में या आपको जहां भी लगे, आप अगर अपने घर के आसपास या कहीं भी जाते आते वृक्ष लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि समय के साथ जब वो पौधा बढ़ता है तो आसपास वो काफी खुशहाली लेकर आता है। वो केवल बढ़ता अपने ही आप में नहीं बढ़ता है, वो अपने साथ साथ अपने आसपास वालों के लिए भी बढ़ता है और उनके लिए भी कुछ तोहफे और सौगात लेके आता है। जैसे कि वो ऑक्सीजन देने में हमारी सहायता करता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है, जल का संचयन करके रखता है, और जमीन में पानी के लेवल को बढ़ाने की जो पूरी हमारी भरसक मदद होता है वो भी वो वृक्ष करता है। तो सोचिए एक वृक्ष का हमारे जीवन में कितना महत्व है। और श्रोताओं, ये समय आ चुका है कि बस अब हम कमर कस लें, हम भी अपने हाथों में और अपने घर के नन्हे हाथों में छोटी छोटी कुर्पी पकड़ाएं, कुछ अपने ही घर में प्रयोग होने वाले बीजों का प्रयोग करें और बस निकल पड़ें।

अपने घर के आसपास। और मैं उनको भी ये संदेश देना चाहूंगी जो ये कहते हैं कि नहीं, हमारे तो घर में जगह ही नहीं है, हम वृक्ष लगाए भी तो कहां लगाएं। तो श्रोताओं, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप अपने घर के सदस्यों को गिने कितने हैं, उनके जन्मदिन, उनके एनिवर्सरी या उनके किसी भी एक अच्छे दिन आप चाहें तो एक वृक्ष लगा सकते हैं। और वो जरूरी नहीं कि वो वृक्ष आप अपने घर पे ही लगाएं, किसी भी मंदिर में जाकर आप लगा सकते हैं, किसी पार्क में लगा सकते हैं, या कोई आसपास आपके ऐसी संस्था है, सड़क किनारे आपको कोई ऐसी जगह दिखती है जहां पर उस वृक्ष से आने जाने वाले लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप ऐसी जगह एक पौधे को जरूर लगाएं। अगर आप महंगे पौधे नहीं खरीद सकते हैं, या आपके आसपास नर्सरी नहीं है, या आपको पेड़ पौधे लाने में दिक्कत है, आप सफर के जरिए नहीं ला सकते हैं, तो आप ऐसे में कर सकते हैं कि अपने घर में ही इन दिनों पाए जाने वाले कुछ बीजों को अंकुरित कर सकते हैं, जैसे कि आम और जामुन, और अभी ऐसे बहुत से फल आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इन दिनों आप देखेंगे कि नीम पे भी निबोरी बहुत आ रही हैं, और यदि आप चाहें तो उन निबोरियों को इकट्ठा कर सुखा कर और उनको मिट्टी में अच्छे से लपेट कर आप उनका एक गोला सा बना सकते हैं और उसको जमीन में कहीं गाड़ सकते हैं, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको एक प्यारा सा नन्हा सा नीम का पौधा प्राप्त होगा। और नीम जितना कड़वा होता है ना श्रोताओं, उसकी छांव उतनी ही सुकून भरी होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप एक नई पहल करें, और इस नई पहल में आप ध्यान रखिए कि अपने घर के नन्हे बच्चों, युवा बच्चों को भी जोड़ें, एक वृक्ष लगाएं, लेकिन उस वृक्ष में अपने घर के सभी सदस्यों का हाथ लगवाएं। जब सभी सदस्य उस प्रयास में जुड़ेंगे, तभी जाकर ये आगे आने वाली पीढ़ी समझेगी कि एक एक इस नन्हे पौधे का हमारे जीवन में कितना महत्व है। श्रोताओं, बातें तो हम कार्यक्रम में आपसे यूं ही करते रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं इस प्यारे से एक गीत को भी।

श्रोताओं, हरियाली जल स्रोतों को जीवित रखती है, वन्य जीवों की रक्षा करती है और पृथ्वी को सुंदर बनाती है। यदि जंगल समाप्त हो जाएं तो केवल पेड़ ही नहीं बल्कि अनेक जीव जंतु और उनके साथ जुड़ा पूरा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हरियाली बचाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि मानव जीवन की रक्षा है। और इसमें हमें यह संकल्प भी लेना चाहिए कि विकास और पर्यावरण के बीच हम संतुलन बनाए रखें। सड़कें बने, उद्यान लगे और शहर विकसित हो, लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं। श्रोताओं, कई बार ये विकास तो खैर सड़कों की बात के लिए भी हम कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम ऐसा देखते हैं कि हम घर बनवा रहे हैं या हमने नई गाड़ी ली है, हमें घर के बाहर गाड़ी पार्क करनी है, लेकिन घर के बाहर एक पेड़ लगा हुआ है जो उस गाड़ी के बीच में आ रहा है और हमें अपनी गाड़ी पार्क करनी है। तो ऐसे में हमारे दोस्त क्या करते हैं, उस पेड़ को कटवा देते हैं। या घर बनवा रहे हैं तो घर उस प्लॉट में आ रहा है जहां आपको कमरा बनवाना है या कुछ ऐसा बनवाना है जिस जो उस पेड़ की वजह से नहीं बन पा रहा है, तो लोग क्या करते हैं, उसको कटवा देते हैं। वहीं अगर आप पर्यावरण प्रेमियों को देखें, उनके घर को विजिट करें, तो आप देखेंगे कि उन्होंने उस वृक्ष को भी जीवित रखा है और उस वृक्ष के आसपास अपने घर को इस तरह से बनाकर वो चलने की कोशिश करते हैं कि वो वृक्ष भी जीवित रहे और उसके नीचे उनका छोटा सा घोंसला यानी कि उनका घर भी बन जाए। तो श्रोताओं, यदि आप इस प्रकृति को सोचते हुए और अपने जीवन को सोचते हुए यानी कि प्रकृति और विकास के बीच में एक संतुलन बनाकर चलेंगे, तो यकीनन आप देखेंगे कि आपके आसपास हरियाली भी रहेगी और आपका भी विकास होता रहेगा। श्रोताओं, आपको लगता होगा कि हम तो बस ऐसे ही रेडियो पर आते हैं और आपसे बातें कर चले जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि जब से मैंने भी प्रकृति से जुड़ना शुरू किया है, मेरे घर में जो किसानों के मित्र हैं केंचुए, उनका आगमन शुरू हुआ है। वरना मैं, आप यकीन मानिए कि हम इस केंचुओं को देखने के लिए शहरों में तरस जाते थे। अब हमारे घर की क्यारी में केंचुओं का आगमन हो चुका है और नन्हे नन्हे केंचुए मुझे रेंगते हुए दिख जाते हैं। इसके अलावा शाम होते ही एक नन्हा सा मेंढक मेरे घर में दस्तक देता है। जब वो उछलता हुआ कूदता फांदता आता है तो मुझे बड़ी ही खुशी होती है। इसके अलावा नन्हे नन्हे चिड़ियों का आगमन हुआ है। छोटी छोटी तितलियां लहराती हुई, उड़ती हुई, फुदकती हुई जब एक एक फूल एक एक पत्ती पर बैठती हैं, तो यकीन मानिए दिल को बहुत सुकून और खुशी मिलती है। और इस हरियाली को देखकर यदि आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं इस हरियाली से जुड़े, तो यकीन मानिए ये मैले हाथ जो मिट्टी में गंदे तो होंगे लेकिन आपके दिल को सुकून भी बहुत देंगे। हाथों को गंदा कीजिए, ये मिट्टी बहुत उपजाऊ है, इस मिट्टी में कुछ बीज आप डालकर देखिए, यकीन मानिए एक नन्हा सा पौधा आपके घर में दस्तक देगा। आप घर में बड़े पौधे नहीं लगा सकते हैं तो घर के आसपास, अगर घर के गेट के बाहर आपको जगह दिखती है वहां लगाएं, या घर में अगर पक्का है तो आप वहां पर गमलों में भी लगा सकते हैं। फूलों वाले पौधे लगाएं, फूलों वाली बेल लगाएं जो कि कम जगह में आसानी से लग जाती हैं, और यदि फूल उगते हैं उन पर आप फूल लगते देखते हैं तो यकीन मानिए उससे जो नन्हे नन्हे जीव हैं जैसे कि तितली, भंवरे, जो कि आजकल ना के बराबर इस शहर के माहौल में रह गए हैं, आप देखेंगे कि वे आपके घर में मेहमान बनकर आने लग जाएंगे। यकीन मानिए आप इनको अपने घर में ही पाएंगे, आपको इनको देखने के लिए कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे छोटे पौधे लगाएं, फिर उनको अपने हाथों से पानी दें और उनको बढ़ता हुआ देखें, आप देखेंगे कि आपके जीवन में हरियाली बढ़ रही है और इस हरियाली को बढ़ता देखकर आपके जीवन में जितना सुकून और जितनी खुशहाली आएगी उसको, उसकी आप अपने जीवन में कल्पना भी

श्रोताओं, ये झिमझिम गिरता सावन जहाँ एक ओर हमें सुकून प्रदान करता है, हमें खुशी होती है, हम घर में चाय बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं और इस सावन का आनंद लेते हैं, वहीं ये कुछ जीव जंतुओं के लिए थोड़ा परेशानी वाला भी भरा होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जहाँ वृक्ष हैं, जहाँ कच्ची ज़मीन है, वहाँ पर छोटे छोटे कुछ जीव जंतु भी आपको अपने आसपास गली मोहल्ले में बैठे मिलते हैं, जैसे कि कुछ कुत्ते हुए, गाय हुए, छोटे छोटे जानवर हैं, ये आपको वहीं बैठे मिलते हैं। लेकिन ऐसे मौसम में इनके लिए जब पानी भर जाता है आसपास, तो अपने भोजन का प्रबंध कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में ये हमारी कर्तव्य है हमारा कि हम इनकी भी मदद करें। हरियाली के साथ साथ इस हरियाली को बनाए रखने में ये जो जीव जंतु हमारे आसपास हैं, हमारे पारिस्थितिक तंत्र का जो हमारे एक अंग हैं, इनकी भी मदद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे में कोशिश करें कि इन्हें समय से भोजन इनको उपलब्ध कराएं, ये हमारे आसपास रहकर इस बारिश में भूखे ना रहें, क्योंकि बारिश तो आती जाती रहेगी लेकिन समय के साथ भूख भी लगती है, और ऐसे में इन जीव जंतुओं के लिए पानी के मौसम में अपना भोजन जुटाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप कोशिश करें कि आप इनको भोजन अपने घर पर आने पर या आसपास आपके जानवर यदि आपको मिलते हैं तो उनको आप कुछ खाने पीने का सूखा सामान दें, या आप अपने जैसे आप इनको खाना दे सकते हैं जो आपको सहूलियत रहे, आप उस तरह से इनको खाना दें, ताकि इस बारिश का आनंद ये भी लग सकें और भूखे पेट ये इधर उधर ना घूमें। तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। इसमें आज हमने बात की हरियाली और खुशहाली के बारे में, और आशा है कि आप भी हरियाली के महत्व को इस मौसम में, इस बारिश में समझेंगे कि हरियाली हमारे जीवन के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कितनी ज़रूरी है।

कोशिश कीजिए कि आपके आसपास हरियाली बढ़े, और यकीन मानिए कि यदि आप हरियाली के प्रति आकर्षित होते हैं और इस प्रयास को करते हैं, तो आपसे प्रेरित होकर कुछ और लोग भी यकीनन अपने घर के आसपास या बाग बगीचों में पेड़ लगाने के लिए प्रेरित होंगे। और जब आप इस तरह से और लोगों को भी प्रेरित करेंगे, तो यकीन मानिए ये हरियाली की जो एक चेन है वो आगे बढ़ेगी। और जब ये हरियाली बढ़ेगी तो हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है, जो कि आज के विकास के कारण डगमगा गया है, जिसके कारण कई जीव जंतु हैं या कहें कि वन्य जीव जंतु हैं, वो भी अपना दम तोड़ने लगे हैं, एक समय के साथ हम उनको वापस पा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके प्रति प्रेरित नहीं होंगे, तो यकीन मानिए ये पारिस्थितिकी तंत्र यहीं टूट जाएगा। तो श्रोताओं, आशा है कि आप अपने जीवन में हरियाली और खुशहाली दोनों को पाना चाहेंगे। तो ये था आज का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। मिलेंगे कल एक नए विषय के साथ और कुछ नए गीतों के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम से दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय को। नमस्कार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। श्रोता अब सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में
3: और अजीत का भी जोहर। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
3: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लावण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमय दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं। और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी, उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबियलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
3: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
2: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं। ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है।

0: है क्योंकि इसके प्रकन्नों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
1: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
0: बिल्कुल।
1: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
0: जी।
1: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
0: जी जी जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4,850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
1: माना जाता है श्रोताओं कि इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2,800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
0: जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
1: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
0: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
1: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
0: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
1: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वलय सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: आज का प्रश्न है, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
0: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

0: भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से रहते थे,

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: अरे वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है।
1: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटके तोड़ दिए। हाँ
0: अरे धृताची।
2: हाँ भैया।
0: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दे।
2: अच्छा।
3: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो। अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
0: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
4: अरे अरे मगर... भाई ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
0: जी,
4: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
0: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियां टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़ईयों और लोहारों के घर गया है। उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
4: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
0: जी पिताजी।
4: उसमें रखकर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
0: ठीक है।
4: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है। कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
0: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
4: अरे प्रवाहन।
5: जी पिताजी।
4: तुम मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
5: वो पिताजी,
4: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है, कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
5: जी वो
4: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
5: पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
0: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे। क्यों देवदत्त?
1: हाँ हाँ पिताजी।
5: और पिताजी हम तो अपने साथ हरिराज शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
0: हाँ।
5: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे। खेत बस तैयारी समझिए।
4: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रुमर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
5: जी?
4: मैं कल हस्तिनापुर जाना है।
0: पर क्यों पिताजी?
4: वहाँ महाराजा हरिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है। इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी। वहाँ रथों की दौड़ भी होगी।
0: पिताजी हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
1: जी पिताजी।
0: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
4: बहुत अच्छा।
0: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
5: पिताजी देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
0: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
4: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं जौ और चावल ले जाना।
0: जी पिताजी।
4: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
0: अच्छा पिताजी।
4: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं। यही नहीं, गुरुकुलों के ब्रह्मचारी, गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
5: अच्छा पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
2: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
4: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
2: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना। सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
5: चल चल बढ़िया ही कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने।
1: और क्या,
5: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
2: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया।

0: मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
1: अच्छा अच्छा चल ठीक है, ले ही आएंगे। हाँ। अब तो खुश।
2: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो, कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
1: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पहले तीर भी रख लिए हैं, भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे। और पिताजी, एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे। भैया सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेह से भी रथ आ रहे हैं।
3: हाँ।
1: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
2: हाँ ये तो है।
3: हाँ, हाँ, हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
4: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
1: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
0: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
1: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
0: चलो देखते क्या होता है।
2: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
3: अरे वो देखो वो देखो,
0: क्या
3: रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो ये शुरू हो गई। अरे
0: क्या बांके और सजीले सवार है।
3: वाह वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ।
2: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे।

गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा।

0: कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा। धन्यवाद
1: मित्र। कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र, मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
1: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
2: अच्छा,
1: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
3: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
4: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।
3: हाँ, चलो।
4: अरे ये देखो कितना अच्छा
1: घोड़ा है।
4: हाँ,
1: इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
4: इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसे पकड़ लेते हैं। चलो
1: चलो।
4: अरे वाह, अरे अरे, चलो इसे पकड़ लेते हैं।
3: ये पकड़ा।
1: अरे ये कोलाहल कैसा है?
5: छोड़ दो। ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो। शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
1: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
3: अरे चलो भाग चले, आचार्य को बता दे, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
1: अरे रुको तो सही। अरे देखो
3: क्या
1: आचार्य तो वहीं पहुंच गए हैं। और वो देखो आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
3: अच्छा हुआ, संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
1: हाँ।
3: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
1: हाँ।
3: उनका प्रभाव, कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
6: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीई आरटी। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। हरियाली केवल प्रकृति का श्रृंगार नहीं बल्कि मानव

जीवन का आधार है। जहां हरियाली होती है वहां खुशहाली स्वयं अपना रास्ता बना लेती है। एक पेड़ 100 सुखों का द्वार खोलता है, इसीलिए हर पौधा भविष्य की अमूल्य धरोहर है। प्रकृति की सबसे सुंदर मुस्कान उसका हरा भरा आंचल है। धरती की सांसें पेड़ों से चलती हैं, इसीलिए हर पौधा जीवन का प्रहरी है। हरियाली बचाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सुरक्षा है। पेड़ लगाइए, प्रकृति को सजाइए और जीवन को मुस्कुराइए। हरियाली है तो स्वच्छ हवा है, और स्वच्छ हवा है तो स्वस्थ जीवन है। आज लगाया गया एक पौधा कल की सबसे अनमोल विरासत बन जाता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। श्रोता आप सुनेंगे कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम की शुरुआत में हम श्रोताओं को सुनवाने जा रहे हैं टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर, माफ कीजिएगा, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म बागी से ये अगला गीत, जिसको गाया है मीट ब्रोज ने।

श्रोता अभी सुन रहे थे इस गीत को फिल्म बागी से। संगीत निर्देशन था मीट ब्रोस का और इस गीत को लिखा था कुमार ने और आवाज थी मोनाली ठाकुर की। श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोता अपने रेडियो सेट पर और न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से सुनेंगे आतिफ असलम की आवाज में। इस गीत में संगीत निर्देशन है रोचक कोहली का और इस गीत को लिखा है कुमार ने और इस गीत को हमने लिया है फिल्म सत्यमेव जयते से।

0: श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने आकाशवाणी के आगरा केंद्र से मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। कार्यक्रम अभी जारी है श्रोता, और यूं ही हम आपको नए तराने सुनवाते रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम नए तराने में। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे, जिसमें संगीत निर्देशन है आर्को प्रावो मुखर्जी का, और इस गीत को लिखा है मनोज मुंतजिर और संजय गुप्ता ने। इस गीत में अपनी आवाजें दी हैं जुबिन नौटियाल और नीति मोहन ने, और इस गीत को हमने लिया है हिट स्टोरी 4 से।

जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज़ों में इस गीत को श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म हिट स्टोरी 4 से। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोता सुनेंगे फिल्म क्रिएचर से अरिजीत सिंह की आवाज़ में। इस गीत में संगीत निर्देशन है टोनी कक्कर का और इस गीत को लिखा भी टोनी कक्कर ने है। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम नए तराने का ये अगला गीत फिल्म क्रिएचर से।

अरिजीत सिंह के गाए इस गीत को श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म क्रिएचर से। श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोता सुनेंगे फिल्म तक्षक से सुजाता त्रिवेदी की आवाज में। इस गीत में संगीत निर्देशन है AR रहमान का और इस गीत को लिखा है महबूब और गोविंद नहलानी ने।

कार्यक्रम नए तराने का अंतिम गीत श्रोता सुनेंगे अंकित तिवारी की आवाज में फिल्म रॉय से। इस गीत में संगीत निर्देशन भी अंकित तिवारी का है और इस गीत को लिखा है अभिन्द्र कुमार उपाध्याय ने।

0: और इस गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम नए तराने अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर दोपहर का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 1:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। इन दोनों ही बुलेटिन का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। दोपहर 1:10 पर श्रोता सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले इलाकाई खबरें। कृपया हिंदी में समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के

0: a red color warning for moderate to heavy rain in the national capital, along with Haryana. The Delhi government has said that teams of the Delhi Jal Board, Public Works Department and the Municipal Corporation are on the ground to deal with the waterlogging situation. And with that, we end this news bulletin.
1: जाएंगी
2: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज बांदा में 710 करोड़ रुपए के 229 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों से मुस्तफीद होने वालों को चेक्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत की बदौलत बुंदेलखंड में बेहतरी आई है। पीने का पानी दस्तियाब है, नई तरक्याती स्कीमें बुंदेलखंड तक पहुंच चुकी हैं। आज समाज की तमाम तबकात बिला तफरीक स्कीमों से मुस्तफीद हो रहे हैं। वजीर आला ने मजीद कहा,
3: नौजवान को प्रदेश के अंदर ही सरकारी नौकरी हो या निजी क्षेत्र में निवेश की संभावना के माध्यम से रोजगार और नौकरी मिलने या उसके द्वारा स्वतः अपना रोजगार स्थापित करने के कार्यक्रम का ही परिणाम है। क्या बुंदेलखंड का नौजवान अब प्लान नहीं करता है, अब उसको अपने घर में कार्य मिलता है, सम्मान मिलता है।
2: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए के 124 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें समाज के हर तबके की तरक्की के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि चित्रकूट में अब सरमायाकारी आ रही है, जिससे जिले की तरक्की में तेजी आई है।
3: अब निवेश यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि अब भय नहीं है, अब तो निवेश का वातावरण है। फोर लेन की सड़कें, एक सुंदर चित्रकूट हम सबके सामने है और वह आज हम सबको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज तो यहाँ पे हम लोग एक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में, यानी ये आध्यात्मिक टूरिज्म तो था ही, अब इको टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व को भी यहाँ पे के लिए आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है।
2: अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के नजराने में मुबैना बेजाबतगियों की तहकीकात करने वाली पुलिस टीम ने कल तीन मुलजमीन अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को रिमांड पर लेकर पूछगछ की। पुलिस तीनों मुलजमीन के साथ 14 कोसी परिक्रमा के रास्ते पर भी गई। इस दौरान कई संतों ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी से मुलाकात की। मीटिंग के बाद महंत राजकुमार दास ने कहा कि आने वाले दिनों में ट्रस्ट में बड़ी तब्दीलियां होंगी, जिनकी तफसीलात ट्रस्ट की तरफ से जल्द ही शेयर की जाएंगी। लखनऊ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी का 11वां कन्वोकेशन कल मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने की। राज्यसभा एमपी डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने इस तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में 1246 तलबा को डिग्रियां तकसीम की गईं। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा है कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर मुल्क का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि 450 मीटर लंबा यह अंडरपास नेक्स्ट जनरेशन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, जहां हवाई जहाज ऊपर चलते रहेंगे जबकि नीचे ट्रैफिक चलता रहेगा। महकमा जंगलात ने रियासत में 12 जुलाई को मुनक्किद होने वाली शजरकारी मुहिम के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस मुहिम के तहत 350 मिलियन पौधे लगाने का हदफ है। इस मकसद के लिए रियासत भर में 2600 से ज्यादा नर्सरियों में 576 मिलियन पौधे तैयार किए गए हैं। प्रयागराज पहुंचे नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हुकूमत की कोशिशों से रियासत के जंगलाती रकबे में नुमाया इजाफा हुआ है।
1: पूरी दुनिया इस समय ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रही, और इस बार 35 करोड़ जब हमारे यहाँ पेड़ लग जाएंगे, जब से 9 साल में हम लोग 275 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड, 35 करोड़ का इस बार का लक्ष्य है, उससे ज्यादा ही लगते हैं जितना लक्ष्य होता है, तो यह हम लगाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वन आच्छादन का जो क्षेत्र है

0: वो घटा नहीं, वो बढ़ा है।
1: कल की बारिश से राजधानी लखनऊ और रियासत के कई दीगर इजला में रहने वालों को गर्मी से राहत मिली है। इस दौरान गोरखपुर समेत कई मशरकी इजला में हल्की बूंदाबांदी जारी है। हवाओं के बावजूद इस खित्ते में नमी बरकरार है। दरियासना महकमा मौसमियात ने रियासत के बेशतर इजला के लिए 3 दिन की शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, अब समय है हमारी बहनों के अपने कार्यक्रम घर संसार का।

0: नमस्कार सखियों, आप सुन रही हैं कार्यक्रम घर संसार और आज आपके साथ मैं हूं आपकी सखी प्रीति। तो सखियों, बारिश पड़ रही है और मौसम वाकई बहुत सुहाना हो गया है, लेकिन गर्मी की तपिश से छुटकारा दिलाती बारिश तब तक अच्छी लगती है जब तक छत ना टपक रही हो, आने जाने वाले रास्तों गलियों में पानी से जीवन बाधित ना हो रहा हो। ये ठीक वैसा ही है जैसे घर परिवार तब तक अपना सुरक्षित लगता है जब तक घरेलू हिंसा उसका काला सच नहीं होता। ये मुद्दा हमेशा से सामाजिक चिंता का विषय रहा है। ये भी समझना ज़रूरी है कि हम सब अपनी अपनी सोच लिए होते हैं और जब इस सोच को एक साथ मिलाकर चलते हैं तब परिवार रूपी संस्था बनी रहती है। हालांकि थोड़े मतभेद, नाराजगी, मनमुटाव सभी परिवारों का हिस्सा होते हैं, लेकिन फिर भी हम सब खुशी खुशी साथ रहते हैं। तब सोचने वाली बात यह है कि घरेलू हिंसा क्या हो सकती है, इसे भी समझना ज़रूरी है। घरेलू हिंसा अर्थात कोई भी ऐसा कृत्य जो किसी महिला या बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा, शारीरिक प्रताड़ना, जीवन को संकट, आर्थिक क्षति, मनोवैज्ञानिक क्षति, ऐसी क्षति जो असहनीय हो और जिससे महिला या बच्चे को दुख और अपमान सहना पड़े, इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया जाता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ये भी बड़ा सवाल है, जबकि महिलाओं को हमेशा एडजस्ट करने के लिए कहा जाता है जब तक कि सब खत्म ना हो जाए। इसलिए अपनी ताकत बनिए, घरेलू हिंसा से हारे नहीं, इस तथ्य को संबंधित लोगों के सामने उठाएं और अपनों को अवगत कराएं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में अपने आसपास जो भी लोग आपकी परवाह करते हैं उनको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। आप कानूनी मदद की भी हकदार हैं, भारतीय दंड संहिता के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है। आपकी सहायता के लिए दहेज निषेध अधिनियम भी है और घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं की सुरक्षा के अधिकार को और मजबूती भी प्रदान करता है। महिला को भरण पोषण, निवास और बच्चों के लिए अस्थायी संरक्षण की सुविधा को भी ध्यान में रखा जाता है। अगर घरेलू हिंसा को आप झेल रही हैं तो अपने लिए कदम उठाने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं, जानकार बनिए। अच्छे खुशहाल जीवन का हक हर महिला का है। सखियों, जिंदगी इस बात पर कहीं ज्यादा निर्भर करती है कि हमारा इसके प्रति नजरिया क्या है। ये हमारे जीने का तरीका होता है जो हमें छोटी सी खुशी को भी महसूस कर पाने की सोच देता है, वरना लोग गमों में डूबकर उबरना तक भूल जाते हैं। जीवन सकारात्मक बना रहे और खुशियां बांटी जाती रहें, ये जरूरी होता है। तो आइए अब सुनते हैं डॉक्टर शैली अग्रवाल की वार्ता, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है।
1: जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी का बस

इतना ही पैगाम है। आखिर यह जिंदगी क्या है? जब कभी जिंदगी के बारे में सोचती हूं तो लगता है जैसे उगते सूरज की पहली किरण है जिंदगी, जिसे देखकर हमारे अंदर एक नई आशा और विश्वास का संचार होता है। इस प्रकार की खुशी का अनुभव दिल से किया जाता है। खुशी को महसूस करने के कई कारण होते हैं। कभी आपको सुख मिलता है तो कभी दुख, किंतु यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस दुख को कैसे खुशी में बदल दें, क्योंकि इस दुनिया में हमसे भी ज्यादा दुखी लोग हैं। जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो हमें अपना दुख कम लगने लगता है और उससे हमें शक्ति मिलती है। सुख दुख का नाम ही जिंदगी है। जिंदगी में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। जब दुख के बाद सुख आता है तब हमें सच्ची खुशी का एहसास होता है। जिंदगी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग ही पहेली होती है। सभी इसे अपने अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं। किसी के लिए जिंदगी रंगों से भी अधिक खूबसूरत है तो किसी के लिए संघर्ष ही जिंदगी का दूसरा नाम है। जिंदगी के प्रति हमें अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। राह में बहुत सी रुकावटें हैं, बहुत सी कठिनाइयां हैं, किंतु यदि आप अच्छा सोचते हैं तो आप जिंदगी को जीत लेंगे। हमें जिंदगी से निराश नहीं होना चाहिए। जिस तरह एक मकड़ी अनेक बार गिरती है, अनेक बार उठती है और अपना जाल बनाने में हार नहीं मानती और इस तरह अंत में अपने कार्य को पूर्ण करने में सफल होती है, तो हम मानव होकर क्यों निराश होते हैं? बस बात धैर्य की है, क्योंकि जब हमारे पक्ष में परिणाम नहीं मिलता तो हम मायूस हो जाते हैं। मेहनत का फल अवश्य मिलता है, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि लोग जीवन को पल भर में जरा से आवेश में खत्म कर देते हैं। आत्महत्या जैसे कायरतापूर्ण कार्य को करते हुए ये लोग नहीं सोचते कि उनके पीछे उनके परिजनों का क्या होगा। हमें जिंदगी में अपने आप के साथ ईमानदार होना चाहिए। ईमानदारी जीवन का मूल मंत्र है। जिंदगी को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जिंदगी हमें कुछ ना कुछ अवश्य सिखाती है। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे हंसकर जीते हैं या कठिनाई मानकर रोते रहते हैं। जिंदगी का सच्चा सुख हमें तभी मिलता है जब हमारी जिंदगी किसी के काम आए। जब हम किसी की मदद करते हैं तब जो सुख मिलता है वो करोड़ों रुपए कमाने से भी नहीं मिलता। जीवन में संतोष होना बहुत जरूरी है, लेकिन हम भागदौड़ में जो हमारे पास है उसे भी नहीं देख पाते हैं। मन की खुशी बहुत महत्व रखती है। जब हमारी वजह से किसी के होठों पर मुस्कान आती है तो हमारे दिल को राहत मिलती है। किसी ने सच ही कहा है, हर इंसान का एक लक्ष्य होता है। लक्ष्यहीन जिंदगी बेमानी सी लगती है। आखिर जिंदगी की उड़ान सपनों से ही तो शुरू होती है। सबसे जरूरी बात तो यह है कि जिंदगी का हर लम्हा हर पल महसूस करना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा किसी को नहीं पता। अपने आज को जी भर कर जी लीजिए। हमेशा लोग भविष्य के सपने देखते हैं और अपने आज पर ध्यान नहीं देते। अपने आज को सवारो, कल अपने आप सुनहरा हो जाएगा। जिंदगी जिंदा दिली से जियो, हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि यह जिंदगी ईश्वर का अनमोल उपहार है। जिंदगी से प्यार करो, इसे सहेज कर रखो। हमेशा हंसने के मौकों की तलाश करो, जिससे बोझिल हो रहे पलों को हल्का बनाया जा सके। हर चीज बेकार है, बोरिंग है जैसी बातें आपको खुश कम दुखी ज्यादा करेंगी। दुनिया क्या कहती है इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें क्या अच्छा लगता है, हमें किससे खुशी मिलती है, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए आपका मन जो करने को कहे वही कीजिए। जीवन में प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग हंसना ही भूल गए हैं। अब शारीरिक श्रम की तुलना में लोगों को मानसिक श्रम ज्यादा करना पड़ता है, जिसके कारण शरीर में

0: अकड़न आ जाती है। इसका परिणाम यह है कि अपने तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए नई नई विधियां खोजी जा रही हैं। हंसना मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए भोजन। शरीर के लिए भोजन आवश्यक है तो मन को प्रसन्न रखने के लिए हंसना। हंसी के ठहाके बड़ी से बड़ी परेशानी से आपको पल भर में मुक्त कर देते हैं। मेरा मानना है कि यदि आप इन उपायों को अपना लें तो जिंदगी की अनेक समस्याएं यूं पंख लगा के उड़ जाएंगी कि आपको समय का मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले उन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा जिनको करने से आपको खुशी मिलती है। घर से बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए। जरूरी नहीं कि कोई एक ही मुलाकात में आपसे दोस्ती कर ले, लेकिन कोशिश जारी रखिए। यदि आपने मान लिया है कि आपके बिना दुनिया नहीं चल सकती तो ये आपका ख्याल गलत है। इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। खुद हंसिए और दूसरों को भी हंसाइए। तनाव खुद ही आपसे दूर भाग जाएगा। परेशानियों के बीच भी खुशी के मौके ढूंढिए। केले के छिलके पर पैर पड़ने पर यदि आप फिसलते हैं तो उस पर गुस्सा करने की बजाय उस छिलके को हटाइए। दूसरों के साथ मिलकर खुद भी हंसिए। विश्वास कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। प्रकृति में ऐसे कई उपादान हैं जिनको देखने मात्र से ही व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है। उड़ती हुई तितली के रंगों को देखकर, बारिश की बूंदों को हाथ में लेकर अथवा शीतल मंद मंद चलती पवन के झोंकों से मन प्रफुल्लित हो उठता है। अंत में इतना जरूर कहना चाहती हूं कि खुशियां बाजार में नहीं बिकती। अगर ऐसा होता तो दुनिया का कोई भी अमीर आदमी दुखी नहीं होता। खुशियां आपके अंदर हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। किसी ने कहा भी है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं।
1: तो सखियों, अभी आप सुन रही थी डॉक्टर शैली अग्रवाल की वार्ता, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जी हाँ सखियों, हर रोज जागने के साथ मुस्कुराना हमेशा याद रखिए। चलिए फिलहाल सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

तो चलिए सखियों, अब बात करते हैं भविष्य की तकनीक की, यानी क्वांटम कंप्यूटर की। क्वांटम कंप्यूटिंग सुपर फास्ट नई तरह की तकनीक है जो फिजिक्स के लॉज का यूज करती है जटिल समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। जबकि साधारण कंप्यूटर डेटा रीड करते हैं जीरो और वन में, जिन्हें बिट्स कहते हैं, और एक बार में एक ही पाथ से समस्या समाधान करते हैं। जबकि क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स को डेटा रीड करने के लिए यूज करते हैं, अर्थात ये एक ही समय में जीरो या वन हो सकता है और एक ही बार में प्रॉब्लम सॉल्विंग के सारे ही पॉसिबल पाथ को टेस्ट करके कम समय में समस्या समाधान करता है। क्वांटम कंप्यूटिंग आज के कॉम्प्लेक्स डेटा वर्ल्ड के लिए किसी मैजिक से कम नहीं है। इसकी उपयोगिता फाइनेंस, एआई, लॉजिस्टिक और मेडिसिन जैसे कई क्षेत्रों में है। इसकी मदद से नई खोज की जा सकती है, रिस्क फैक्टर्स को सटीकता के साथ एनालाइज किया जा सकता है, वर्षों के काम को बेहद कम समय में पूरा करके परिणाम पाए जा सकते हैं। हालांकि क्वांटम कंप्यूटिंग में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अभी ये तकनीक अपनी विकास यात्रा में है और इसके लिए खास एनवायरनमेंट भी विकसित करना होगा। ये नई तकनीक भी जल्दी ही हमारी अपनी दुनिया का हिस्सा बन जाएगी। तो चलिए सखियों, फिलहाल रुकते हैं यहाँ विज्ञापन के लिए।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: वेलकम बैक सखियों, आप सुन रही हैं कार्यक्रम घर संसार प्रीति के साथ। सखियों, बचपन की सुहावनी यादों में से कुछ यादें हमारे माता पिता के साथ हंसते खेलते बिताए लम्हे भी होते हैं। जब माता पिता नन्हे बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाते हैं, उनके साथ साइकिल चलाना, दौड़ना, बैडमिंटन खेलना जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज साथ साथ करते हैं, सचमुच ये क्षण पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए अनमोल यादें बन जाते हैं और एक अच्छे खुशहाल रिश्ते की नींव भी डालते हैं। बच्चे को कभी अकेला महसूस नहीं होता, बल्कि माता पिता को वो एक दोस्त की तरह भी देखने लगता है जिसके साथ खेल कूद सकते हैं और कई तरह की बातें भी कर सकते हैं। इसलिए हमें बच्चों के साथ फन टाइम ना अच्छी तरह से प्लान कर लेना चाहिए। इसमें एक्टिविटी बहुत सारी हो सकती हैं, लाइक आप एक्टिव गेम्स खेलिए और फिजिकल फिटनेस से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं।

सकती हैं, चेस लूडो जैसे गेम भी हो सकते हैं। वहीं पारंपरिक खेल और राइम इसे और भी मज़ेदार बना सकती है। हम वर्ड बिल्डिंग के साथ मुहावरे और भूगोल और विज्ञान के वंडर्स को भी साथ साथ खेल के रूप में सीख सकते हैं। बच्चों के साथ बैठकर कार्टून देखा जा सकता है या बच्चों के लिए खास तौर पर बनी मूवीज और सॉन्ग्स भी देखे सुने जा सकते हैं। इसके अलावा पेंटिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्ले से खिलौने बनाना भी आप साथ साथ में कर सकते हैं। क्राफ्ट और क्रिएटिव चीज़ों की अनगिनत गतिविधियों को साथ साथ आप कर सकते हैं। माता पिता के साथ बिताए ये पल बचपन को और भी सुरक्षित और खुशहाल बना देते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई बचपन की, अब बात करते हैं अपने घर की, होम डेकोर की। तो सखियों, एक व्यवस्थित घर में भी ना कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि वहाँ पर थोड़ी सी प्राइवेसी बनी रहे और कोई ऐसा सेटलमेंट हो जो ये प्रोवाइड कर सके। तो रूम डिवाइडर्स इसी के लिए होते हैं। अगर रूम डिवाइडर सही तरह से चुने जाएं तो ये बहुत एस्थेटिक और यूज़फुल साबित हो सकते हैं। रूम डिवाइडर का यूज़ निजता और सेपरेट स्पेस क्रिएट करने के लिए किया जाता है, जो कि बिना कोई बड़ा बदलाव या कंस्ट्रक्शन किए बनाया जा सकता है। और ज़रूरत ना होने पर हम इसे हटा भी सकते हैं या रूम डिवाइडर की जगह भी बदली जा सकती है, यानी जहाँ हमें ज़रूरत है उसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये घर का लुक भी बदलने में मददगार होते हैं। इसका चुनाव हम अपनी आवश्यकता, घर की थीम, स्पेस और लाइट के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि स्लाइडिंग पैनल या फिर फोल्डिंग स्क्रीन डिवाइडर, हम इसे स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इससे बड़े हॉल को डिवाइड करने के साथ एक सजावटी डिस्प्ले का भी ऑप्शन हमें मिल जाता है। इसके अलावा बैम्बू लिविंग रूम डिवाइडर और बुक शेल्फ लिविंग रूम डिवाइडर भी एक अच्छा विकल्प है। सखियों, बैम्बू लिविंग रूम डिवाइडर की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा नेचर लेकर आता है और बहुत ही एस्थेटिक लगता है, घर के लुक के साथ काफ़ी अच्छा जाता है। और वहीं अगर हम बुक शेल्फ डिवाइडर की बात करें तो आपने देखा होगा कि बड़े से हॉल के बीच में बुक शेल्फ डिवाइडर लगे रहते हैं, उसमें तरह तरह की बुक्स रखी रहती हैं। तो ये एक तो आपके टेस्ट को भी शो करता है और सिटिंग एरिया में टीवी के अलावा कोई एक और चीज़ है जो कि बहुत अच्छी है यूज़ करने के लिए, यानी कि आपके पास बहुत तरह की बुक्स होती हैं, वहाँ से आप लेके आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा विकल्प है। ये डिवाइडर्स लकड़ी के भी होते हैं, मेटल का भी मिल जाता है, बल्कि गोल्डन और सिल्वर फिनिशिंग में भी होते हैं। इसके अलावा ग्लास पैनल्स भी होते हैं जो रोशनी और स्पेस बनाए रखने के लिए होते हैं, क्योंकि अक्सर होता ये है कि अगर हमें छोटे कमरे में डिवाइडर चाहिए और वहाँ रोशनी इतनी अच्छी नहीं आ रही है, स्पेस थोड़ा कम है, तो ये ग्लास पैनल डिवाइडर होते हैं जो थोड़े से ओपैक होते हैं, तो प्राइवेसी तो बनी ही रहती है। आप छोटे स्पेस को यूज़ कर सकते हैं, ये रोशनी नहीं ब्लॉक करते बल्कि आप इसको फोल्ड करके भी रख सकते हैं, तो बच्चों के लिए बड़ा अच्छा होता है ये। तो आजकल इसके अलावा एक और ट्रेंड चल रहा है इको फ्रेंडली डिवाइडर का, यानी कि प्लांट वॉल, ये भी काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मोस्टली जो दीवार होती है, मतलब वॉल से घिरा हुआ कमरा है और उसमें थोड़ी सी ग्रीनरी आप इंट्रोड्यूस करते हैं इस वॉल प्लांट डिवाइडर के साथ में, काफ़ी सारे पौधे लगे रहते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाने की सुविधा भी मिल जाती है, और अगर आप चाहें मैनेज कर सकते हैं, घर की व्यवस्था ऐसी है, तो आप वहाँ पर लिविंग प्लांट भी लगा सकते हैं। मोस्टली आर्टिफिशियल प्लांट होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, मेंटेनेंस कम होती है, तो ये भी काफ़ी ट्रेंड में है। तो अपनी ज़रूरत के अनुसार रूम डिवाइडर से बदले अपने घर का लुक, क्योंकि रूम डिवाइडर सिर्फ डिवाइडिंग या फिर सेपरेट स्पेस क्रिएट करने के लिए नहीं है, ये एस्थेटिक लुक देता है और घर को वाकई एक सुंदर सजावटी तरह से व्यवस्थित करने में मदद करता है। तो बिल्कुल इसको भी आप देखिएगा। और फिलहाल

बहनें अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 1:45 हुए हैं। श्रोता आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे कलाकार शोभी माथुर द्वारा गाए हुए कुछ चयनित भजन। प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये पहली प्रस्तुति जिसके बोल हैं बेर बेर आए बरसात।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत कलाकार शोभी माथुर द्वारा गाए हुए कुछ चयनित गीत भजन प्रस्तुत है। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति जिसके बोल हैं जोगिया बिन।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आपने सुने कलाकार शोभी माथुर द्वारा गाए हुए कुछ चयनित गीत और भजन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 2 बजने को हैं। कुछ ही पलों में श्रोता सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर के समाचार। इन दोनों ही बुलेटिन का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया मिड डे न्यूज की प्रतीक्षा करें।

0: deep mutual trust. Vice President C.P. Radhakrishnan unveils national mission for sustainable use of high seas fishery resources in Bhubaneswar. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
2: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
3: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
2: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
3: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
3: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर

0: पर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
1: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
0: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहे। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: एंड क्रिटिकल मिनरल्स।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल शोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
5: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
4: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
1: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि यह सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने

0: अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था, रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
1: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले NCR दिल्ली की बात करें, तो NCR दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान है। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के

0: उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोता आप सुनेंगे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे कलाकार शिप्रा बोस द्वारा राग मिश्र खमाज में गायन।

श्रोता भी सुन रहे थे कलाकार शिप्रा बोस द्वारा राग मिश्र खमाज में गायन, और कार्यक्रम था उपशास्त्रीय संगीत। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 2:45 हुए हैं। श्रोता आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गीता दत्त की आवाज में फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 की फिल्म से ये गीत, जिसमें संगीत निर्देशन है ओपी नैयर का और उस गीत को लिखा है मजरूह ने।

कार्यक्रम का अगला गीत श्रोता सुनेंगे फिल्म छाया से तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजों में। संगीत निर्देशन है सलील चौधरी का और इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्णन ने।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। कार्यक्रम का अगला गीत आपके रेडियो सेट पर आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत में संगीत निर्देशन है कल्याण जी आनंद जी का और इस गीत को लिखा है कमर जलालाबादी ने और इस गीत को हमने लिया है फिल्म छैला से।

कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का ये अंतिम गीत श्रोता सुन रहे थे फिल्म साहेब बेबी और गुलाम से आशा भोसले की आवाज में। संगीत निर्देशन था हेमंत कुमार का और इस गीत को लिखा था शकील बदायूं ने। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 3 बजे हैं। श्रोता आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम का ये पहला गीत आप सुनने जा रहे हैं कुमार सानू की आवाज में फिल्म परदेश से। संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

बारिश का मौसम और ये प्यार भरे गीत, जी हाँ, इन नगमों का आनंद ले रहे हैं श्रोता कार्यक्रम गीत कुंजन में आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सुनने जा रहे हैं फिल्म दलाल से। इस गीत में अपनी आवाज दी है साधना सरगम ने और इस गीत में संगीत निर्देशन है बप्पी लहरी का और इस गाने को लिखा है प्रकाश मेहरा ने।

कार्यक्रम का अगला गीत श्रोता सुनेंगे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। संगीत निर्देशन है नदीम शेवन का और इस गीत को लिखा है समीर ने, और इस गीत को हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म बरसात से।

श्रोता इस समय ले रहे हैं आनंद इन गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन में आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोता सुनेंगे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। इस गीत में संगीत निर्देशन है A.R. रहमान का और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और ये गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म ताल से।

कार्यक्रम गीत गुंजन का अंतिम गीत श्रोता सुनेंगे उदित नारायण अलका याग्निक की आवाजों में। इस गीत में संगीत निर्देशन है विजू शाह का और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत को आप सुनने जा रहे हैं फिल्म मोहरा से।

0: और इस गाने के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। श्रोता, आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे भेंटवार्ता, जिसका विषय है फाइलेरिया यानी कि हाथी पांव के लक्षण, कारण और बचाव। और इस विषय पर आप सुनेंगे डॉक्टर अंकिता शर्मा से अनिंद्र सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों, फिर से आज हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर लेकर। स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, हम सब जानते हैं, लेकिन कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में जानकारी के अभाव में लोग वर्षों बरस पीड़ा झेलते हैं, परेशान होते हैं। ऐसी एक बीमारी है फाइलेरिया, आम बोलचाल में हम इसे हाथी पांव कहते हैं। आज हाथी पांव यानी फाइलेरिया पर जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने अपने आकाशवाणी स्टूडियो में बुलाया है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज एटा में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंकिता शर्मा जी को। मैडम, आपका

0: बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार
1: धन्यवाद।
0: मैडम। सबसे पहले तो हमें अपने बारे में बताएं कि आप फाइलेरिया से किस तरह शोध के साथ जुड़ी हुई हैं।
1: पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस स्टूडियो में आमंत्रित किया। आभार व्यक्त करती हूँ। फाइलेरिया जो है इससे एक्चुअली मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ,
0: जी
1: तो हमारे लैब में रिसेंट में 1 मंथ बैक एक केस डायग्नोस हुआ था फाइलेरिया का।
0: जी
1: फाइलेरिया एक रेयर बीमारी या रेयर फाइंडिंग मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जो भारत सरकार है वो रेगुलर अभियान चला रही है इसको खत्म करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं नेशनल फाइलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम।
0: फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम।
1: जी
0: जी
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसमें ग्लोबली तो इसका जो टारगेट है फाइलेरिया को एलिमिनेट करने का वो 2030 का है, बट हम लोग और भी ज्यादा इसमें कार्यशील हैं। तो हम लोगों का जो टारगेट है, हमारी गवर्नमेंट का जो टारगेट है, वो 2027 तक हमको फाइलेरिया को जड़ से खत्म करना है। तो फिर अभी जो केस डायग्नोज हुआ तो उसके बाद चर्चा शुरू हुई और हमने फिर से सारी जो अपनी मेडिकल नॉलेज है रिफ्रेश की। और इसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ बोलने आई हूँ, क्योंकि ये एक पब्लिक हेल्थ का मैटर है और इसके बारे में मैं आपको अवेयरनेस बताऊंगी।
0: सबसे पहले तो यही सवाल रहता है कि ये फाइलेरिया यानी हाथी पांव क्या है क्या?
1: देखिए, फाइलेरियासिस जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो परजीवी से होती है, पैरासाइट जिसको बोलते हैं। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक जो परजीवी होता है उसके थ्रू ये बीमारी होती है, और ये जो परजीवी है वो क्यूलिक्स नामक मॉस्कीटो से फैलता है। ये जो
0: मच्छर मच्छर
1: मच्छर
0: के काटने से
1: जी
0: होती है।
1: जी मच्छर के
0: ओके
1: काटने से होता है, मच्छर जिसका नाम है क्यूलिक्स।
0: क्यूलेक्स।
1: आपने मलेरिया और डेंगू के बारे में भी सुना होगा, ये
0: जी
1: भी मच्छरों से होते हैं लेकिन वो डिफरेंट मच्छर हैं,
0: हाँ एनोफिलीज है
1: एनोफिलीज
0: और
1: और एडीज है।
0: एडीज।
1: ये क्यूलिक्स है और इन मच्छरों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको ये पढ़ाया जाता है कि ताकि हम जब पहचानेंगे तभी तो उसको रोकेंगे, तभी उसको जो है
0: उससे
1: हम
0: बच
1: खत्म
0: पाएंगे।
1: करेंगे। क्यूलिक्स जो है वो गंदे पानी में होता है, जैसे गटर हो गया, सेप्टिक टैंक्स हो गए, सीवर्स हो गए, ये ओपन रहते हैं, या घर में फ्लावर पॉट्स है, जो भी पॉल्यूटेड वाटर है, कंटामिनेटेड वाटर है, उसमें ये मच्छर पनपता है।
0: बहुत दिनों से रुका हुआ है कहीं।
1: जी बहुत
0: जी
1: दिनों से रुका हुआ है, स्टैग्नेंट वाटर है, पॉल्यूटेड है, तो उसमें ये मच्छर जो है क्यूलेक्स ये पनपता है। इसके काटने से अगर ये किसी प्रभावित व्यक्ति को काटेगा जिसको ऑलरेडी फाइलेरियासिस या जिसको हम हाथीपाव बोलते हैं वो है, तो वहां से जब ये एक हेल्दी पर्सन को काटेगा तो उसमें ये कीटाणु को छोड़ देगा ब्लड चूसने के प्रोसेस के दौरान, और उस पर्सन में जब ये परजीवी जाएगा तो वहां पे उस पर्सन की लसिका तंत्र जिसको हम बोलते हैं लिम्फैटिक सिस्टम, उसमें ये मल्टीप्लाई करता है, उसको ये प्रभावित करता है और उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये रहता है इसका लाइफ साइकिल।
0: अब इसे हाथी पांव क्यों बोलते हैं?
1: हाथी पांव इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है इनिशियली तो बहुत एसिम्टोमेटिक रहता है, जो पेशेंट रहता है 5 से 15 साल भी लगते हैं सिम्टम्स को मैनिफेस्ट होने में। तो इसमें ये एक्यूट कंडीशंस में तो इसमें फीवर, बुखार, रैशेस, या फिर जांग में या कांख में गांठें होना, लसिका तंत्र के थ्रू जो गांठें प्रभावित हो रही हैं, फूल रही हैं, जिनको लिम्फ नोड्स बोलते हैं, और क्रोनिकली 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद ये जो है लसिका तंत्र को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि है लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिससे पाँव इतना मोटा फूल जाता है और जो चमड़ी है वो इतनी मोटी हो जाती है कि वो हाथी जैसी लगती है, इसलिए इस बीमारी को हम हाथी पाँव बोलते हैं।
0: ठीक बात। तो ये भी क्लियर हो गया कि ये होता क्यों है, कारण क्या है इसका। एक मच्छर आपने बताया क्यूलेक्स, जिसके काटने से ये फैलता है।
1: जी
0: तो ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे तौर पे नहीं फैलती, मच्छर
1: नहीं
0: के भूमिका
1: नहीं
0: इसमें होती है,
1: जी
0: उसके द्वारा ये फिर आपके
1: जी
0: शरीर में प्रवेश करता है।
1: जी बिल्कुल
0: अगर इस रोग की बात करें तो अपने जैसे, चूंकि आपने हालांकि ये चीज बताई कि जहां पर भी स्टेग्नेंट वाटर रहता है, गटर्स हैं, गंदा पानी कहीं इकट्ठा है, कौन से, वो हिंदुस्तान की अगर बात करें, टोपोग्राफी देखें, कौन से एरियाज हैं, कौन से स्टेट्स हैं जहां पर इनकी बहुतायत है?
1: देखिए, गवर्नमेंट ने ये एंडेमिक एरियाज डिफाइन कर रखे हैं। इंडिया में भी ये जो है यूपी, बिहार, राजस्थान, इसके भी पर्टिकुलर एरियाज हैं जो कि एंडेमिक हैं। यहाँ पे खास तौर पर इस प्रोग्राम का एलिमिनेशन के एक्टिविटीज चलती हैं। यहाँ पे हर साल जो है जनवरी या फरवरी के महीने में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं सार्वजनिक दवा वितरण, जो है वो किया जाता है, जिससे इसकी रोकथाम की जा सके।
0: ठीक। अब हम आते हैं इसके प्रारंभिक लक्षणों पे। आपने बताया क्यूलेक्स मच्छर ने काटा प्रभावित व्यक्ति से, ये आपके शरीर में आया, तो पहले क्या सिम्टम्स आते हैं, कैसे पता लगेगा कि इसके लक्षण जो है आपके शरीर में आ गए?
1: देखिए, जैसा कि मैंने बताया इनिशियली तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है लेटेंट बॉडी के अंदर। इसको ये हो सकता है 5 साल तक, 10 साल तक कोई लक्षण भी ना दिखाए, पेशेंट ऐसे ही पैरासाइट लेके घूम रहा है,
0: पांच
1: पर
0: दस
1: जी
0: साल तक।
1: जी पंद्रह

0: साल तक भी ऐसा हो सकता है कि जो मरीज है वो परजीवी को लेके घूम रहा है पर कोई लक्षण नहीं है
1: और पता भी नहीं।
0: और पता भी नहीं है, और उस दौरान में वो मच्छर और भी लोगों को संक्रमित कर सकता है। लेकिन जो इसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे हम बोले एक्यूट जो सिम्टम्स होते हैं, जैसा मैंने बताया बुखार, रैशेस, गिल्टियां होना, कांख में, जांग में लिम्फ नोड फूल जाना जिसको हम गिल्टियां बोलते हैं, गांठ महसूस होना, और क्रोनिकली जो है हाथी पांव ये करा ही देता है जैसा कि मैंने बताया। इसके अलावा ये अंडकोशों को भी प्रभावित कर सकता है, तो हाइड्रोसील नाम की बीमारी ये करा सकता है पुरुषों में। तो ये सब इसके मोटे मोटे जो है लक्षण है।
1: अच्छा, आपने जैसे कहा कि 10-15 साल कोई व्यक्ति जो है इसको कैरी कर सकता है, और उस दौरान भी ये उसके शरीर से दूसरे के शरीर में संक्रमण फैला सकता है मच्छरों द्वारा?
0: जी बिल्कुल फैला सकता है,
1: हालांकि उसके पास उसका उतना मतलब कहें कि मैं लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, फिर भी
0: फैला सकता है अगर उसके अंदर
1: उसकी
0: परजीवी है।
1: कम होगी फिर भी जो है वो उसको शरीर से दूसरे के शरीर में पहुंच सकता है।
0: जी, क्योंकि मच्छर जब आपको काटेगा क्यूलेक्स, अगर संक्रमण है मरीज के अंदर, तो वो मच्छर तो वो लेगा और फिर जब वो दूसरे को बाइट करेगा तो वो उस परजीव को हेल्दी इंसान में छोड़ देगा। ये जो है एसिम्टोमेटिक पेशेंट को भी मतलब जो है हेल्दी को ट्रांसफर कर सकता है ये परजीवी।
1: तो रोग के अगर हम शुरुआती चरण में पहचान करना चाहें तो क्या वो संभव है?
0: देखिए कोई सिम्टम्स नहीं है तो मरीज जाएगा ही क्यों जांच कराने, लेकिन हाँ रेगुलरली जो, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने जो है जो नेशनल फाइलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम है वो इसीलिए चलाया है कि कई बार ये 10 साल तक 15 साल तक जब कोई लक्षण ही नहीं है तो क्यों ना हम इसकी इलाज से बेहतर हम इसके प्रिवेंशन पे ध्यान दें, हम बचाव पे ही ध्यान दें। तो इस वजह से हर साल जो है ये DEC जिसको बोलते हैं डाई इथाइल कार्बामाजीन नाम की जो गोली है वो लोगों को एंडेमिक एरियाज में जाके सरकार इसीलिए खिलाती है कि वो क्योर नहीं कर रही है, वो प्रिवेंशन चाहते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं कि ये खत्म हो जाए। तो इसीलिए मेरा लोगों से यही अनुरोध है कि जब वो गोली खिलाने एंडेमिक एरियाज में आते हैं DEC की, जो और ज्यादा हाई रिस्क एरियाज है उसमें एल्बेंडाजोल भी खिलाया जाता है 2 गोली 3 गोली, तो वो आप खाएं, वो आपके बचाव के लिए बहुत जरूरी है फाइलेरिया से। क्योंकि अगर एक बार ये हो गई, भले इसको 10 साल 15 साल लग रहे हैं लेकिन भले ये जानलेवा बीमारी नहीं है लेकिन ये अपंगता कर सकती है। एक बार हाथी पांव हो गया तो पैर खराब हो जाता है और जो पेशेंट है वो अपंग हो सकता है, तो उससे बचने के लिए प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: कई लोग तो ऐसा है कि पैरों की सूजन या हाथों की सूजन को सामान्य समस्या मान लेते हैं,
0: जी
1: तो कब डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता?
0: देखिए पैरों में सूजन है तो वैसे भी डॉक्टर से सलाह तो लेनी ही चाहिए, उसके और भी कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन हाँ पर्टिकुलरली इस बीमारी की बात करें तो अगर सूजन के साथ बहुत दर्द है, बुखार है और गांठें महसूस हो रही हैं कहीं भी शरीर में,
1: मेनली गांठें जरूर आपको
0: बिल्कुल
1: चेक करनी,
0: बिल्कुल गांठें,
1: हाँ उसी के थ्रू आपके
0: जी
1: शरीर
0: जी
1: में
0: जी
1: जो है वो डेवलप होता
0: जी
1: है।
0: जी
1: इसकी जांच कैसे करते हैं वैसे?
0: इसकी जांच के लिए देखिए जो है रात के समय, रात में 8 से 2 बजे के बीच में ब्लड का नमूना लिया जाता है, स्मियर बनाया जाता है, क्योंकि इसका जो परजीवी है वो रात में ही ब्लड में घूमता है अपनी मील लेने के लिए, तो वो रात सबसे अच्छा टाइम होता है 8 से 2 बजे के बीच में रात में, जब इसका खून का नमूना लेंगे तो उसमें वो हमें माइक्रोफाइलेरिया पैरासाइट मिलेगा। इसके अलावा अगर ये कहीं गांठों के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा है तो FNAC नामक जांच भी कर सकते हैं, और बाकी एंटीजन टेस्ट भी होते हैं इसके कंफर्मेशन के लिए।
1: जी, मतलब अगर जांच हो गई, डॉक्टर ने आपको कहा कि आपके फाइलेरिया है, फिर इसका इलाज पूरी तरह संभव है?
0: देखिए अगर इनिशियल स्टेजेस में पकड़ा गया कि फीवर है और रैशेस हैं, गांठ हैं और पकड़ में आ गया, डायग्नोज हो गया, तो ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव है। लेकिन अगर ये क्रोनिक हो गया, हाथी पांव हो गया, लसिका तंत्र बिल्कुल खराब हो गए, ब्लॉक हो गए, तो वो इरेपरेबल डैमेज है, फिर वो नहीं सही हो सकता, फिर वो अपंगता में ही मतलब कंक्लूड होगा।
1: तो अगर मान लो किसी को हाथी पांव हो गया है तो कभी कभी ऐसी भी नौबत आती है कि उसको काटना भी पड़े पैर को?
0: देखिए जनरली काटने का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन जो पैर आपका खराब हो गया, मोटा हो गया, लिम्फेटिक्स ब्लॉक हो गए, कई बार वो ऐसे ही भी पड़ा रहता है और बहुत ज्यादा सिवियर केसेस में हाँ बिल्कुल काटना भी पड़ सकता है।
1: तो आपने जो दवा बताई DEC,
0: जी
1: वही एक दवा है जो इसके उपचार में दी जाती है, और आपने बताया कि जैसे जो सामूहिक कार्यक्रम होते हैं सरकार द्वारा जो अभियान चलाए जाते हैं उसमें भी DEC के अलावा अल्बेंडाजॉल वगैरह भी दी जाती है।
0: जी आइवरमेक्टिन, अल्बेंडाजॉल। जी
1: मैडम, कार्यक्रम में इस मोड़ पर एक समय है हमारे श्रोताओं के साथ आपकी पसंद का गीत साझा करने का, तो कौन सा गीत अपनी पसंद का आप श्रोताओं को सुनाओ?
0: मेरे को एक गाना बहुत पसंद है, किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार।
1: तो सुनते हैं डॉक्टर अंकिता शर्मा की पसंद का ये गीत।

0: मैडम फिर से कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: आपने बताया कि सरकारी अभियान बहुत सारे चलते हैं इसके रेडिकेशन के लिए, लोगों को जो है दवा भी खिलाई जाती है, सामूहिक दवा सेवक के अभियान चलते हैं, लेकिन कई लोग बिना बीमारी के लक्षण के, उनको अगर लगता है कि उनको कोई ऐसे लक्षण नहीं है तो वो दवा खाने से परहेज करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल, अगर अब तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो दवा खिला रहे हैं। पहले तो ये होता था कि वो दवा आके घर पे बांट के चले जाते थे तो नहीं पता चलता था कि लोग दवा खा रहे हैं या नहीं, लेकिन अब तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में जो है ये दवा खिलाई जाती है। मेरा आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि अगर आप एंडेमिक जोन्स का पार्ट है फाइलेरिया के, और अगर हेल्थ केयर वर्कर्स आपके घर में साल में एक बार वो दवा खिलाने आते हैं तो प्लीज जरूर खाइए। उससे हो सकता है थोड़ा सा आपको उल्टी जैसा लगे, थोड़ा सा आपका जी मचला है, लेकिन वो ही लक्षण है कि जिससे पता चलता है कि हो सकता है बीमारी सही हो रही है, आप प्रोन है, आपके अंदर संक्रमण है और वो आप सही हो रहे हैं, वो दवा असर कर रही है, और बाकी नॉर्मल

0: हेल्दी लोग भी ये दवा खाएं जिससे कि इसका संक्रमण रुक सके, आप कॉपरेट करें ताकि तभी हम लोग जो है इसको जड़ से मिटा पाएंगे। अदरवाइज एक बार ये हो गई तो फिर उसको क्योर करना मुश्किल रहता है, जैसा कि मैंने बताया अपंगता हो सकती है,
1: हाँ वो फिर ज़्यादा सीरियस
0: ज्यादा
1: स्थिति हो
0: सीरियस
1: सकती
0: स्थिति
1: है।
0: है। जी
1: आपने जो बताया कि जो दवा है DEC, ये एल्बेंडाजोल,
0: जी
1: मान लीजिए किसी के शरीर में कोई लक्षण नहीं है और उसके अंदर वो परजीवी है भी नहीं, स्वस्थ व्यक्ति है और वो भी अगर दवा खाता है ये DEC या एल्बेंडाजोल, तो क्या कोई नुकसान हो सकता
0: कोई
1: है?
0: नुकसान नहीं है। इसकी सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये दवा एक ही बार खिलाई जाती है, इसका कोई कोर्स नहीं है कि आपको 2 दिन लेना है, 3 दिन लेना है, एक ही बार आप दवा खाइए और इसके कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है। हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत उल्टी जैसा जी हो या वैसा, उसके अलावा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
1: बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए या उम्रदराज जो लोग हैं उनके लिए क्या कुछ
0: ये
1: अलग-अलग
0: मैं बताना
1: डायरेक्शंस
0: चाहूंगी
1: होते हैं?
0: कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो 2 साल से कम के बच्चे हैं या बहुत ही क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं, उनको ये दवा नहीं लेनी है।
1: अब आते हैं इसके बचाव पक्ष पे।
0: जी
1: आपने जैसे बताया कि ये बीमारी ऐसे इलाकों में ज्यादा संभावित होती है जहां पर पानी रुका हुआ हो, गटर्स हों, नाले हों,
0: जी
1: तो घर के आसपास तो जाहिर सी बात है कि साफ सफाई रखनी चाहिए, हमारे
0: जी
1: आसपास का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। आजकल स्वच्छ भारत मिशन भी सरकार चला रही है,
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल।
1: क्या आप सावधानियां हमारे श्रोताओं को समझाना बताना चाहेंगे कि इसके बचाव में जो सहायक हो सकते हैं?
0: देखिए सबसे पहली बात तो यही है, क्योंकि ये क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है तो हमें मच्छरों से बचाव करना है, तो सबसे पहला तो ये है कि सोर्स को ही रिड्यूस कर दिया जाए जहां से वो मच्छर पनप रहे हैं, मतलब जो सेप्टिक टैंक्स हैं, जो गटर्स हैं, जो पॉल्यूटेड वाटर, जो स्टेग्नेंट वाटर है, जगह जगह जो इकट्ठा हो रहा है उसको हम या तो ड्रेन करवा दें या उन टैंक्स को हम ढककर रखें, तो सबसे पहला तो ये बात है। दूसरा मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का इस्तेमाल करें और जो है ऑल
1: घर में
0: आउट का
1: मच्छरदानी
0: इस्तेमाल
1: से तो
0: करें,
1: बेहतर कुछ और हो ही नहीं
0: और
1: सकता।
0: मच्छरदानी तो बेस्ट है ही, जो मतलब एकदम अनंत काल से जो हम लोगों के फोर फादर्स और सब लोग जो यूज करते थे वो
1: जी
0: बेस्ट है। मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कीजिए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल कीजिए, पानी मत इकट्ठा होने दीजिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए।
1: और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हम अपने बदन को ढक के रखें, कपड़े
0: बिल्कुल
1: ऐसे पहने
0: फुल
1: कि हमारा
0: स्लीव
1: जो
0: क्लोथ्स पहने,
1: एक्सपोजर है
0: बिल्कुल
1: मच्छरों के लिए शरीर में
0: जी
1: न रहे।
0: जी जी बिल्कुल
1: ओके। आजकल मौसम का जो बदलाव है वो भी अनप्रेडिक्टेबल है, उसमें कभी भी बहुत गर्म हो जाता है, कभी भी बारिश हो जाती है, तो बदलते मौसम का भी मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों पर प्रभाव पड़ता है क्या?
0: बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि अगर कंडीशंस ह्यूमिड रहेंगी, थोड़ी गर्म रहेंगी, तो ये मच्छर जल्दी पनपता है, इसका जो रिप्रोडक्शन है वो जल्दी होता है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब बारिश आती है और थोड़ा सा गर्मी जा रही होती है, बारिश आ रही होती है, वाटर कलेक्शन हो रहा होता है, तब आपको हर जगह मच्छर दिखते हैं, ये भारी मात्रा में रिप्रोड्यूस करते हैं उस टाइम पे, और उसी टाइम पे हमें खास बचाव करने की जरूरत होती है और सारे मेजर्स लेने की जरूरत होती है। आप
1: बहुत हद
0: नीम
1: तक
0: का
1: जो है सावधानी वो
0: जी
1: बचाव का रास्ता जरूर
0: बिल्कुल
1: होता है।
0: बिल्कुल, एक सरकार एक प्रोग्राम जो है चलाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम,
1: जी,
0: तो उसका मतलब यही है कि उसमें 6 बीमारियां हैं और वो सारी बीमारियां वही हैं जो मच्छरों से फैलती हैं, जिसमें आपका मलेरिया, डेंगी, काला अजर और
1: चिकनगुनिया,
0: फाइलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब बीमार, जापानीज इनकेफेलाइटिस, ये सब बीमारियां आती हैं और ये सब मच्छरों से फैलती हैं और सैंड फ्लाई से फैलती हैं, तो और ये सारे मच्छर उसी बारिश के समय
1: उसी
0: में
1: वक्त
0: होते हैं,
1: पनपते भी
0: तो
1: हैं।
0: क्यों ना हम ऐसा मेजर्स लें कि कोई भी मच्छर ना पनप पाए, चाहे वो एडीज हो चाहे क्यूलेक्स हो।
1: और जहां पे पानी इकट्ठा होता है, गटर्स होते हैं, वहां पे स्प्रे भी करते हैं पानी
0: बिल्कुल
1: में जिससे
0: बिल्कुल,
1: वो मच्छर उस पे
0: DDT
1: ज्यादा
0: स्प्रे होता है और नीम का तेल भी छिड़क सकते हैं ताकि इनके अंडे जो हैं
1: उसमें
0: मच्छरों
1: ना
0: के उसमें
1: पनप
0: ना
1: पाए।
0: पनप पाए। जी
1: फाइलेरिया यानी हाथी पांव से जुड़े बहुत सारे लोगों के दिमाग में या समाज में कहें भ्रम भी बहुत सारे रहते हैं, क्या आप ऐसे मरीजों के अक्रॉस आते हैं जब, तो आपको क्या ऐसे भ्रम हैं जो ज्यादा समाज में प्रचलित हैं?
0: देखिए, जब कोई हाथी पांव वाला सिम्टम लेके प्रेजेंट करता है कि जिसका पांव, एक पांव बहुत ज्यादा फूल गया है, हाथी जैसा दिख रहा है, तो लोगों को ये भी लगता है कि किसी ने जादू टोना करा दिया है, जबकि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। और लोग जो हैं फकीर और जो भी क्वैक्स होते हैं उनका सहारा लेते हैं कि ये ठीक हो जाए, तो ऐसा मत कीजिए। बीमारी लाइलाज हो जाए और बिल्कुल अपंगता आ जाए, उस समय का वेट मत कीजिए, किसी भी अंधकार और अंधविश्वास का बिल्कुल आप फॉलो मत कीजिए, और ये जो मैंने आपको लक्षण बताए, अगर ऐसा है तो ये कोई जादू टोना नहीं है, कुछ नहीं है, ये जो है ये बीमारी है परजीवी से हुई हुई, और इसका प्रॉपर आप ट्रीटमेंट कराइए, इसका टेस्ट कराइए।
1: अच्छा मैडम, एक शंका मेरे दिमाग में अभी आई तो मैंने सोचा आपसे समाधान लूं।

0: कि इसको हाथी पांव बोलते हैं,
1: जी
0: तो क्या ये समस्या पैर में ही होती है? कभी कभी हाथों में भी सूजन होती है और काफी दिन तक रहती है, तो हम इसको किस तरह देखें? हाथ में भी क्या ये इसके होने की संभावना होती है?
1: मेनली तो देखिए पाँव में होती है, क्योंकि जो लसिका तंत्र होता है, पैर जो होते हैं वो बड़ा ही डिपेंडेंट, मतलब जितना ड्रेनेज होता है वो एंटी ग्रेविटी ऊपर आ रहा है, तो जितना भी ब्लॉकेज होता है हमारे

0: जितना भी ब्लॉकेज होता है हमारा, ये डिपेंडेंट पार्ट होता है जो लेग्स होते हैं, तो ये इसमें ब्लॉकेज होती है, तो इसमें सबसे पहले जो है सूजन, इडिमा, जितना भी सब इसी में दिखता है। हाथों में बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि वहां तक ये पहुंच नहीं पाता, उससे पहले ये लसिका तंत्र को पूरा ब्लॉक कर देता है। हाँ, ये हाइड्रोसील नामक, जिसको बोलते हैं अंडकोश में सूजन, वहां तक ये करता है, हाइड्रोसील के फॉर्म में प्रेजेंट करता है मेल पेशेंट। हाथ में जो है ये प्रॉपर एक किसी गांठ के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, जैसा मैंने बताया कि लिम्फ नोड एनलार्ज हो गए, या जो लिम्फ फैटिक्स हैं, जो लसिका तंत्र जिसको मैं बोल रही हूँ जिसमें ये घूमता है, वही ब्लॉक हो गया, तो वही एक गांठ की तरह दिखने लग गया। अदरवाइज ये खून में घूमता है जो माइक्रोफाइल एरिया है।
1: ठीक। अब किसी को अगर फाइलेरिया से पीड़ित कोई रोगी है तो मेंटली उसका और जो उसका सोशल लाइफ है उस पे जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट पड़ता होगा,
0: जी बिल्कुल।
1: तो उसको वो किस तरह से डील करे, किस तरह के प्रभाव आपको लगता है पड़ते हैं ऐसे रोगी पर?
0: देखिए, मानसिक तौर पर इंसान बहुत परेशान हो जाता है, टूट भी जाता है। हम इमेजिन कर सकते हैं कि जिसका एक पाँव इतना फूल गया, हाथी के जैसा दिख रहा है, लोग उसको शंका की नजरों से देख रहे हैं कि ऐसा क्या है कि ये हो गया। लोगों में ये भी भ्रांति होती है कि छुआछूत की बीमारी है, किसको छुएंगे तो हमको भी हो जाएगी, तो वैसा कुछ नहीं है। देखिए, ये मॉस्किटो से फैलती है जो हेल्दी पेशेंट को सक कर रहा है, तो आप उस पेशेंट का सपोर्ट कीजिए सब लोग। ये छूने से नहीं फैलती है, और इसमें योगदान दीजिए, जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें योगदान दीजिए, दवाई खाइए, हेल्थ केयर वर्कर्स को कॉपरेट कीजिए, और जो है मच्छरों पे सब लोग नजर रखिए कि कहीं भी मच्छर ना पनप
1: ये
0: पाए।
1: एक व्यक्ति का काम नहीं है इस पे
0: ये
1: नजर
0: टीम
1: रखना, ये
0: वर्क
1: टीम
0: है।
1: वर्क है जिसमें
0: हाँ
1: परिवार की भी भूमिका है, जिसमें
0: बिल्कुल
1: समाज की भी भूमिका है,
0: जी
1: और इसका उन सबको एक अपनी जिम्मेदारी अपनी भूमिका को तय करने की
0: जी
1: जरूरत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जन भागीदारी एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से ही किसी भी समस्या का समाधान बड़ा आसान हो जाता है, और
0: जी
1: बगैर जन भागीदारी के किसी भी समस्या से निजात पाना बड़ा मुश्किल है।
0: जी
1: तो ज्यादा से ज्यादा जरूरत इसी बात की है कि पीपल पार्टिसिपेशन बढ़े, और
0: बहुत
1: इसी के
0: जरूरी है।
1: तहत शायद बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जाते हैं।
0: बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और शायद आज जो हमारा ये टॉक शो है ये भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस लाएगा, तो एक तरह से हम भी इस टीम का ही पार्ट हैं, तभी ये वर्ड स्प्रेड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट तो अपना पूरा रोल कर ही रही है, जो उन्होंने प्रोग्राम्स बनाए हैं, टारगेट्स बनाए हैं, जो लोगों में अवेयरनेस वो स्प्रेड कर रहे हैं, लेकिन लोगों की खुद की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, रोल है। तो इसीलिए मैं सबसे जो है बहुत ज्यादा निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के, कि प्लीज अगर आप एंडेमिक एरियाज में हैं फाइल एरिया के, और कोई भी हेल्थ वर्कर आपको आके मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, मच्छरों की रोकथाम कर रहा है, तो प्लीज उसको कॉपरेट कीजिए, प्लीज उनके साथ सहयोग करके आप भी भाग लीजिए, और आप भी अपने मोहल्ले में, गली में, एरिया में जो है इसको कंप्लीट
1: स्वच्छ भारत,
0: कराइए।
1: स्वस्थ भारत का जो मिशन
0: बिल्कुल
1: है उसको कामयाब बनाने में आप अपनी भूमिका किस तरह से अदा कर सकते हैं, ये सब आपको सोचने की आवश्यकता है।
0: जी
1: तो जाते जाते हमारे श्रोताओं को कोई एक और गीत जो आप सुनवाना चाहें,
0: जिंदगी एक सफर है सुहाना,
1: तो
0: तो ये
1: जिंदगी के
0: है।
1: सफर को और सुहाना करते हैं आपको जो आज डॉक्टर साहिबा ने फाइलेरिया जैसी गंभीर लेकिन रोकी जा सकने वाली एक बीमारी के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। तो नतीजा यही है कि जागरूकता, स्वच्छता, मच्छर नियंत्रण और जो सामूहिक दवा सेवन के अभियान जो चलते हैं वही सबसे प्रभावी उपाय हैं। संकल्प लें कि हम खुद भी जागरूक बनेंगे और अपने समाज को भी स्वस्थ भारत निर्माण में सहयोग करेंगे। आपको छोड़े जाते हैं डॉक्टर साहिबा की पसंद के इस गीत के साथ,
0: थैंक यू।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, जिसके अंतर्गत आपने सुनी फाइलेरिया यानी कि हाथी पाव के लक्षण, कारण और बचाव विषय पर डॉक्टर अंकिता शर्मा से अनिंद्र सिंह की बातचीत। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 4 बजने को हैं। कुछ ही पलों में श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, जिसका प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर लेकर हाजिर है शाहिद। और यहां पर संदेश टू सोल्जर में हमेशा हम बात करते हैं अपने वीर साहसी सैनिकों के बारे में और उनकी गाथाएं हम सुनते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं और हम उनकी जीवनी उनके करियर के बारे में भी जानते हैं और अपने प्रोग्राम में हम उनकी लाइफ में झांक करके उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं और उनके स्ट्रगल को उनके करियर को उनके जोश और जज्बे को भी हम जानने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज संदेश टू सोल्जर्स के खास प्रोग्राम में शाहिद है आपके साथ। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल SSB, जो राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता, अदम्य साहस, सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित हैं और इसके अलावा कई सारे कमेंडेशंस एप्रिसिएशंस से भी नवाजे जा चुके हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट SSB। तो बहुत जल्द इस गाने के बाद हाजिर होते हैं और मिलाते हैं आपको आपके आज के हमारे खास मेहमान संदेश टू सोल्जर्स के।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स शाहिद आपके साथ और आज के हमारे खास मेहमान हैं संदेश टू सोल्जर्स में श्री शिवम कुमार सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स के हमारे प्रोग्राम आकाशवाणी रेनबो पर.
1: धन्यवाद. सर्वप्रथम मैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक इन्फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट सेल और FM रेडियो रेनबो का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज हमें मौका दिया गया है कि मैं अपने संदेश को पूरे देश और विदेश के सभी लोगों के साथ साझा कर सकूं.
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर. आपने समय निकाला, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप हमारे पास आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आने का.
1: सर धन्यवाद.
0: आपको बता दें कि श्री शिवम कुमार असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता अदम्य साहस सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं और इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स मेडल्स कमेंडेशंस और एप्रिसिएशंस सर्टिफिकेट्स तो उनको मिले ही हैं. वो हम आपको आगे बताएंगे. तो सर एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं संदेश टू सोल्जर्स में और आपसे जानना चाहते हैं कि सर आपके बारे में हमने जब जाना तो आपने फैशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री हासिल की विद डिस्टिंक्शन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी. तो SSB और NIFT तो काफी मतलब सिमिलैरिटी नहीं है, तो कुछ बताइए इसके बारे में.
1: सर इसके बारे में मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि अंग्रेजी के एक पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी एक बड़ी अच्छी पंक्ति है. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय.
0: ओके,
1: मेरी कहानी है कुछ ऐसी ही रही है
0: जी.
1: जब शुरुआत से बचपन से तो यूं मैं नहीं कहूंगा कि मुझे फौज में आने का शौक था
0: जी.
1: लेकिन जब मैं नौकरी कर रहा था NIFT के उपरांत तो हमारे सोसाइटी में एक शहीद मेजर नितेश राय थे.
0: ओके,
1: जो शहीद हुए थे अफगानिस्तान के इंडियन आर्मी के एक मिशन में.
0: ओके,
1: और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था हमारे सोसाइटी में जिसमें मुझे होस्ट करने का मौका मिला.
0: अच्छा, तो आप उस जमाने में पढ़ रहे थे?
1: नहीं, मैं कॉलेज के बाद में नौकरी कर रहा था.
0: अच्छा,
1: तो उसके जब उस होस्टिंग के दौरान मुझे उनकी पूरी जीवनी जानने का मौका मिला, उन्होंने
0: अच्छा.
1: क्या क्या त्याग किए देश के लिए इसको जानने का मौका मिला, उनके साहस और शौर्य से वो कहीं ना कहीं मेरे हृदय के किसी कोने में जाके बैठ गई
0: जी.
1: उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे भी यही करना है, वर्दी तो धारण करनी है देश के लिए और राष्ट्र सेवा में ही
0: जी. तो जो
1: देना,
0: जो शहीद मेजर थे वो आपके प्रेरणा स्रोत बने और आप फैशन टेक्नोलॉजी से सीधा सशस्त्र सीमा बल.
1: जी बिल्कुल, फैशन से ये सशस्त्र सीमा बल का जो सफर है
0: जी,
1: उसको
0: जी.
1: उनको मैं शहीद मेजर नितेश राय को डेडिकेट करता हूँ.
0: क्या बात है सर. सर यहाँ ये भी बताइए हमें शिवम कुमार जी के ये जो सफर आपका रहा, मतलब आपने जैसे कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया उससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा, आपने क्या महसूस किया उस वक्त, जो जज्बा आपका रहा होगा वो प्लीज बताइए.
1: उस वक्त जब मैंने ये जाना, उनके जीवन के बारे में जाना, उनके महज 25 साल की उम्र में वो शहीद हो गए और उन्होंने देश के लिए जो किया है, तो ये वाकई में एक प्रेरणा स्रोत था मेरे लिए. मैंने देखा

0: कि आपके व्यक्तित्व के कई ऐसे आयाम हैं जिससे जिससे कि आप अपरिचित होते हैं, लेकिन जब
1: जी
0: आप फौज की नौकरी में आते हैं तो ये विभिन्न आयाम से आप परिचित होते हैं, तो आपको लगता है कि व्यक्ति से बड़ा समाज है, समाज से बड़ा राष्ट्र है।
1: क्या
0: इस
1: बात है,
0: जज्बे को मैंने पहचाना जब मैं फौज की ट्रेनिंग में आया, जब मैं फौज में आया।
1: क्या बात है सर, देशभक्ति से बढ़कर मोहब्बत कोई नहीं हो सकती।
0: जी बिल्कुल।
1: तो फिर आपका ये सफर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन हासिल करने के बाद एक फैशन ग्रेजुएट बनता, फिर सशस्त्र सीमा बल का एक सिपाही बन जाता है, तो वो सफर अब आगे जब शुरू होता है उसके बारे में बताइए।
0: जी 2018 यूपीएससी में मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ 2020 के जनवरी माह में। सशस्त्र सीमा बल एकेडमी में मैं बतौर डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट वहां पे अपनी बेसिक ट्रेनिंग की शुरुआत हुई,
1: जी
0: और एक साल के कठिन परिश्रम के उपरांत, एक साल की
1: जी
0: कठिन ट्रेनिंग के उपरांत, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग थी मेरे लिए क्योंकि मैं फिजिकली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा साउंड नहीं था, उस ट्रेनिंग के उपरांत मैंने जाकर के फिर वो तमगा हासिल किया। मैं असिस्टेंट कमांडेंट बतौर फील्ड में उसके बाद मेरी नियुक्ति हुई।
1: जी जी तो वो सफर जिस तरीके से रहा, आपको फैशन एक बिल्कुल ही अलग एक फील्ड हो गई, और उसके बाद आप फौज का एक हिस्सा बनते हैं, आप एक फौजी बन गए, एक सोल्जर बन गए, तो वो जो हथियारों के साथ जब आपका एक रिश्ता बना, तो वो कैसा महसूस आपने किया? एक आम जनमानस जो है, एक आम इंसान जो है, वो इस चीज को शायद आपकी बातों से कुछ महसूस कर पाए, उस जज्बे को।
0: बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो हमें एक चीज सिखाई जाती थी,
1: जी
0: जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी,
1: जी
0: माता और मदरलैंड इससे ये स्वर्ग से भी ऊपर है, और इस चीज को आपके हृदय में, आपके खून में, आपके अंतर मन में
1: जी
0: अंतर्निहित कर दिया जाता है ट्रेनिंग के अंदर,
1: जी
0: और यही मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैंने ठान लिया कि आज से मेरी दो माएं हैं,
1: जी
0: एक मेरी माँ अपनी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, और एक मेरा राष्ट्र
1: मातृभूमि,
0: मातृभूमि।
1: क्या बात है सर, यही जो आपके जोशीले और जज्बात से भरे हुए जो जज्बा है आपका, जो शब्द हैं आपके, आप इस मौके पर, अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपके करियर को जानेंगे, आपके अचीवमेंट्स को जानेंगे, आप हमारे जो देश का युवा है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे इसी जज्बे के साथ?
0: जी, मैं देश के युवाओं के लिए एक पंक्ति है जो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा
1: जी
0: कि देश के युवाओं में अपने आप के अंदर, उसके अंदर पौरुष होना चाहिए। पौरुष सबसे पहले युवाओं में जरूरी है, क्योंकि जिसके अंदर पौरुष है, जिसके अंदर
1: जी
0: पुरुषार्थ है, आप उसी से, आप उसी के प्रति आप अपनी इज्जत रखते हैं, आप उसी के प्रति अपनी सांत्वना रखते हैं। अगर आपके अंदर पौरुष नहीं होगा तो आप समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे।

0: जी, मैं देश के युवाओं के लिए एक पंक्ति है जो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा
1: जी।
0: कि देश के युवाओं में अपने आप के अंदर उसके अंदर पौरुष होना चाहिए। पौरुष सबसे पहले युवाओं में जरूरी है, क्योंकि जिसके अंदर पौरुष है, जिसके अंदर
1: जी
0: पुरुषार्थ है, आप उसी के प्रति आप अपनी इज्जत रखते हैं, आप उसी के प्रति अपनी सांत्वना रखते हैं। अगर आपके अंदर पौरुष नहीं होगा तो आप समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और
1: जी
0: ये सब सर्वोपरि है। आप अपने अंदर पुरुषार्थ को धारण करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो फौज की सेवा में आके हो, या आप वो टीचर बन के हो, या
1: जी
0: आकाशवाणी की सेवा में जैसा आप कर रहे हैं, तो
1: जी
0: पुरुषार्थ होना सबसे आवश्यक है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए। और हम समझते हैं कि जो आपने बात की बहुत ही सच्ची और बहुत ही दिल से आपकी जो बात निकली है वो दिल तक पहुंचेगी, हमारे माध्यम से भी और आपके जरिए भी, दिल से दिल तक, आकाशवाणी के माध्यम से। आपने जो SSB जब ज्वाइन किया तो आपने बताया कि किस तरीके से आपकी ये शुरुआत हुई, लेकिन आपने इसके अलावा ज्वाइन करने के बाद भी कई प्रोफेशनल कोर्सेज किए, जैसे कि

0: आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, और सिक्योरिंग आपने पहली पोजीशन भी हासिल करी थी. उसके अलावा आपने जीआईएस कोर्स किया एसएसबी की एकेडमी भोपाल से. तो वो जो एक कोर्स आपने किया आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, वो कितना मतलब क्या बहुत खतरनाक बहुत आसान था? क्योंकि देखने में पढ़ने में नहीं लग रहा कि बहुत आसान रहा होगा.
1: जी बिल्कुल, ये भारत के बदलते सुरक्षा परिदृश्य में
0: जी
1: एक्सप्लोजिव आईडी जैसी घटनाएं आमतौर पे कई ज़्यादा देखने को मिलती थी. तो बतौर अ सोल्जर ये एक व्यक्ति को ट्रेन होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से एरिया में कहाँ एक्सप्लोजिव लगाया जा सकता है, कैसे एक्सप्लोजिव को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इन चीज़ों के विषय में इस कोर्स में बताया गया ताकि उस क्षेत्र की जो जनता है उस क्षेत्र में फोर्स ऑपरेट कर सके और उस क्षेत्र की जनता को सुरक्षित कर सके.
0: जी, तो शिवम कुमार जी हमें ये भी बताइए कि आपने जीआईएस कोर्स, क्योंकि ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो कोर्स आपने किया, उससे आपकी ट्रेनिंग के लिए और आपकी जो सेवाएं हैं उसमें किस तरीके से आप उसको और बढ़ा सके, सेवाएं अपनी और बढ़ा सके आप?
1: जी बिल्कुल, ये हमारे जनरली जो हमारा इलाका होता है जहाँ पे कि हम अपनी सेवाएं देते हैं वो बहुत सुदूर और रिमोट एरियाज में रहता है. तो वहाँ पे हमको एक रेडी टू अवेलेबल एक मैप चाहिए होता है जिसको कि हम डिजिटली देख सकें और देख सकें कि कहाँ कहाँ हमारी तैनाती हुई है. तो इसके लिए ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम अपने ट्रूप्स के मूवमेंट पे नज़र रख सकते हैं, वो कहाँ कहाँ हमारी तैनाती है इस पर नज़र रख सकते हैं. इसके लिए जीआईएस कोर्स महत्वपूर्ण है.
0: तो आप ऑलरेडी एक सहायक कमांडेंट थे, उसके बाद भी एसएसबी के ही आप जरिए ये सब कोर्सेस कर पाए, इतना आगे और बढ़ पाए, अपनी स्किल्स को और ज्यादा बढ़ा पाए और इम्प्रूव कर पाए, तो इसमें फिर आपको आगे भी इस तरीके के फिर मौके मिले जहां पर आप अपनी सेवाएं उस तरह से दें?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो हमारे एक जेंटलमैन को वो एक फौजी में तब्दील करती है, लेकिन दैट इज द बेस, वो बेस है, फाउंडेशन है. उसके ऊपर आपको लगातार कोर्सेज करने हैं ताकि आप एक हुनरमंद और एक आप एबल ऑफिसर बन सकें. तो इसके लिए सारे कोर्सेज,
0: मतलब आप अपनी निपुणता को लगातार जो है बढ़ाते रहें.
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उसमें एडिशन करते रहें. इसी एडिशन में आपकी एक बहुत जबरदस्त जो आपने ग्वालदाम उत्तराखंड में की कमांडो ट्रेनिंग भी आपने की इन सबके साथ साथ, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
1: जी कमांडो, कमांडो जो है वो एक फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से आपको सशक्त बनाता है कि आप विषम परिस्थितियों में, दुर्गम पहाड़, दुर्गम वनों में आप लंबे लंबे ऑपरेशंस कर सके, अपनी ट्रूप्स को मोराल को हाई रख सके और ऑपरेशंस में सामरिक रणनीति के साथ ऑपरेशन में विजय हासिल कर सके.
0: तो सर ये तो ट्रेनिंग बहुत टफ रही होगी, कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस इस कमांडो ट्रेनिंग वाला?
1: जी बिल्कुल, ये ट्रेनिंग तो टफ होती है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ट्रेनिंग तो बहुत टफ रहती है, लेकिन आपके अंदर जो वो जज्बा होना चाहिए वो ऐसा निहित कर दिया जाता है उस्तादों के द्वारा, इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा, कि वो समय धीरे धीरे पार हो जाता है और आप जब बिगर पिक्चर की ओर देखते हैं, जब आप देखते हैं कि यहाँ से जब आप तप के जाएंगे, जब आप निखर के जाएंगे यहाँ से, तो फील्ड में इसके कई फायदे होते हैं, जो कि फायदे आज हमें महसूस कर रहा हूँ मैं.
0: सर आपने इतनी सब ट्रेनिंग हासिल करी, आपने अपनी एक बहुत ही एक अलग इमेज, एक बहुत ही बड़ी पोजीशन आपने बनाई, और इसकी ही एवज में आपको अपनी सेवाओं के बदले ही बहुत ज़्यादा अवार्ड से भी नवाजा गया, आपको बहुत सारी कमेंडेशंस एप्रिसिएशंस भी मिले, और साथ ही साथ आपने अपनी जो लीडरशिप स्किल थी, ऑपरेशनल एक्सलेंस थे, और ख़ास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस, उसमें भी आपने न सिर्फ उनको अच्छे से किया बल्कि उनमें निपुणता हासिल करके एक अपनी एक ऐसी पोजीशन बनाई जिसकी वजह से आपको वो रिकॉग्निशन, वो अवार्ड्स, वो मेडल्स से नवाजा गया.
1: जी बिल्कुल, मेरी ये, मेरा ये सौभाग्य था कि एकेडमी से निकलते ही मुझे पहली ही पोस्टिंग एंटी नक्सल ऑपरेशंस के थिएटर में मिली
0: जी,
1: जो कि बिहार के लखीसराय जिले में था, और क्योंकि मैं झारखंड बिहार से मेरा ताल्लुक है
0: जी,
1: तो सन ऑफ सॉइल होने का फायदा मुझे वहां पर मिला. मतलब वहां पे लोगों की क्या पीड़ाएं हैं, नक्सल का मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं विलेजर्स के साथ, कैसे उनको ब्रेन वॉश करते हैं, ये समझना मेरे लिए ज्यादा आसान था क्योंकि लोग मुझसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते थे. बीइंग अ लोकल मुझे ये फायदा मिला, और फिर फाइनली जो आगे की रणनीति थी, जो सीनियर्स का सपोर्ट था, उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग हुई.
0: और आगे हम आपसे जानेंगे कि जो एंटी नक्सल ऑपरेशन आपने किए, एंटी माइस्ट ऑपरेशंस भी आपने किए, और बिहार का एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही यादगार एक ऑपरेशन था जिसकी ही बदले में आपको उस सेवा की ही एवज में पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया, और हम उसके बारे में आपसे जानेंगे आगे. और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमारे सुनने वालों के, हमारे श्रोताओं के, आपके लिए.

0: भारत तुझे सलाम। देश के नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर शाहिद के साथ, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर, बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगा एक बार फिर आपका आज के इस बहुत ही स्पेशल शो में, जिसमें जोश से भरपूर श्री शिवम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं।
1: धन्यवाद साहिब जी।
0: और मैं अपने लिसनर्स को, अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप हमें, हमारे पास लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं, और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, जिन लोगों को अभी तक मैं नंबर नहीं बता पाया था। और आप साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में हमसे हैं जुड़े हुए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से हुआ सफर शुरू, बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन के साथ श्री

0: शिवम कुमार का, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वो बन गए एक जोशीले जांबाज सिपाही सशस्त्र सीमा बल के। सर, आपकी पूरी सर्विस में अभी तक की, आप अभी भी सर्विस में हैं, और सर्विस के दौरान आपकी पोस्टिंग रही एसएसबी एकेडमी भोपाल मध्य प्रदेश में और 32 बटालियन एसएसबी बिहार में, और फिलहाल आप सर्व कर रहे हैं सीआई एंड जेडब्ल्यू स्कूल ग्वालदाम। तो सर, ये जो आप प्रेजेंटली जो सर्विंग है आपकी, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, सीआई एंड जेडब्ल्यू स्कूल में आप क्या करते हैं और ये क्या है?
1: काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ग्वालदम में, उत्तराखंड में स्थापित है। ये हमारे इन सर्विस ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे कि, जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसे कि सभी बलकर्मी इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक उस कोर्सेज को पूरा करते हैं ताकि वो अपनी सेवा में और दक्षता हासिल कर सकें। तो हमारे CINGW स्कूल ग्वालदम में माउंटेनियरिंग विंग है जहाँ पे कि मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि SSB की टीम माउंट एवरेस्ट की सीमाओं पर भी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर
0: जी
1: अपना विजय तिरंगा फहरा चुकी है।
0: बहुत खूब सर, क्या बात है।
1: इसके अतिरिक्त वहाँ पे एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग होती है, कमांडोज की ट्रेनिंग होती है, बहुआयामी ट्रेनिंग सेंटर है ये।
0: तो आप इस ट्रेनिंग सेंटर में एज ए ट्रेनर अपनी सेवाएं दे रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे बतौर इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।
0: जी, तो सर किस तरीके का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप पहले सर्व कर चुके उसके बाद फिर आप अब ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो सीखना और फिर सिखाना, इन दोनों में कितना अंतर आप पाते हैं और क्या ज्यादा कठिन आपको लगता है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही का अपना अपना महत्व है।
0: जी,
1: जिस व्यक्ति ने धरातल पर कार्य किया है, जिसे धरातल की जो भी कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, वो पता है, वह बेहतर तरीके से उसको अपने आने वाली पीढ़ी को
0: किस तरीके से आप उसको गाइड करना चाहेंगे?
2: जी, युवाओं के लिए सशस्त्र सीमा बल में जाने के तीन रास्ते हैं।
0: जी,
2: अगर कोई कांस्टेबल लेवल पे भर्ती होना चाहता है तो SSC द्वारा GD की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी मैट्रिकुलेशन होती है।
0: ठीक है।
2: इसके उपरांत कोई अगर सबऑर्डिनेट ऑफिसर या सब इंस्पेक्टर के पद पे जाना चाहे
0: जी,
2: तो SSC द्वारा CPO की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होता है किसी भी स्ट्रीम में। और बतौर डायरेक्ट क्लास ए ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट अगर इसमें कोई जाना चाहे
0: जी,
2: तो UPSC द्वारा आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन करवाई जाती है, जिसके लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है।
0: ओके, जैसे कि आपने UPSC पास करके
2: जी बिल्कुल
0: एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आपने ज्वाइन किया।
2: जी बिल्कुल।
0: लगातार हमारे पास हमारे आज के मेहमान श्री शिवम कुमार के लिए यहां पर मैसेजेस का सिलसिला लगातार जारी है। शिवम कुमार जी, मैं आपको वो मैसेज पढ़ के सुनाऊंगा और मैं चाहता हूं कि मैं आपसे आपका जो बहुत ही ज्यादा एक यादगार मैं कहूं, और वो हर तरह से यादगार एंटी मास्ट ऑपरेशन आपने जो किया लखीसराय बिहार में फरवरी 2022, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कितना क्रिटिकल था, वो ऑपरेशन कितना कामयाब था और कितना खतरनाक था वो ऑपरेशन।
2: जी बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे अपनी नौकरी के पहले एक दो वर्षों में ही
0: जी
2: ऐसे नक्सल एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल होने का मौका मिला, और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा श्री सोमी जोशी सर, जो इंस्पेक्टर जनरल थे
0: जी,
2: श्री दीपक सिंह जो मेरे बटालियन के कमांडेंट थे 32वीं वाहिनी के, इसके अतिरिक्त मेरे जो सीनियर्स थे श्री नरपत सिंह
0: जी,
2: श्री जसवीर सिंह तोमर, श्री गुलशन झा, और जो मेरे सबऑर्डिनेट्स और कलीग थे ऋतुराज, अरविंद
0: जी,
2: राणा और प्रदीप का, जिन सब के टीम वर्क ने, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे ग्रूम किया इस चीज के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था फौज के लिए, मुझे ग्रूम किया ताकि मैं इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकूं, लीड कर सकूं और विजय हासिल कर सकूं।
0: जी, और आपको हम बताना चाहेंगे कि शिवम कुमार जी हमारे पिछले संदेश टू सोल्जर्स में कुमार ऋतुराज जी भी हमारे साथ इस शो में मौजूद थे, तो वो आपके सीनियर थे, उन्होंने भी बहुत गाइड किया आपको।
2: जी जी बिल्कुल, वो मेरे साथ काम करते थे, वो मेरे सबऑर्डिनेट थे और उनका भी सहयोग रहा है इस चीज में।
0: जी, तो हम यहां पर ये जानना चाहेंगे ये ऑपरेशन किस तरीके से आपने कंप्लीट किया और कितना टफ था, कैसे प्लानिंग करी और कितने चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा, आपका टीम वर्क कैसा था?
2: जी बिल्कुल, सर्वप्रथम यह है कि किसी भी ऑपरेशन को
0: जी
2: सिर्फ आप असले और बारूद के बल पे आप नहीं जीत सकते हैं। ऑपरेशन जीता जाता है टीम वर्क से, साथियों के सहयोग से
0: जी,
2: एक उचित मार्गदर्शन से और सामरिक रणनीति से। इस ऑपरेशन में भी हमने सबसे पहले, जो किसी भी ऑपरेशन का मूल आधार होता है, वो है इंटेलिजेंस

0: इकट्ठा करना।
1: जी
0: सबसे पहले हमने इंटेलिजेंस इकट्ठा की माओवादियों के बारे में, जिस एरिया में मैं काम करता था
1: जी,
0: लखीसराय बिहार में, वहां जितेंद्र कोड़ा, विनोद कोड़ा और अर्जुन कोड़ा, ये सब आतंक के प्रतीक थे, जिनके ऊपर 50 से अधिक हत्याओं के मामले चल रहे थे। ये सभी नक्सली टीम के मेंबर्स थे और 50 से अधिक हत्याओं के इन पे मामले थे। हमने उनके बारे में आसूचना हासिल की, इंटेलिजेंस हासिल किया उनके बारे में, इसमें कि हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस भी थे
1: जी,
0: और टेक्निकल चीज़ों का भी हमने मदद लिया, गैजेट्स का हमने मदद लिया। उसके बाद उनको हमने एक चक्रव्यूह में फंसाया, जिस चक्रव्यूह में सभी नक्सली फंसते चले गए और फाइनली ये ऑपरेशन, एक लंबी कहानी है, ये एक दिन का सफर नहीं था, 3 महीने तक इसकी तैयारी चली।
1: ओके, तो आपने ये जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स थे इनको न्यूट्रलाइज भी किया और इनको, मतलब इनके उन जो काम थे इनके, उनके जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी, उनको भी आपने पूरी तरीके से खत्म कर दिया इस ऑपरेशन के माध्यम से।
0: जी बिल्कुल, उनका उनका जो शैली था उनका, वो किडनैपिंग करते थे, एबडक्शन करते थे
1: जी,
0: लोगों में उनका आतंक था, कभी भी रात में किसी भी घर, किसी के घर घुस जाना और बंदूक की नोक पे उससे ऐसे कार्य करवाना जिसको कि वो नहीं चाहता है करना, और उनके डर के कारण वहां की जो जनता थी कभी खुल के हमसे बात नहीं करती थी, अपनी शिकायतों को नहीं रखती थी। तो इस चीज पे हमने काम किया और फिर ये एक पूरी प्रक्रिया थी जिसको कि हमने किया, इंटेलिजेंस जनरेशन से लेकर के और ऑपरेशन एग्जीक्यूशन तक।
1: और जाहिर है कि जब इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया तो फिर वो जो एक भरोसा जो टूट रहा था वो जनता में भी फिर दोबारा से कायम हुआ होगा।
0: जी बिल्कुल, इसमें ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के उपरांत असली खुशी तो वही होती है, असली खुशी ये नहीं है कि आपने नक्सली को मार दिया
1: जी
0: या आतंकवादी को मार दिया, असली खुशी वो है कि जब आप जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल से निकले, जब आपका कॉन्वॉय निकले
1: जी,
0: या छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा या बिहार के भीमबांध से जब आपकी गाड़ी निकले और तब कोई बच्चा हाथ में झंडा लिए जय हिंद आपको करता है,
1: क्या बात है,
0: तब जो उसके चेहरे की जो वो सुरक्षा का भाव उसके चेहरे पे रहता है, ये आपकी असली जीत है बतौर फौजी।
1: क्या बात है। तो उस झंडे के साथ और उस जय हिंद के नारे के साथ वो जो खुशी मिलती है, वो खुशी सबसे बढ़कर होती है।
0: जी बिल्कुल, वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही है कि जनता का विश्वास जो हमने जीता है
1: जी,
0: वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है और इस ऑपरेशन के माध्यम से हम ये करने में सक्षम हुए थे।
1: जी बिल्कुल, क्या बात है। और यही वो ऑपरेशन था जिसकी वजह से आपको प्रेस्टीजियस पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया राष्ट्रपति द्वारा 2024 में।
0: जी बिल्कुल, इस ऑपरेशन में सबका सहयोग था, सीनियर से लेकर के जूनियर सबका सहयोग था।
1: जी
0: मैं आपको छोटा सा वृतांत इस ऑपरेशन का बताना चाहता हूं।
1: जरूर जरूर।
0: ये हमारी प्लानिंग चल रही थी, जो बिहार के लखीसराय में मैं लोकेटेड था, वहां पे मेरी पोस्टिंग थी, तो हमारी प्लानिंग चल रही थी कि वहां का जो नक्सल ग्रुप है
1: जी,
0: उसको कैसे ट्रैप किया जाए, अपने चक्रव्यूह में कैसे लाया जाए। तो जिन सीनियर्स के मैंने नाम बताया आपको
1: जी,
0: उनके सानिध्य में हमारी प्लानिंग चली, फिर हमने एक गुप्तचर को प्लांट किया उनके नक्सली टीम में और फिर उसके द्वारा दी गई सटीक जानकारी के बेसिस पे हमें ये पता चला कि दिनांक 2 फरवरी 2022 जो मुठभेड़ का दिन था
1: जी,
0: उस दिन ये नक्सली जंगल में आने वाले थे, कोई एक खास जगह थी जहां पे वो आने वाले थे। तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार थे, हमने पहले से एक लंबी प्लानिंग कर रखी थी। तो हमारी टीम उसके अंदर लॉन्च हुई लगभग, हम अपने पूरे फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ लॉन्च हुए और हमारे हमारे जो कमांडेंट जो थे श्री दीपक सिंह एवं श्री सुशील कुमार जो लखीसराय बिहार के SP थे एवं श्री मनोरंजन पांडे हमारे कमांडेंट सर थे, उनके मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम लॉन्च हुई, जिसमें नरपत सिंह डिप्टी कमांडेंट, गुलशन झा सर, जसवीर तोमर सर और मैं, और मेरे साथ अलग अलग रैंक्स के लड़के थे। हमने 2 टीमें बनाई और जंगल की अपनी चुनौतियां हैं।
1: बिल्कुल,
0: जंगल में आपको ये नहीं पता होता है कि गोली कब किधर से आएगी, क्योंकि कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। तो हमें एक जनरल इलाका पता था कि यहां पे नक्सली आने वाले हैं
1: जी,
0: तो हम उस इलाके की तरफ बढ़ रहे थे अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ। और 2 तारीख को लगभग 9 बजे सुबह की बात है ये
1: जी,
0: सीधे गोलियों की बौछार हम पे आई।
1: ओके, तो यानी कि आपकी जब आंख खुलती है तो सीधा गोलियों से आपका स्वागत करते हैं वो लोग।
0: जी बिल्कुल, हम जब आगे बढ़ रहे थे उस एरिया की तरफ जा रहे थे तो एकदम से हमारी गोलियों की बौछार हमारे ऊपर आई, क्यों, और जंगल में एक सिद्धांत चलता है
1: जी,
0: यू मिस एंड आई हिट, और पहली गोली जो थी नक्सलियों की वो उन्होंने मिस कर दिया था।
1: ओके,
0: हम में से किसी को भी वो उनकी पहली गोली नहीं लगी, तब हमें पता था कि अब हमें क्या करना है, उसने मिस कर दिया, वी आर गोइंग टू हिट देम।
1: एग्जैक्टली, मतलब हम नहीं मिस करेंगे किसी भी कीमत पर।
0: बिल्कुल, एक हमारी ट्रेनिंग ही इसलिए होती है
1: जी,
0: कि हमको उसको हिट करना है। तो हमने वहीं पर रणनीति बनाई कि कौन किधर से कैसे अटैक करेगा, और फिर जवाबी जो हमारी कार्रवाई

0: वो हमने फुल स्ट्रेंथ में जवाबी कार्रवाई की नक्सलियों के ऊपर। क्रॉस फायरिंग चली, बहुत देर तक फायरिंग चलती रही, लगभग आधे घंटे तक ये फायरिंग चली, उसके उपरांत जाकर के ये फायरिंग समाप्त हुई। तो ये जो यज्ञ, ये जो नक्सल एनकाउंटर होता है ना, ये हम फौजियों के लिए एक यज्ञ जैसा है, एक धार्मिक अनुष्ठान जैसा है, जिसमें कि हम अपना तन मन धन सब झोंक देते हैं। तो फिर जब ये फायरिंग खत्म हुई
1: जी,
0: उसके बाद जाकर के हमने देखा तो हमने पाया कि दो बॉडीज वहां पे हमें मिली, और संयोग से वो दोनों बॉडीज थी जितेंद्र कोड़ा और विनोद कोड़ा की,
1: मतलब जो उनके लीडर्स थे।
0: जी बिल्कुल, जो उनके लीडर्स थे, जिनका आतंक जो है वो पूरे पूरे लखीसराय क्षेत्र में कहें, पूरे बिहार क्षेत्र में फैला हुआ था, और जिनके आतंक के कारण जनता हमसे कुछ बात नहीं करती थी, हमारे नजदीक नहीं आती थी, उन दोनों की बॉडीज हमें वहां मिली। और उसके अतिरिक्त एक उनका और लीडर था अर्जुन कोड़ा
1: जी,
0: जिसको कि उसके राइट थाई में जाकर के हमारी गोली फंस गई थी, और फिर आगे आने वाले एक महीने बाद
1: जी
0: उसने उसने सरेंडर किया एक दूसरी फोर्स के सामने, और उसने ये बताया
1: जी
0: कि उस दिन एसएसबी के साथ हुई मुठभेड़ में वो गोली जो है मेरे थाई में आके फंस गई है, और अगर मैंने सरेंडर इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं इलाज नहीं करवाऊंगा तो मैं
1: मर जाऊंगा,
0: मैं मर जाऊंगा।
1: तो उसके बाद इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा।
0: जी बिल्कुल, तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी, मैं इसे अपने जीवन का सबसे स्वर्णिम पल, अविस्मरणीय क्षण मानूंगा, जहां पे कि मुझे गर्व है कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ ऐसे राक्षस से लड़ा
1: जी
0: और उसे पराजित किया, और उसका जो फल मिला वो सबसे सुखद फल था कि जो हमारा ध्येय वाक्य है सेवा सुरक्षा बंधुत्व
1: जी,
0: हमने सेवाएं दी वहां की जनता को, उनके मन में नक्सलियों को मारने के उपरांत
1: जी
0: उनके मन में एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ
1: बिल्कुल,
0: और अंततः वो बंधुत्व में तब बदला जब मैं उसी गांव वाले के साथ जो हमसे बात नहीं करता
1: जी
0: था उसी के साथ मैं बैठ करके चाय पीता था
1: और क्या बात है,
0: खाना खाता था।
1: क्या बात है
0: तो
1: सर,
0: ये सशस्त्र सीमा बल की जीत थी।
1: बेशक बेशक, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो आपका इतना डायरिंग ऑपरेशन था उसके बाद इसमें जो आपने कामयाबी हासिल करी तो यही सबसे बड़ी जीत थी, कि जो विश्वास जो आपने बनाया उन लोगों में जो आपसे पहले बात करने में डरते थे। यहां जिस तरीके से शिवम कुमार आप अपनी जिस तरीके से ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे, भाई इमेजिन कर रहा था स्टूडियो बैठ करके कि वो क्या सिचुएशन, वो मंजर रहा होगा। तो मैं सर ये जानना चाहता हूं, एक शायद लिसनर भी जानना चाहता है, और इतने मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं मैं उनको अभी ले नहीं पा रहा, बाद में लूंगा। तो क्या ये जो हम अक्सर मैं बात करता हूं कि हम इस तरीके की कुछ सिचुएशन देखते हैं, आप आमने सामने से दो ग्रुप में जो फायरिंग चल रही है, बैटल चल रही है, वॉर सिचुएशन है, तो वो हम फिल्मों में जो देखते हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट सा होता है, लेकिन आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं, और आप अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी वहां पर लगा रहे हैं उन क्रिमिनल से, उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए। सर वो मोमेंट, वो जज्बा, वो जो एक फीलिंग होती है वो क्या होती है, वो खौफ, वो डर, वो सिचुएशन, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपके अपने शब्दों में।
0: सबसे पहले तो मैं जो सुन रहे हैं जितनी भी श्रोतागण
1: जी,
0: मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये फिल्मों में जो ग्लैमराइज किया जाता है, फौज में आने के सबसे पहले दिन तो आपका ग्लैमर जाता है, वो ग्लैमर छूटता है सबसे पहले, क्योंकि आप ग्लैमर के बल पे आप ये बहुत लंबी सेवा नहीं दे सकते हैं
1: जी।
0: इसमें आपके अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना
1: जी,
0: जो राष्ट्र के प्रति जो आपकी सेवा भाव है, जो अंतर्निहित किया जाता है, वही आपको लंबे समय तक बतौर फौजी आपको खींचेगा। तो जैसा आप बता रहे हैं कि जब गोलियां चलती हैं
1: जी,
0: तो हमारी तैयारी इसी क्षण के लिए होती है। एक फौजी के जीवन में ये सबसे बड़ा क्षण होता है कि जब उसको सामने एक ऐसा व्यक्ति है जिसने समाज के में कई हत्याएं की हैं
1: जी,
0: कई बेगुनाहों की जान ली है, जब वो उसका खात्मा करता है तो हम इसे किलिंग नहीं, इसे हम वध मानते हैं, और एक राक्षस का वध करते हुए जो अनुभूति होती है, जो आनंद आता है, वो
1: उसके कहने क्या है,
0: उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा।
1: क्या बात है, और इसीलिए देश की मिट्टी को सलाम करने को जी चाहता है उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ शिवम कुमार ने इस खतरनाक ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया। सर मैं और अब इंतजार नहीं कर सकता, मैं आपको एक एक करके कुछ मैसेजेस पढ़ करके सुनाऊंगा। शुरुआत जो सबसे पहले मैसेज आया हमारे पास यहां पर, बोथ आरजी एंड असिस्टेंट कमांडेंट शिवम जी एंड ऑल AIR न्यू दिल्ली फ्रॉम, ये मुबारकबाद दे रहे हैं, वणक्कम नमस्कारम, और ये हैं श्रीरंगम राजेश, श्रीरंगम त्रिची त्रिचुपल्ली तमिलनाडु से
0: जी। धन्यवाद और जय हिंद राजेश जी आपको।
1: और इसके बाद है एक मैसेज, जय हिंद साहब, बहुत बहुत मुबारक सर आपको, SSB के जरिए पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं आप, आपके साथ
0: कजरा लिखा है,
1: हाँ कजरा में काम कर रहे बहुत

0: कुछ सीखने को मिला साहब, जय हिंद। सर, ये आपके कोई एसोसिएट, कोई आपके साथी या जूनियर लगते
1: बिल्कुल
0: हैं?
1: बिल्कुल, ये मेरे साथ के हैं, मेरे
0: अच्छा
1: जूनियर और सीनियर तो है, ये पूरी टीम की बात है, क्योंकि
0: जी, बिल्कुल
1: ये मेरे
0: बिल्कुल,
1: टीम के साथी हैं
0: साथी हैं
1: जिन्होंने
0: आपके।
1: कार्य किया है हमारे साथ।
0: और इसके बाद ये जय हिंद टू रेस्पेक्टेड गेस्ट सर एंड आर्जे सर हियर। आई वुड लाइक टू पे माय ग्रेटिट्यूड टू शिवम सर एंड ऑल आर इंडियन आर्मी फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। इट्स बिकॉज देयर सेल्फलेस सर्विस विद डेडिकेशन डिवोशन दे डिस्चार्ज दे ड्यूटी फेयरलेसली। दे आर रियल हीरोज। आई बो माई हैड टू देम, सो आई वुड से जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। माई सेल्फ शंकर लोध एंड माई वाइफ अंजलि लोध ऑफर ओबीडियंस टू ऑल माई टू देम माई रिक्वेस्ट टू आर सर प्लीज फॉरवर्ड माई मैसेज शिवम सर। थैंक यू सर, आपका मैसेज हमने पहुंचा दिया है, शिवम सर सुन रहे हैं।
1: जी धन्यवाद मिसेज एंड मिस्टर लोध जी, मैं आशा करता हूं कि आप ये सभी संदेश जो फौजियों के द्वारा दिया जा रहा है उसको सुन रहे हैं,
0: जी
1: और इस चीज के लिए आपका धन्यवाद।
0: जी इसके अलावा मैसेज है ये, शुभ संध्या कह रहे हैं, जय हिंद, राजेश भल्ला एडवोकेट है कंकड़खेड़ा मेरठ से।
1: जी बिल्कुल, धन्यवाद आपको राजेश जी, मुझे
0: और
1: खुशी है कि
0: जी
1: एडवोकेट से लेकर के टीचर सभी सभी
0: सभी
1: वर्ग के लोग हमारा इस संदेश को सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल सर, अपने कर्म और मजबूत इरादों के लिए पहचाने गए नक्सल उन्मूलन हेतु कृत संकल्प राष्ट्र प्रेमी को सल्यूट है। ललन मिश्र रांची झारखंड से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपको।
1: जी बिल्कुल, रांची मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि रही है, तो यहां से ये मैसेज आया।
0: बिल्कुल, आपके अदम्य साहस और त्याग के कारण ही हम अपने घरों में सुरक्षित चैन की नींद सो पाते हैं। आप हमारे असली नायक हैं। जय हिंद, जय भारत। यह है नेहा मिश्रा सर।
1: मुझे खुशी है कि समाज के सभी लोग फौज के कार्यों का, फौज की जो भी ड्यूटीज होती हैं उसका इतना सम्मान कर रहे हैं।
0: और ये है सर, जय हिंद सर, प्लीज एक कविता भारत मां के नाम कहिए। रोहित मेहर हैं ये, विजयपुर बारगढ़ उड़ीसा से।
1: जी रोहित जी धन्यवाद, मैं कविता सुनाऊंगा आपको अंत में।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर सुनना चाहेंगे सर। हम लोगों का शिवम सर के साथ काजरा बिहार में कार्य करने का अनुभव बहुत उम्दा रहा। शिवम सर का पुलिस को जनता से करीब लाने का बहुत बड़ा योगदान रहा है काजरा लखीसराय बिहार में। सर ये भी आपके कोई साथी लगते हैं, सौम्य झा इनका नाम आ रहा है।
1: जी बिल्कुल, ये मेरे साथ के ही हैं, और हमारा उद्देश्य यही होता था कि जनता और पुलिस के बीच, फोर्स के बीच की जो खाई है उसको, उस खाई को पाटना ही
0: पाटना
1: हमारा उद्देश्य था।
0: बिल्कुल, करीब लाना है। जय हिंद सर, मैं आपको सुन रही हूं, आपकी बातें और आपकी आपके जज्बे को सलाम करती हूं। उम्मीद करती हूं हमारे देश के नौजवान प्रभावित होकर देश सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, मैं शबनम हूं, बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से। गारंटी अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई दे रही है सर ये आपको।
1: धन्यवाद शबनम जी, जय हिंद।
0: और ये हैं शिवम जी, यू आर अ पर्सन ऑफ ग्रेट विल पावर एंड करेज, एट द सेम टाइम यू आर वेरी काइंड ह्यूमन, अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर आवर यंगर जनरेशन। मैसेज आया सर ये विश्वजीत बिहार से, प्राइड ऑफ नेशन, प्राइड ऑफ बिहार, शिवम कुमार।
1: धन्यवाद विश्वजीत जी हमारे कार्यों की सराहना करने के लिए।
0: जी और ये है सर, हेलो सर, ग्वालदाम में महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छे से आपने काम किया है। ये है मृदुल झा
1: जी। धन्यवाद मृदुल जी आपको, ये मुझे उम्मीद है कि ये शायद हमारे यहाँ माउंटेनियरिंग कोर्स जो महिलाओं का,
0: जी जी जी, उसकी ये उसकी जरूर जरूर पार्टिसिपेट रही होंगी। मैं नरपत सिंह, उप कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल अंतागढ़ कांकेर छत्तीसगढ़, अपने 60 जवानों के साथ आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं सर। ये FM रेनबो की पूरी टीम को हार्दिक आभार, कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायक और आनंददायक है। हमारे साथ श्री डकेश्वर प्रसाद चंद्र, सहायक कमांडेंट भी उपस्थित हैं, उनकी ओर से भी शिवम जी एवं पूरी टीम को विशेष रूप से जय हिंद।
1: नरपत सर 4 बार के गैलेंट्री विनर हैं, मैं
0: okay.
1: तो अपना गुरु मानता हूं, और हमारे टीम के ये ग्राउंड कमांडर्स में से एक थे, तो
0: okay.
1: जो मैंने सीखा है इन्हीं सीनियर्स से सीखा है।
0: क्या बात है सर, तो नरपत सिंह जी भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने शो के माध्यम से, आपने हमें मैसेज भी किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और यह है शिवम सर, एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी, फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिम, ही ट्रूली डिजर्व ऑल द एक्लेड्स because of his team and their dedicated efforts, a lot of people today live terror-free. Proud of him. Ayush Dhadich hain ye, Nayi Delhi se.
1: Ji, bilkul, ye hamare junior hain aur main ummeed karta hoon ki jis pehal ki shuruaat hum logon ne ki hai,
0: ji.
1: us pehal ko aage aane wale jitne bhi adhikari hain, usko makam tak le jayenge apni team ke saath.
0: Bilkul, aur Ayush bhi uska hissa rahenge.
1: Ji, bilkul.
0: Aur ye hain, Naxali operation ko successful banane ke liye, bahut bahut badhai Shivam ji, proud of Shalini Pathak likh rahi hain aapke liye.
1: धन्यवाद शालिनी जी आपका।
0: और यह है, मैं सोता हूं रातों को चैन से, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे लिए कोई जाग रहा है। शिव है ये मेरठ से।
1: ये हमारा फर्ज है, हमने राष्ट्र सेवा की कसम खाई है, और आप ऐसे ही आप चैन से सोएं, यही हमारी कल्पना है।
0: और यह है सर, शिवम सर के साथ कजरा में काम करने का अवसर मिला, कई ऑपरेशन में उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया। शिवम सर का नक्सलियों के लिए डायलॉग था कि ये कि या तो तुम अपनी हरकत छोड़कर समर्पण कर दो या ये देश

0: वरना अंजाम तो जानते ही हो, टीम को सदा फ्रंट से लीड किया है, ये कह रहे हैं पंकज लखीसराय से। सर आपके साथ ही हैं भी
1: जी, पंकज हमारे साथ के थे और ये सभी जाबाज ये टीम मेंबर्स हैं मेरे, जिन्होंने जी गोलियों के सामने जिन्होंने सभी ऑपरेशंस को अंजाम दिया है।
0: जी जी जी, और आपका पूरा पूरा साथ दिया और अपने आप को बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर के।
1: जी बिल्कुल, ये इनके बिना ये सारी उपलब्धि या ये सारा ऑपरेशन जी संभव ही नहीं था।
0: बिल्कुल। और एक और मैसेज है सर, जय हिंद सर, जब भी आपका प्रोग्राम सुनते हैं संदेश टू सोल्जर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर आपको बहुत बहुत बहुत जय हिंद। हम भी सर अपने बच्चों के को आर्मी में भेजना चाहते हैं। हम संजय बोल रहे हैं उत्तम नगर से नई दिल्ली, और आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा है और हमारे आर्मी के सभी जवानों को जय हिंद कह रहे हैं ये।
1: ये धन्यवाद संजय जी, और एक बार फिर से जैसा इन्होंने कहा, मैं एफएम रेडियो को, एफएम रेनबो को धन्यवाद देना चाहता हूं
0: जी,
1: कि जो देश विदेश के सभी लोगों को फौज के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उससे अवगत करा रहा है और फौज के राष्ट्रप्रेम से, राष्ट्रप्रेम की झागना को, भावना को प्रज्वलित कर रहा है लोगों के अंदर।
0: बिल्कुल सर, आकाशवाणी रेनबो का ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड शो है ये, और ये है संदेश टू सोल्जर्स। सर आपके साथ बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा, जो समय हमारे पास बचा है वो बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है आपके साथ बातचीत करते हुए इस जोश और जज्बे के साथ। हमारे साथ हैं श्री शिवम कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स शाहिद के साथ।

0: 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स. आप हैं शायद के साथ और हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट हैं सशस्त्र सीमा बल. सर, हम आपसे बहुत ही शानदार और जोश और जज्बे से भरी हुई बातें यहां पर कर रहे हैं और लगातार मैसेजेस का भी सिलसिला जारी है. मैं आपको जैसे अभी बता रहा था, तो हम यहां पर अब आगे बढ़ेंगे सर और जानना चाहेंगे कि आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं, आपका ऑपरेशनल एक्सेलेंस है जो आपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में दिखाया, उसके अलावा आपने कई खतरनाक वांटेड एक्सट्रीमिस्ट और क्रिमिनल्स को भी ढेर करा, उनको पकड़ने में पूरे पूरे सक्सेसफुल ऑपरेशन चलाए. उसके अलावा आपने इसके अलावा भी कई हाई रिस्क ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं जिनके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रेस्टिजियस अवार्ड था पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2024 में. उसके अलावा आपको कई सारे मेडल्स, कमेंडेशंस और एप्रिसिएशन मिले हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं डायरेक्टर जनरल SSB से, इंस्पेक्टर जनरल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, सुपरिनटेंडेंट ऑफ पुलिस से और कमांडेंट से और अदर सीनियर ऑफिसर से भी. आपको आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आपकी ऑपरेशनल अचीवमेंट्स के लिए, आपकी लीडरशिप के लिए, आपके प्रोफेशनलिज्म के लिए, पब्लिक स्पीकिंग और साथ ही एक चीज और भी जो आपके साथ जुड़ी हुई, इतनी सारी आपकी जो खूबियां हैं उनके साथ साथ कि आपकी जो लीडरशिप स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग है, आप किस तरीके से मोटिवेट करते हैं यंगस्टर्स को, और साथ ही साथ फोर्स लेवल डिबेट कॉम्पिटिशंस भी आप कंडक्ट कर चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए.
1: जी शाजी जी, इसमें सबसे प्रथम यह है कि आप जिसके साथ भी कार्य करते हैं, तो हमारे के जितने भी टीम मेंबर्स होते थे, हमारे जितने भी साथी होते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक
0: जी,
1: आपको यह समझना पड़ेगा कि आप फर्स्ट अमंग द इक्वल्स हैं, आप उनके साथ के ही हैं. जब आप उनकी परिस्थिति को समझेंगे, जब आप उनके शूज में आएंगे, तभी आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं. तो एक कमांडर का सर्वप्रथम यह कार्य है कि वो अपने साथियों की परेशानियों को समझे
0: जी,
1: उनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज मुहैया करवाए और उनको मोटिवेटेड रखे कि हर परिस्थिति में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल इश्यूज हो
0: जी,
1: लगातार उसको केटर करे, उसकी उसकी समस्या का निराकरण करने की कोशिश करे और हर वक्त उसके साथ खड़ा हो, उसके अच्छे दिन में, उसके बुरे दिन में. तभी जाकर के वो फौजी या वो जो भी आपका सबॉर्डिनेट है
0: जी,
1: वो आपसे आगे, जब भी बाधा आएगी, जब भी गोली आएगी, तभी वो आपसे आगे, कमांडर के आगे वो खड़ा होगा. जब उसको पता होगा कि उसका कमांडर उसके लिए हर क्षण खड़ा है, तभी वो आपके लिए खड़ा होगा,
0: तभी वो खड़ा होगा, क्योंकि आप उसके लिए पहले से खड़े हैं. सर, हम आपके अवार्ड्स और जो कमेंडेशंस हैं और जो आपके मेडल्स हैं उनकी बात करते हैं. नवंबर 2025 में एंटी नक्सल ऑपरेशंस और शानदार लीडरशिप के लिए ऑनरेबल गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ने भी आपको अवार्ड से सम्मानित किया था, वो कौन सा अवार्ड था?
1: जी, मुझे एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए 2024 के नवंबर में
0: जी
1: 2025 के नवंबर में, क्योंकि मैं झारखंड का रेसिडेंट हूं
0: जी,
1: तो मुझे झारखंड के ऑनरेबल गवर्नर एवं ऑनरेबल CM के द्वारा सम्मानित किया गया था, क्योंकि मैं वहां का वासी हूं, मेरा स्टेट झारखंड है और मैंने अपने फोर्स के लिए और अपने देश के लिए या अपने टीम के साथ मिलकर मुझे ये कार्य करने का अवसर मिला था
0: जी,
1: इसका सम्मान किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा
0: जी. और सर, इसके अलावा आपको उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से भी जनवरी 2026 में भी आपको सम्मानित किया गया था. आपकी जो एज ए ट्रेनर CINJW स्कूल SSB गोलदाम में आपने जो अपनी सेवाएं दी एज ए ट्रेनर, उसके लिए भी आपको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने भी सम्मानित किया था
1: जी. मेरी अभी जो करेंटली जो मेरी पोस्टिंग है
0: जी,
1: वो CINJW स्कूल SSB ग्वालदम में उत्तराखंड में है, जहां मैं बतौर ट्रेनर हूं. तो पिछले 2 वर्षों से मेरी सेवाओं को फैसिलिटेट करने के, उसको सम्मानित करने के लिए मुझे ये मौका मिला कि मेरे सीनियर्स के द्वारा मेरा नाम नामित किया गया. मेरे DIG सर थे, श्री DN भोम्बे सर, उन्होंने मेरा नाम नामित किया और मुझे झारखंड उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये पुरस्कार दिया गया
0: जी. तो ये सर इतने सारे पुरस्कार हैं, इतने सारे आपके जो कमेंडेशंस हैं, मेडल्स हैं, अवार्ड्स हैं, इनको पा करके आप सर कैसा महसूस कर रहे थे और करते हैं?
1: सच पूछूं तो जब भी कोई ये कार्य करता है, अपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में मैं जा रहा था, तो सर्वप्रथम इसमें ऐसा नहीं था कि पुरस्कार के लिए ये चीजें की जाती हैं
0: जी, बिल्कुल.
1: तब सिर्फ राष्ट्रहित और देशहित का जो जज्बा है, वही आपको इन चीजों के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन पुरस्कार उसका फल है. तो मैंने जितने भी ऑपरेशंस किए, मैंने अपने सीनियर से सीखा है कि आप फल के पीछे ना भागें, क्योंकि ये

0: चीज है जहां पे कि जिंदगी और मौत जो है वो लाइन पे खड़ी होती है। तो इसके लिए पुरस्कार सिर्फ आपका मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं हो सकता, ये टीम एफर्ट है, राष्ट्रहित की भावना है जिसके
1: जी
0: लिए मैं ये कर रहा था,
1: जी
0: और जब पुरस्कार से इसको नवाजा जाता है तो निश्चित रूप से ये अच्छा प्रतीत होता है।
1: बेशक, और हौसला और भी बढ़ता है और आपके जो भी साथी होते हैं उनको भी हौसला मिलता है। सर, ये सब ऑपरेशंस में, इतनी सारी आपकी ट्रेनिंग में, इतने आपके कोर्सेज में, और फैशन टेक्नोलॉजी से एसएसबी में आने में, परिवार का आपका किस तरीके से पूरा एक रोल रहा, सहयोग रहा, कैसी सपोर्ट रही, ये भी बताइए।
0: जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बड़े परिवार से आता हूँ जिसमें कि तीन, हम लोग चार भाई बहन हैं और मेरे माता पिता हैं, और मेरी शादी हो चुकी है, मेरी धर्म पत्नी भी हैं।
1: जी
0: तो मेरे पिताजी ने और मेरी माँ ने इसका खुले दिल से इसका सपोर्ट किया जब मैं फोर्स में
1: जी
0: आना चाहता था। हालांकि मेरी माँ डरती थी इस चीज़ से,
1: ओके
0: लेकिन मेरे पिताजी ने बहुत बार मुझे मोटिवेट किया, और मेरे जितने भी भाई बहन हैं और जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, मेरी दो बहनें बड़ी हैं, एक मेरे बड़े भाई साहब हैं,
1: अच्छा
0: उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए लगातार। और अंत में जिस व्यक्ति का एक और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो
1: जी
0: है मेरी पत्नी। उन्होंने लगातार, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको ही इस कठिनाई को झेलना पड़ता था जब मैं बाहर रहता था,
1: जी
0: 3-4 दिनों तक मेरी बात नहीं होती थी उनसे, तो
1: तो
0: वो
1: जाहिर है ये
0: बहुत
1: सपोर्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट
0: सबसे
1: सपोर्ट।
0: हाँ ये ऐसा सपोर्ट था जिसकी कि मैं कल्पना नहीं की थी मैंने, तो मैं उसके लिए सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसा परिवार मिला है।
1: सर बिल्कुल, समय हमारे पास खत्म हो चुका है और बातें बहुत सारी बची हुई हैं और मैसेजेस इतने आ चुके हैं मेरे पास कि अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो मुझे लग रहा है कि 15-20 मिनट उसी में निकल जाएंगे। लेकिन मैं बस चलते चलते आपसे एक दो मैसेज पढ़ने के बाद चाहूंगा कि आप युवाओं को मोटिवेट करने के लिए कोई बात कहना चाहें तो वो कहें, और साथ ही अपनी वो एक स्पेशल कविता की चंद पंक्तियां भी जरूर सुनाइएगा। और मैं आपको तब तक एक दो पैसेज बता दूं सर, ये है वी आर प्राउड ऑफ यू शिवम सर, रागिनी है गुवाहाटी से। इसके अलावा जय हिंद सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से। इसके अलावा ये है हमारे देश के फौजी भाइयों की हमारे को हमारे ओर से सल्यूट, और काफी लंबा मैसेज है। ये है पंडित चनप्पा सौंदर्य तेजस्विनी सरवाद से, और आप इसी तरह सभी को प्रेरणा देते रहें और जय हिंद कह रहे हैं। यह हैं सरिता मिश्रा जी। और इसके अलावा प्रसाद दुबासी एच सी आर्मर सर, यू आर लीडरशिप इज इंस्पायरिंग एंड यू आर एन एक्सेलेंट ऑफिसर, और योर वी अप्रिशिएट योर डेडिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। शायद ये आपके साथी होंगे
0: बिल्कुल मेरे
1: बाबुल
0: साथ ही हैं, और
1: जी।
0: मुझे इस बात का गर्व है कि इसमें से मोस्टली जितने हैं उन्होंने मेरे साथ कार्य किया है, तो ये एक अच्छी बात है।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे शो में आए और अपना समय निकाला। श्री शिवम कुमार सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल आज के संदेश सोलर के हमारे खास मेहमान। धन्यवाद बहुत बहुत सभी लिसनर्स का और हमारे आज के खास मेहमान का।
0: धन्यवाद सर।
1: जय हिंद
0: जय हिंद जय भारत।

0: प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का भारत अधिक विकास और अधिक उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैश्वन ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे बहाली के काम की समीक्षा की। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। और अंत में भारतीय पिकल बॉल संघ ने 2026 पिकल बॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।
1: संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। इस दौरान संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी

0: मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज ने इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने समुद्री अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय समृद्धि का परिवर्तनकारी इंजन बताते हुए युवाओं से आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित मत्स्य पालन और समुद्री व्यवसायों को विकसित भारत की आधारशिला के रूप में अपनाने का आग्रह किया। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6,00,000 करोड़ रुपए के विशाल निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नए भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के अंतर्गत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का 6ठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह सरकार के निरंतर प्रयासों और जनता की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है। भारत अफगानिस्तान संयुक्त समिति की 4थी बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस दौरान मानवीय सहायता, विकास साझेदारी, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, क्षमता निर्माण, शिक्षा, खेल, व्यापार, वीजा और संपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों के समूचे परिदृश्य की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव एम आनंद प्रकाश और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शुएब बरयलाई ने की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मॉनसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 4था T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में यह मैच जीतना होगा। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

सबसे पहले जानकारी लीजिए इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरसंध्या। कार्यक्रम युववाणी में शाम 5:30 पर चर्चा होगी कमी समय की या स्पष्टता की विषय पर। साथ ही आपको सुनवाएंगे नीलम जाधव की वार्ता, विषय होगा योग से कैसे रहें स्वस्थ। हेल्थ प्लस में बात करेंगे पेट के संक्रमण से बचाव के बारे में, साथ ही आपको सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:30। शाम 6:00 कार्यक्रम ग्राम्यालोक में चर्चा का विषय होगा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। साथ ही आप सुनेंगे भेंट वार्ता क्रम में कैसे पूरा हो किसान की दोगुनी आय का सपना, विषय पर डॉक्टर वीके सचान से अनिंद्र सिंह की बातचीत। कुछ लोकगीतों के अलावा आप सुनेंगे मौसम की जानकारी, मंडी भाव। मजदूर मंडल कार्यक्रम में आज के आकर्षण हैं मेरा देश मेरी शान, देश दुनिया, आज का प्रश्न, ज्ञान सागर, सेहत टिप्स और कुछ फिल्मी गीत। साथ ही चर्चा होगी संयुक्त

परिवार और श्रमिक जीवन विषय पर कार्यक्रम मजदूर मंडल प्रसारित होगा शाम 6:30 पर। शाम 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर आर के भारती की वार्ता धमनियों में घुलता जहर, मेरी माटी मेरा देश। ये कार्यक्रम प्रसारित होगा शाम 7:31 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम शब्द गीत। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा 8:30 पर। 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम कंट्री वाइड इनसाइट्स। 10 बजे आपको सुनवाएंगे काव्य गोष्ठी संख्या संवाद। प्रतिभागी होंगे डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष, सुरेंद्र सिंह वर्मा सजग, सत्येंद्र सिंह निर्झर, वेद प्रकाश मणि। 10:30 पर कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का प्रसारण में आप सुनेंगे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का ख्याल गायन।

और अब सुनिए कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना। चिंतन कार्यक्रम में 6:25 पर सुनिएगा भगवान गौतम बुद्ध के विचार। श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय प्रसारण आप सुनेंगे 6:35 पर। 6:45 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे संजय शर्मा की वार्ता। विषय होगा कृषि क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग। 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा में आप सुनेंगे डॉ राकेश नारायण गुप्ता की वार्ता रक्त का महत्व विषय पर। 7:31 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम आसपास। 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतांजलि में सदाबहार फिल्मी गीत। 9:25 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा में सदाचार से संबंधित गांधी जी के विचार। 9:45 पर कार्यक्रम लोक संगीत में कल कलाकार होंगी अंजू शर्मा। 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर सरिता। 11:00 कार्यक्रम आज के कलाकार केंद्रित होगा चरित्र अभिनेता आलोक नाथ पर। 11:30 पर कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत केंद्रित होगा मत्स्य पालन दिवस पर। विषय होगा जल स्रोतों में बढ़ता प्लास्टिक कचरा। दिन में 12:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। दिन में 1:45 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सुनेंगे सलीम हसन चिश्ती कव्वाल और साथियों की गाई कव्वाली। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर संध्या। सबसे पहले आइए सुनते हैं राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में आशा भोसले और उषा मंगेशकर का गाया भजन जोली फिल्म से।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

अभी आप सुन रहे थे रविंद्र रावल की शब्द रचना को रविंद्र वीजापुर और प्रतिभा राव के स्वर में। फिल्म थी हम प्यार तुम ही से कर बैठे। इस भजन को संगीतबद्ध किया था राम लक्ष्मण ने। कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत आपको सुनवा रहे हैं शागिर्द फिल्म से। इसे गाया है लता मंगेशकर ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे गोपी फिल्म का भक्ति गीत मोहम्मद रफी और साथियों के स्वर में। इसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा पर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट ऋषु वर्मा, लेकर आई हूँ आपका फेवरेट कार्यक्रम युववाणी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे ही होंगे और इस मौसम में अपना एज वेल एज अपनी फैमिली की हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों मानसून में अपना ध्यान कैसे रखना है इसके बारे में हम कार्यक्रम में आगे बात करेंगे, इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि आज का ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। लेकिन दोस्तों फॉर्मल शुरुआत करने से पहले अपने रूल को फॉलो करते हैं, यानी चलिए ज़रा अपने दिमाग के न्यूरॉन्स को एक्टिव करते हैं। आज एक बहुत ही दिलचस्प जनरल नॉलेज के सवाल के हम शुरुआत करेंगे। क्या आप जानते हैं कि जुलाई 2026 में दुनिया का कौन सा ऐसा बड़ा इंटरनेशनल स्पेस मिशन है जिसने अपनी सस्टेनेबल लाइफ सपोर्ट रिसर्च का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पूरा किया है? सोचिए सोचिए, अगर जवाब पता है तो अपने पास संभाल कर रखिए, अगर नहीं तो सर्च कीजिए। बाकी शो के आखिर में हम इस पर दोबारा बात करेंगे ही। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज जब मैं स्टूडियो के लिए तैयार हो रही थी ना, तो अचानक मैंने अपना नोटिफिकेशन पैनल देखा फ़ोन में। वहाँ करीब 15 अलग अलग पेंडिंग चैट्स थी, किसी का हाय था, हेलो था, किसी के कुछ लंबे लंबे पैराग्राफ्स में मैसेजेस थे, वहीं किसी का एक लाइन में मैसेज ख़त्म, वहीं एक ने तो 3 मिनट की पूरी वॉइस नोट भेज दी थी। अब दोस्तों जब मैंने वो वॉइस नोट सुना ना, तो मुझे लगा कि सामने वाला इंसान अपनी बात को क्लियर करने के चक्कर में कितना टाइम ले रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो लोग सिर्फ एक शब्द का मैसेज भेजते हैं वो टाइम तो बचा लेते हैं पर बात कभी क्लियर ही नहीं हो पाती। यहीं से दोस्तों मेरे दिमाग में ख्याल आया कि आज की हमारी चर्चा का विषय भी यही होना चाहिए, एंड दैट इज़ कमी समय की या स्पष्टता की है। साथियों आज की हमारी युवा पीढ़ी हर चीज़ में शॉर्टकट्स ढूंढती है। हम रील्स देखते हैं जो 15-15 सेकेंड की हो जाती हैं, हम टेक्स्ट मैसेजेस में ओके की जगह आजकल के लिखने लग गए हैं, गुड नाइट की जगह सिर्फ GN लिख देते हैं। हमें लगता है कि दैट वी आर सेविंग टाइम, लेकिन क्या सच में ऐसा है? आजकल तो वैसे भी जेंजी लैंग्वेज बहुत पॉपुलर हो रही है, जहाँ एक्चुअल में जो बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं या वर्ड्स होते हैं उन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। अब आप ज़रा सोचिए, आप किसी को आधा अधूरा मैसेज भेजते हैं तो सामने वाला उसे समझ नहीं पाता, फिर वो आपसे दोबारा पूछता है और आप फिर दोबारा रिप्लाई करते हैं, तो इस तरह एक छोटी सी बात को कम्युनिकेट करने में दुगना समय बर्बाद हो जाता है। तो क्या हमने वाकई समय बचाया या फिर हमने सिर्फ अपनी बातचीत की क्वालिटी यानी अपनी क्लैरिटी को दांव पर लगा दिया? आप ज़रा ये सोचिए, जब हम कॉलेज प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं या अपने ऑफिस में किसी कलीग को कोई टास्क एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, वहाँ अगर हमारे वर्ड्स साफ नहीं होंगे तो पूरा काम बिगड़ सकता है, राइट? अभी अगर मैं अपने वर्ड्स क्लियर ना रखूं, अपने सेंटेंसेस क्लियर ना रखूं, तो आप तक मेरी बात पहुंचेगी कि नहीं? दोस्तों हम अक्सर मान लेते हैं कि रिसीवर हमारी बात को खुद ब खुद समझ जाएगा, जिसे हम कहते हैं अज्यूम्ड कम्युनिकेशन, जो कि गलतफहमियों की जड़ है। जब आप अपनी बात को आधा अधूरा छोड़ देते हैं ना, तो फिर शुरू होती है आर्ग्यूमेंट्स और क्लैरिफिकेशन का एक लंबा दौर, जो आप शुरू में 2 लाइन ढंग से बोलकर बचा सकते थे अब वो 2 घंटे ले लेगी और आपको अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बात को इतना लंबा खींचते हैं कि सुनने वाला बीच में ही बोर हो जाता है, वो क्लैरिटी लाने के चक्कर में इतने सारे एग्जांपल्स और इतनी डिटेल्स में चला जाता है कि एक्चुअल टॉपिक ही चेंज हो जाता है। देखो आज के समय की सबसे बड़ी डिमांड है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी बात ऐसी हो जो कम समय में भी पूरी हो जाए और क्लियर भी हो। हमें एक बैलेंस बनाना होगा, जब आप अपने किसी दोस्त से या किसी कलीग से बात करें तो कोशिश करें कि आपके शब्द बैलेंस हों और उनका मीनिंग बिल्कुल साफ हो, क्योंकि आधी अधूरी बातें सिर्फ गलत फहमियों को जन्म देती हैं। और कॉरपोरेट वर्ल्ड हो या पर्सनल लाइफ, क्लैरिटी से बढ़कर कुछ भी कीमती नहीं है। बातचीत का असली मकसद सिर्फ आवाज़ निकालना नहीं बल्कि अपनी सोच को सामने वाले के दिमाग तक एग्जैक्टली पहुँचाना होता है। जब तक हम इस आर्ट को नहीं समझ पाएंगे ना, हम समय और समझ दोनों का नुकसान करते रहेंगे। तो दोस्तों इस बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आप समय बचाने के चक्कर में क्लैरिटी खो रहे हैं? सोचिए ज़रा। तब तक के लिए चलिए सुनवाते हैं।

0: दोस्तों चलिए अब कदम बढ़ाते हैं हमारे अगले सेगमेंट क्वेस्ट वर्ल्ड की तरफ। दोस्तों आज क्वेस्ट वर्ल्ड में हमारे पास एक बहुत ही अनोखा और टेक्निकल टॉपिक है जो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं VBG रैम जी अधिनियम यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो देखो असल में ये एक ऐसा मॉडर्न रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और मैकेनिज्म है जो आज के समय में हमारे देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन और रूरल अर्बनाइजेशन को गवर्न कर रहा है। कानून और प्रशासन की दुनिया में जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है तो उसका सीधा असर हमारी डेली लाइफ पर तो पड़ता ही है, और एक जागरूक युवा होने के नाते हमें इन नीतियों को समझना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य हमारे ग्रामीण इलाकों को डिजिटल और फिजिकल तौर पर शहरों से जोड़ना है ताकि विकास का लाभ केवल मेट्रोपॉलिटन सिटी तक नहीं सीमित रहे। इसमें ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाया गया है जिससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिले के टाइम पर पूरे हो सकते हैं। साथियों इसमें पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी बहुत कड़े नियम बनाए गए हैं क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही हमारे भविष्य की असली चाबी है। जब हम नई सड़कों पुलों का निर्माण करते हैं तो हमें ये भी देखना होता है ना कि हमारी प्रकृति को कोई नुकसान न पहुंचे। वहीं VBG रैम जी अधिनियम इसी संतुलन को बनाए रखने का काम करता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर और सुरक्षित माहौल मिल सके। इसके अलावा ये कानून युवाओं के लिए रोजगार और नए स्टार्टअप्स के लिए अपार संभावनाएं खोल रहा है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है तो वहाँ लोकल बिजनेस और लॉजिस्टिक्स को एक नई उड़ान मिलती है। हम जैसे लॉ के स्टूडेंट्स और कॉरपोरेट सेक्टर में जाने वाले युवाओं के लिए ऐसे रेगुलेटरी फ्रेम्स की स्टडी बहुत मायने रखती है क्योंकि भविष्य में हमें इन्हीं गाइडलाइंस के तहत और लीगल कंप्लायंसेस का काम संभालना है। तो दोस्तों देश के इस बदलते लीगल और इकोनॉमिक लैंडस्केप पर अपनी नज़र बनाए रखिए क्योंकि यही जानकारी हमें दूसरों से आगे बढ़ाती है और हमारे विजन का बड़ा बनाती है। दोस्तों वैसे आजकल की भाग दौड़ भरी लाइफ में जहां हम सब करियर पढ़ाई जॉब और फ्यूचर की चिंताओं में इतने बिजी हैं, हम अक्सर अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे पास सबका शेड्यूल होता है, बस खुद के शरीर को देखने के लिए आधा घंटा भी नहीं होता जिसमें हम जिम करें योग करें या सिर्फ मेडिटेशन ही कर लें। अभी वैसे 21 जून को योग दिवस निकल कर गया है, उस दिन तो हमने योग किया ही होगा बट नेक्स्ट डे हम उसे भूल गए। इसीलिए दोस्तों हमारी आज की वार्ता का विषय है योग से कैसे रहें स्वस्थ, और इस विषय पर गहराई से रोशनी डालने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं वार्ताकार नीलम जादौन।
1: आज हम बात करेंगे युवा योग से कैसे रहें स्वस्थ। तो सबसे पहले जानते हैं योगा क्या है। योग जीवन जीने की कला है। योग का अर्थ है मनुष्य का शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्ण विकास। योग से हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है। अब बात करते हैं युवाओं की। आजकल के युवा भागम भाग वाली जिंदगी में है बहुत व्यस्त रहते हैं जिसके कारण वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। कुछ युवा अपनी परीक्षाओं को लेकर तनाव से घिरे रहते हैं तो वे योग से खुद को शांत और प्रसन्न रख सकते हैं। आजकल

0: के युवा अनियमित खान पान की वजह से मोटापे का शिकार हो जाते हैं, तो योग के माध्यम से वो खुद को चुस्त दुरुस्त व तंदुरुस्त बना सकते हैं। युवा ज़्यादातर अपना समय कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, गेम्स इनमें बिताते हैं, जिसके कारण उन्हें कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे आँखों की समस्या, आँखों से पानी आना, सिरदर्द। तो इन सभी परेशानियों से योग की मदद से निजात पा सकते हैं। योग तन और मन दोनों के लिए ही लाभदायक है। युवाओं को अपनी उम्र से पहले ही बहुत सी परेशानियों जैसे बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना, योग इन सभी से छुटकारा दिला सकता है। योग युवाओं के विकास करने में भी काफ़ी मददगार है। योग शिक्षा के लिए भी काफ़ी मददगार है, जैसे एकाग्रता बढ़ाने, याददाश्त, दिमाग तेज़ करने, इन सभी के लिए लाभदायक है। त्रिकोणासन, ताड़ासन जैसी योग क्रियाएं युवाओं के विकास में अत्यंत लाभकारी हैं। युवा योग के माध्यम से अपने क्रोध, ईर्ष्या, इन सभी को नियंत्रण में रख सकते हैं। 21 जून को हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। योग के माध्यम से युवा अपनी शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं। योग लोगों को प्रकृति से जोड़ता है। योग हमारे पूर्वजों के द्वारा भी अपनाया गया है, जैसे सूर्य नमस्कार। योग के द्वारा गति, विकास और शांति को पूरे विश्व में लोगों तक फैला सकते हैं। युवा आजकल अपना समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जिसके कारण वे खुद को तनावग्रस्त महसूस करते हैं। समय पर नींद न लेने के कारण थकान, आलस, ये सब महसूस करते हैं, जो कि उनके शरीर के लिए और उनकी पढ़ाई के लिए भी हानिकारक है। तो इन चीज़ों को कम करें, समय पर नींद लें और सुबह जल्दी उठकर योग का अभ्यास करें। कुछ युवा योग को अपनाना चाहते हैं लेकिन वो अकेले नहीं कर पाते, तो वो युवा योग कैंप, किसी प्रशिक्षक या योग शिविर की सहायता ले सकते हैं और योग को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। युवा साथियों, अभी आपने जाना कि योग के क्या क्या लाभ हैं। प्राचीन काल से आज तक भारत की इस परंपरा को हम आगे बढ़ाते आए हैं और आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी का परिणाम है कि भारत में किए जाने वाली योग क्रिया की ख्याति अन्य देशों में भी पहुंची और अन्य देशों ने भी योग के महत्व को समझा और जाना। यही कारण है कि 21 जून को हम योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए आप और हम मिलकर एक नई शुरुआत करें और योग को अपने जीवन में शामिल करें। हम भी इस योग दिवस पर योग को अपनाएं और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करें तथा एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें।
1: दोस्तों, अभी आपने सुनी वार्ता योग से कैसे रहें स्वस्थ, वार्ताकार नीलम जादौन को, जिन्होंने इतने इजी वर्ड्स में हमें योग के महत्व के बारे में समझाया। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी डेली लाइफ में योग को ज़रूर शामिल करेंगे। दोस्तों, अभी जब हमने हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करी है तो अब बात करते हैं हेल्दी फूड आइटम्स की भी, जो बारिश के इस सीज़न में बहुत ही हेल्दी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पिज्ज़ा, बर्गर, पकौड़े, फ्रेंच फ्राइज, पास्ता एक्सेट्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कब से हेल्दी फूड हो गए। तो देखो, जिस तेज़ी से हम इन स्ट्रीट फूड्स और फास्ट फूड्स को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड ऑन कर रहे हैं तो लगता तो ऐसा ही है कि ये बड़े हेल्दी होंगे। पर दोस्तों, जोक्स अपार्ट, आजकल एक समस्या बहुत ही कॉमन हो गई है, एंड दैट इज़ स्टमक इन्फेक्शन। ये स्पाइसी और टैंगी स्ट्रीट फूड्स और कंटामिनेटेड वाटर से अक्सर हमारा पेट ख़राब हो जाता है, जिस वजह से हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी लो हो जाती है। पर अब बात आती है कि स्टमक इन्फेक्शन से कैसे

से बचें। तो सबसे पहला और सरल नियम है सफाई। जब भी आप बाहर जाएं ना, तो पहले ये देखें कि वो जगह हाइजीनिक है या नहीं, यानी साफ सुथरी है या नहीं। हो सके तो घर का बना फ्रेश खाना खाएं, स्पेशली इस रेनी सीजन में। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बाहर जाते हैं कॉलेज से या फिर कहीं भी हम बाहर जाते हैं तो हम भूख लगते हैं हमें, तो हम कहीं बाहर

तो हम कहीं बाहर का कहीं दुकानों का खाना खा लेते हैं। ये खाना देखने में तो भले ही बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन इसमें इस्तेमाल किया गया पानी, ऑयल खास तौर पर, और मसाले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जितना हो सके इन आइटम्स को अवॉइड ही करो। हो सके तो अपने पास हमेशा एक साफ पानी की बॉटल ज़रूर रखो। अच्छा दोस्तों, अब कुछ सिम्टम्स की भी बात कर लेते हैं। तो स्टमक इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं पेट दर्द, उल्टी, कमज़ोरी और बुखार शामिल होते हैं इनमें। अगर कभी बाय चांस आपको या आपके किसी दोस्त को या फैमिली मेंबर को ये इन्फेक्शन हो भी जाए तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, टाइमली मेडिकेशन से इसे हम पूरी तरह से सही कर सकते हैं। एक सजेशन और दूंगी, अभी जितना हो सके ना कि हल्का भोजन करें, जैसे खिचड़ी, ओट्स, दलिया या सूप। माना बारिश का मौसम है, पकौड़े खाने का मन होगा आपका, पर इसी टाइम आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम हमारे पेट की सेहत से सीधा जुड़ा होता है। इसीलिए पेट ठीक तो हम ठीक। अब पेट को हम सही करेंगे ही, उसी के साथ साथ हम अपनी मेंटल हेल्थ को भी सही करते हैं। और वो कैसे करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, म्यूज़िक के थ्रू। तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये रिलैक्सिंग सॉन्ग।

दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछा था कि जुलाई 2026 में किस इंटरनेशनल स्पेस मिशन ने अपनी सस्टेनेबल लाइफ सपोर्ट रिसर्च का बड़ा माइलस्टोन पूरा किया है। तो साथियों, इसका सही जवाब है आर्टेमिस सस्टेनेबल लूनर बेस प्रोग्राम। अब ये मिशन का क्या काम है, तो देखिए, ये मिशन चांद पर इंसानों के लंबे समय तक रहने और वहाँ सस्टेनेबल हैबिटेट्स बनाने की कड़ियों को जोड़ती है, जिससे आने वाले समय में मार्स के फ्यूचर मिशन का रास्ता भी साफ हो जाएगा। तो थी ना दोस्तों ये कमाल की जानकारी। अब दोस्तों, समय हो चला है आपसे विदा लेने का, पर जाने से पहले एक छोटी सी टिप। अब आपको जैसे पता ही है कि मॉनसून आया है, तो बारिश की बूंदें सबको बहुत सुहानी लग रही हैं, पर इस मौसम में सर्दी खांसी और स्टमक इन्फेक्शन, जिसके बारे में हमने बात की, वो कॉमन ही है। तो इसीलिए जितना हो सके आप अपनी डाइट में अदरक, तुलसी और पुदीने की हर्बल चाय या काढ़ा ज़रूर शामिल करें। इसके साथ ही बाहर निकलते वक्त अपने बैग में एक छोटा सा अम्ब्रेला या रेनकोट रखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बदलते मौसम की बारिश जितनी खूबसूरत है उतनी ही अनप्रिडिक्टेबल भी। तो खुद का ख्याल रखते हुए इस सुहाने मौसम को पूरी तरह इंजॉय कीजिए। इसी के साथ मुझे यानी ऋषि वर्मा को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम्यालोक।

किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा जानकारी और मनोरंजन से भरे कार्यक्रम ग्राम्य लोक में। और आज आपके साथ है आपकी रेडियो सखी शोभना। स्वीकार करिए हमारी राम राम। साथियों, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है, खेतों में रौनक लौट आई है और किसान भाई बहन पूरे उत्साह के साथ खेती बाड़ी के काम में जुट गए हैं। लेकिन जितनी ये हरियाली आंखों को सुकून देती है ना, उतना ही ये मौसम अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है। बारिश के दिनों में खेतों में फिसलन, बिजली गिरने का खतरा, पानी से भरे खेत, ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों के इस्तेमाल के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। ऐसे में जरा सी लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की। किसान साथियों, ये योजना ऐसे कठिन समय में किसान और उनके परिवार को आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। तो आइए जानते हैं कि ये योजना क्या है, इसके क्या लाभ हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसका लाभ कैसे लिया

जा सकता है। साथियों, किसान दिन रात मेहनत करके हमारे लिए अन्न पैदा करता है, लेकिन खेती का काम जितना जरूरी है उतना ही जोखिम भरा भी है, और इस बात से हमारे किसान साथी इनकार नहीं कर सकते, है ना किसान साथियों। खेत में ट्रैक्टर चलाते समय, ट्यूबवेल पर काम करते समय, पेड़ से गिरने पर, बिजली का करंट लगने पर, या फिर कोई भी सड़क दुर्घटना जैसी कोई भी घटना हो सकती है। कई बार ऐसी दुर्घटनाओं से किसान या फिर उनके परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत भी आ सकती है। तो ऐसे कठिन समय में परिवार को आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि यदि किसी पात्र किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए या फिर वो गंभीर रूप से दिव्यांग हो जाए तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके। इससे परिवार को मुश्किल समय में कुछ राहत मिलती है और आगे का जीवन संभालने में मदद भी मिलती है। किसान भाइयों और बहनों, कई बार देखा जाता है कि जानकारी के अभाव में लोग योजना का लाभ नहीं उठा पाते, इसलिए जरूरी है कि हर किसान इस योजना के बारे में जानकारी रखे और जरूरत पड़ने पर समय से आवेदन करें। अगर किसी परिवार के साथ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है तो घबराने के बजाय अपने क्षेत्र के लेखपाल, तहसील, कृषि विभाग या फिर जन सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। वहां आपको आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी मिल जाएगी। साथियों, सरकार की योजनाएं तभी सफल होती हैं जब उनकी जानकारी सही समय पर लोगों तक पहुंचे। इसीलिए यदि आपके गांव में कोई किसान भाई या उनका परिवार इस योजना का पात्र है तो उन्हें भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि दुर्घटना होने से पहले ही हम सावधानी बरतें। खेत में काम करते समय जल्दबाजी ना करें। ट्रैक्टर या कृषि यंत्र चलाते समय सभी सुरक्षा नियमों का पालन करें। बिजली के तारों और मोटर के पास सावधानी रखनी चाहिए। कीटनाशकों का छिड़काव करते समय मास्क, दस्ताने और अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग जरूर करना चाहिए। रात में खेत जाते समय टॉर्च साथ रखनी चाहिए और बरसात के मौसम में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। साथियों, ऐसे मौसम में किसानों को खेतों में ज्यादा काम करना पड़ता है। धान की रोपाई है, खेत की तैयारी है और दूसरी खेती बाड़ी के काम पूरे जोर शोर से चलते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। बरसात के दौरान खेतों में फिसलन हो सकती है, बिजली गिरने की घटनाएं भी इस मौसम में अधिक हो जाती हैं। कई बार खेतों में भरे पानी के कारण बिजली का करंट फैलने का खतरा रहता है, इसीलिए बारिश के समय खेत में काम करते हुए पूरी सावधानी बरतें। यदि तेज बारिश, आंधी या बिजली चमक रही हो तो खुले खेत में काम करने से बचें और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अगर ट्रैक्टर या फिर अन्य कृषि यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिसलन वाली जगह पर धीरे धीरे चलें। पानी से भरे खेत में बिजली के पंप या मोटर चलाने से पहले ये जरूर देख लें कि कहीं तार कटे हुए या खुले तो नहीं है। याद रखिए किसान साथियों, फसल जितनी जरूरी है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा है। थोड़ी सी सावधानी आपको किसी बड़े हादसे से बचा सकती है, और यदि किसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना की स्थिति बनती है तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ऐसे समय में पात्र किसान परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का काम करती है। साथियों, किसान बहुत मेहनत करता है और हर किसान यही चाहता है, हर किसान की यही इच्छा होती है कि उसे उसकी मेहनत का पूरा फल मिले। भाई, अब जब हमारे किसान काम करेंगे तो उन्हें फल तो मिलेगा ही। भाई, हमारे किसान मेहनत जो इतनी करते हैं, तो किसान साथियों, हम अपनी बातों को जारी रखेंगे, पर उससे पहले हमारा भी तो एक काम है आपका मनोरंजन करवाने का। तो बिना देर करते हुए आइए आपको सुनवाते हैं ये लोकगीत।

0: साथियों, हम बात कर रहे थे कि हमारे जो किसान हैं ना, वह यही चाहते हैं, उनकी यही इच्छा होती है कि उनको उनकी मेहनत का पूरा फल मिले, उसकी फसल अच्छी हो, लागत कम लगे, उपज ज़्यादा हो और सबसे बढ़कर उसकी आमदनी बढ़े, ताकि वो अपने परिवार की ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सके। आज का किसान नई तकनीकों को अपनाने के साथ साथ ये भी जानना चाहता है कि आखिर कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे उनकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है और उसका जीवन पहले से बेहतर बन सकता है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक भेंट वार्ता। तो आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता, कैसे पूरा हो किसान की दोगुनी आय का सपना। इस विषय पर कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर वी के सचान से बातचीत कर रहे हैं अनिंद्र सिंह। आइए वार्ता।
1: साथियों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उप कृषि निदेशक वी के सचान साहब मौजूद हैं। सचान साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: सर। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका एक सपना है कि हमारे देश का जो किसान है उसकी आय को दोगुना कर दिया जाए। आप चूंकि किसानों के साथ रूबरू होते हैं,

0: आपकी समझ से किसानों को इस दिशा में जब उनकी आय दोगुनी करने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री सेट करते हैं, उसमें क्या अड़चनें आपको दिखती हैं? कैसे उन पर विजय पाई जाए? कैसे किसान को मोटिवेट किया जाए कि उस दिशा में वो प्रयासरत हो और अपनी आय के साधनों को, अपनी आय को दोगुना कर पाए?
1: किसान भाइयों को और किसान भाइयों के साथ काम करने वाले लोगों को पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी कि खेती का जितना भी काम है फसल उत्पादन का, वो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है।
0: जी
1: हम बीज जमीन में बोते हैं और फिर पौधा जमता है तो उसको जलवायु पालती है। आज 1950 की अगर हम तुलना करके देखें तो हमारी मिट्टियों में जो कृषि योग्य भूमियाँ हैं उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन है जिसको हम जीवांश कार्बन कहते हैं,
0: जी
1: 1950 के दशक में हमारे देश की भूमियों में औसत जीवांश कार्बन 0.52% हुआ करता था। आज वो घट करके अगर एवरेज की बात करें तो 0.34% है।
0: आधे के करीब आ गया।
1: यानी कि हमारी जमीनों में ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया है। जो जमीन के नीचे 3 एक्वाफर में पानी पाया जाता है तो पहली सतह का पानी हम आज के 10-15 साल पहले पी चुके हैं। जब वनस्पतियों की बात करते हैं तो 1950 के दशक में करीब करीब 18% हमारे देश में जीवित जंगल था, आज वो 6.5% जंगल बचा है। चिड़िया कहीं नहीं दिखती, मधुमक्खी कहीं नहीं दिखती, तितली कहीं नहीं दिखती, तो जो जैव विविधता है वो सब हमने तोड़ दी है।
0: जी
1: तो किसानों की आय को दोगुना करने में अभी क्या है दिक्कत कि अभी किसान की लागत बहुत है। लागत इसलिए है क्योंकि गेहूं हो, आलू हो, गन्ना हो, कोई भी फसल हो, जब किसान अपनी फसल को बोता है तो हम उसको बोलते हैं कि इतना यूरिया डालना, इतना डीएपी, इतना पोटास और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। फिर उसके बाद फसल सुरक्षा की बात आती है तो फफूंद नाशक और कीटनाशक रसायनों का प्रयोग। फिर इधर हम खरपतवारों को भी जो है रसायनों से भी नष्ट करते हैं। बैल आधारित कृषि परंपरा हमारी बंद हो गई, ट्रैक्टर से जुताई होती है और केवल 7% लोगों के पास ट्रैक्टर है। तो किसान जब गेहूं की खेती करता है या कोई भी खेती करे
0: जी
1: तो उसकी लागत इतनी ज्यादा हो जाती है कि आमदनी और लागत के बीच में जो
0: अनुपात है
1: अनुपात था
0: वो
1: वो बहुत कम हो
0: बिगड़ गया
1: जाता
0: है।
1: है।
0: जी
1: तो किसानों की आय को दोगुना करने के पहले हम सबको मिल करके अपने प्राकृतिक जो संसाधन हैं यानी भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, भूमिगत जल को बढ़ाने के लिए, सतही जल के भंडार बनाने के लिए, जमीन का कुछ हिस्सा जो है पेड़ पौधों से ढकने के लिए, पशुपालन के लिए प्रयास करने जरूरी है।
0: आपका जो आशय है मैं अगर ठीक समझ पा रहा हूँ तो हमारे किसान को प्रकृति के नज़दीक पहुँचने की ज़्यादा ज़रूरत है, प्राकृतिक तरीकों को अपनाए जाने की ज़रूरत है।
1: जब हमारी जमीन की कोख अनुर्वरता की ओर बढ़ती है यानी कि उसकी उर्वरता खत्म होती है या क्षीण होती है
0: जी
1: तभी हमको रसायन की जरूरत पड़ती है। और जब हम अतिरिक्त रसायन डालते हैं तो हमारी फसल में कई प्रकार के पोषक तत्वों की डिफिशियंसी पर लक्षित होती है जिसको कई बार हम बीमारी समझ लेते हैं।
0: जी
1: फिर हम उसको फफूंद नाशक डालते हैं, फिर ये जो रसायन डालते हैं इससे कई प्रकार के कीट और पतंगे और चिड़ियां मरती हैं।
0: मतलब एक
1: जो
0: समस्या को हम खत्म करना चाहते हैं लेकिन वो दूसरी समस्या को जन्म देती है।
1: बिल्कुल कृषि उत्पादन की समस्या आज ये है कि हमारी जमीन में भूमिगत जल नहीं है। पहले 30-40 फुट पर जब पानी होता था तो कैपिलरी सिस्टम से वो जमीन का पानी ऊपर आकर के जड़ों की प्यास बुझा जाता था।
0: जी
1: आज वो पानी 200 फुट गहराई पर पहुंच गया। तो आज हम ड्रिप की बात करते हैं, ड्रिप की, स्प्रिंकलर की, वन ड्रॉप, मोर क्रॉप।
0: जी
1: तो 220 फुट वाला भी पानी खत्म हो जाएगा, एक दिन वो आएगा जो स्प्रिंकलर भी नहीं चलेगा। तो हमें स्प्रिंकलर और ड्रिप पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ
0: इन बातों का भी ख्याल करना
1: हमें
0: है कि
1: भूमिगत
0: उस
1: जल को ऊपर
0: ऊपर
1: कैसे
0: लाने की
1: उठाना
0: जरूरत
1: है
0: है।
1: इस पर चिंता करनी चाहिए। आज के 30 साल पहले लोग चना, मटर, मसूर, राई, सरसों की खेती में वर्षा वाली नमी में फसल को बोआते थे और उसके बाद काट लेते थे, पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज वो फसलें भी पानी मांगने लगी हैं जिनको कभी पानी की जरूरत नहीं होती थी। कारण क्या है कि हमारी भूमि की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अब नहीं बची। मोटी सी बात है, ये माँ है, धरती को माँ बोलते हैं हम, और जिसकी माँ स्वस्थ होगी उसके बच्चों को तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी,
0: जी
1: और जिसकी माँ अगर बीमार हो जाएगी तो फिर उसको तो कटोरा लेके भीख मांगने वाली जैसी स्थिति हो जाएगी।
0: जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई है जिसके तहत किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो मिट्टी की जांच कराए।
1: लेकिन अभी इसमें भी एक बाधा है कि हम किसान के खेतों की मिट्टी जो है उसके रासायनिक गुणों का अध्ययन करके और उसको फिर रसायन डालने के लिए प्रमोट करते हैं,
0: जी
1: जबकि भूमि के जो जैविक गुण हैं वो डिसाइड करते हैं कि इस मिट्टी के भौतिक एवं रासायनिक गुण कैसे होंगे। यानी अगर हम जैविक गुणों में सुधार कर लें तो उस मिट्टी के भौतिक एवं रासायनिक गुण अपने आप अच्छे हो जाएंगे।
0: जी
1: आज

0: रसायनों के कारण ही जमीन के भौतिक एवं रासायनिक गुण खराब हुए हैं। नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव रसायन डाल डाल करके मर गए हैं,
1: नष्ट हो गए हैं।
0: और उसी के कारण रेजिड्यू जो फसलों का अवशेष था समय से सड़ता नहीं है, मिट्टी कठोर हो चुकी है, ट्रैक्टर उसकी 3-4 इंच से ज़्यादा जुताई नहीं कर पाता है। तो ये धरती माँ है, इसके माँ की जो वैल्यू है, उसके जो गुणों को एनहेंस करने की बात है, उसके गुणों को हमें बढ़ाना पड़ेगा। जब गुण बढ़ जाएंगे तो किसान की लागत घट जाएगी, और जब लागत घट जाएगी तो उसकी आमदनी जो है दूसरे तीसरे साल ही दोगुना हो जाएगी। अभी 100 रुपया पैदा करता है, 80 रुपया लगा देता है, मैं कहता हूँ कि वो 50 रुपये लगा के जब 100 पैदा करेगा तो उसकी आमदनी दोगुना हो जाएगी।
1: चूंकि आप इस कृषि से बहुत अरसे से जुड़े हैं, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप किसानों को ऐसी क्या सलाह देंगे, किसान साथियों को ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे वो अपनी मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार सके।
0: हम किसान को यह सलाह देंगे कि वो कुछ ऐसा प्रबंध करे अपने खेतों की जो मेड़ है उनको इतना अच्छा कर ले कि वर्षा का पानी उसके खेत में ही रुक जाए, नंबर एक।
1: जी
0: नंबर दो, हमारे पूर्वज खेत की मेड़ पर पेड़ लगाते थे, विरासत में पेड़ सौंप करके गए थे, लेकिन इस पीढ़ी ने पेड़ काटे हैं, तो खेतों की मेड़ों पर वो पेड़ लगा दे।
1: जी
0: उससे क्या होता है कि वर्षा का पानी रुक गया और खेतों की मेड़ों पर पेड़ हो गए। दूसरी चीज, बड़ा किसान है उसको आगे आना होगा कि वो अपनी जमीन के 5% हिस्से में एक तालाब का निर्माण करे, क्योंकि नाना प्रकार के जीव जंतु कृषि में मदद करते हैं। अब पेड़, चिड़िया जो है हमारी पेड़ पर बैठेगी, लेकिन उसको पानी भी चाहिए, तो तालाब में अगर थोड़ा सा ही पानी होगा तो चिड़िया का जीवन चल जाएगा।
1: जी
0: उस तालाब में नाना प्रकार के ऐसे जीव होते हैं जो फसलों को रोगों से मुक्त करते हैं। सभी लोग मानते हैं कि पॉलिनेशन का सारा काम मधुमक्खियां और तितलियां करती थीं, तो तितलियां और मधुमक्खियां अगर हम लोग वापस नहीं ला पाए, चिड़ियां अगर वापस नहीं ला पाए, तो ये बीमारियां और फसलों के कीटों का नियंत्रण करते करते हमारा खुद ही नियंत्रण हो जाएगा। इसलिए मेड़, मेड़ पर पेड़, घर में पशुपालन और रसायनों से धीरे धीरे जो है हटना, फसलों का जो अवशेष है, सबसे बड़ी बात, फसलों का अवशेष हो, पशुओं का मलमूत्र हो, इसको किसी भी दशा में फेंकना, जलाना उचित नहीं है।
1: वो सड़ाकर उसका जीवाश्म जो है वो खेत की मिट्टी में ही जाना चाहिए।
0: जिस दिन मैंने ये चक्र बना दिया, उस दिन किसान को किसी निवेश की जरूरत नहीं रह जाएगी, फिर उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हमें अपनी धरती माँ को स्वस्थ करने के प्रयास करने होंगे। तो वो मेड़ बनाए, पानी बरसात का रोके, मेड़ों पर पेड़ लगाए, और अपने घर पर बकरी पाले, भेड़ पाले, गाय पाले, भैंस पाले, यानी पशु को, पेड़ को और पानी को जोड़ करके चलना है। मेड़ नहीं होगी तो पानी की समस्या हल नहीं होगी, पेड़ नहीं होगा तो चिड़ियों की समस्या हल नहीं होगी।
1: कहीं ना कहीं किसान को ये समझना पड़ेगा कि वो भूमि जिसमें वो खेती करता है उसको संरक्षित करे, प्राकृतिक जो तरीके हैं, जैविक तरीके हैं, उनको अपनाए। ये वो विधाएं हैं जिन पर जाकर किसान अपनी आय को बढ़ा सकेगा और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक अच्छा स्वस्थ वातावरण हमको देने में सहयोग कर पाएगा।
0: बिल्कुल
1: सचांद साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद,
0: नमस्कार।
2: तो किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, जिसमें आपने सुना उप कृषि निदेशक डॉक्टर वीके सचांद से अनेंद्र सिंह की बातचीत, और विषय था कैसे पूरा हो किसान की दोगुनी आय का सपना। तो किसान साथियों, सीधी सी बात है, आपको अपनी जो भूमि है उसको संभाल के रखना होगा। अगर आप अपने लिए कुछ चाहते हैं, अपनी आमदनी अच्छी चाहते हैं, आय बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपनी मिट्टी की सेहत की भी ख्याल रखना होगा। जिस प्रकार से आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से आपको अपनी मिट्टी की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। तो साथियों, अब समय है अंतराल का, पर कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: किसान भाइयों बहनों, अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रामीलोक में। साथियों, आज हम बात करेंगे साइलेज बनाने की तकनीक की। आपने कई बार खेतों में नीली या फिर काली पॉलीथीन से ढका हुआ बड़ा सा ढेर देखा होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये क्या है। दरअसल इसे साइलेज कहते हैं। साइलेज हरे चारे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का एक आसान तरीका है। मक्का हुआ, ज्वार हुआ या दूसरे हरे चारे को काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है, फिर उसे अच्छी तरीके से दबाकर हवा बाहर निकाल दी जाती है और ऊपर से पॉलीथीन से ढक दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब गर्मी या फिर सर्दी के दिनों में हरा चारा कम मिलता है, तब यही साइलेज पशुओं को पौष्टिक चारे के रूप में खिलाया जाता है। इससे दूध देने वाले पशुओं को अच्छा पोषण भी मिलता है और दूध उत्पादन पर भी अच्छा असर पड़ता है। अगर आप भी पशुपालन करते हैं तो अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या फिर पशु पालन विभाग से साइलेज बनाने की सही जानकारी लेकर इस तकनीक को अपना सकते हैं। तो किसान साथियों, है ना कितनी काम की ये तकनीक। तो किसान साथियों, चलिए बातें हमने बहुत सारी कर ली, अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो किसान साथियों, आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज आसमान में बादल छाए रहने तथा रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं गरज चमक की संभावना भी है और अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा की गति सामान्य रहेगी लेकिन गरज के साथ तेज हवा चल सकती है। किसान साथियों, आपके लिए सलाह यही है कि धान की रोपाई और दूसरी खरीफ फसलों के कार्य मौसम को देखते हुए करें। खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें ताकि अधिक वर्षा होने पर पानी ना ठहरे। तेज बारिश या बिजली चमकने के दौरान खेत में काम करने से बचें और किसी सुरक्षित स्थान पर जरूर चले जाएं। यदि कीटनाशकों का छिड़काव करना हो तो बारिश रुकने और मौसम साफ होने के बाद ही करें ताकि दवा का पूरा लाभ आपके फसलों को मिल सके। पशुओं को भी खुले स्थान पर ना बांधें और उनके लिए सूखे चारे और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था जरूर बना के रखें। तो किसान साथियों, बातें बहुत सारी हो गई, अब वक्त है आपके मनोरंजन का। तो जब आ ही गई है बरसात की मस्त बहार, तो क्यों ना हो जाए राम बालक दास की आवाज़ में ये लोकगीत।

साथियों, ग्रामीलोक कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अब दीजिए हमें विदा, फिर हाजिर होंगे खेती किसानी की नई जानकारी और उपयोगी सलाह के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी खेती को आगे बढ़ाते रहिए। तो दीजिए इजाजत कार्यक्रम संपन्न करने की, अपनी रेडियो दोस्त, अपनी रेडियो सखी शोभना को राम राम।

अभी ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम्यालोक। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मजदूर मंडल।

स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। सभी श्रमिक साथियों को आरती चक्रवर्ती का नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी का काम काज अच्छा चल रहा होगा। साथियों, मौसम बदल रहा है, कभी बहुत गर्मी तो कभी एकदम से बारिश। ऐसे में अपना और अपने परिवार के सदस्यों का खास ध्यान रखें। समय पर खाना खाइए और काम के बीच में थोड़ा आराम भी करिए। साथियों, दिन भर मेहनत करने के बाद जब हम शाम को घर लौटते हैं और अपने परिवार में सभी सदस्यों के साथ बैठते हैं तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। बच्चों की मुस्कान, बड़ों का स्नेह और अपनों का साथ सारी थकान को जैसे पल भर में भुला देता है। साथियों, जब बात परिवार की होती है तो सबसे पहले अपनेपन, साथ और भरोसे का एहसास होता है। हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए संयुक्त परिवार सिर्फ एक साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे का

जब घर में माता पिता, दादा दादी, भाई बहन और बच्चे एक साथ रहते हैं तो परिवार के लोगों में जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं और बड़े से बड़ी परेशानी हल्की लगने लगती है। अगर किसी दिन काम ज़्यादा हो जाए या तबीयत ठीक ना हो तो परिवार के दूसरे सदस्य साथ खड़े हो जाते हैं। यही साथ श्रमिक जीवन को आसान बना देता है। घर के बुजुर्गों का अनुभव परिवार को सही दिशा देता है और नई पीढ़ी को अच्छे संस्कार मिलते हैं। बच्चों की देखभाल अच्छे से हो जाती है। संयुक्त परिवार में बचत की संभावना भी बढ़ जाती है क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं। संयुक्त परिवार मानसिक सहारा भी देता है। दिन भर की मेहनत के बाद जब परिवार के साथ कुछ पल बिताते हैं तो तनाव कम होता है। दोस्तों, आज के समय में रोजगार, पढ़ाई और दूसरी वजहों से परिवार छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी सीख आज भी वही है, मिलजुल कर रहना, एक दूसरे का सम्मान करना और ज़रूरत पड़ने पर साथ देना। यही भावना हर परिवार को मजबूत बनाती है। संयुक्त परिवार सिर्फ एक रहने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि प्यार, विश्वास, सहयोग और अपनेपन की ऐसी परंपरा है जो श्रमिक परिवारों को हर परिस्थिति में मजबूती से आगे बढ़ने का हौसला देती है। साथियों, मेहनत करने वाला हर श्रमिक अपने पसीने से अपने परिवार का ही नहीं बल्कि देश के विकास का भी मजबूत आधार बनता है। जिस तरह आपकी मेहनत से नए घर, सड़कें, पुल और कारखाने बनते हैं, उसी तरह हमारे पूर्वजों ने अपने परिश्रम, साहस और अद्भुत कौशल से ऐसी धरोहरें बनाई हैं जिन पर आज पूरे देश को गर्व है। हम बात करने जा रहे हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया की। साल 2025 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। इसमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित 12 ऐतिहासिक मराठा किले शामिल है। ये किले छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की दूरदर्शिता, सैन्य कौशल और उत्कृष्ट निर्माण कला के साक्षी हैं। और ये किले हैं सालहेर किला नासिक महाराष्ट्र, शिवनेरी किला पुणे महाराष्ट्र, लोहगढ़ किला पुणे महाराष्ट्र, खंडेरी किला रायगढ़ अलीबाग तट पर महाराष्ट्र, रायगढ़ किला रायगढ़ महाराष्ट्र, राजगढ़ किला पुणे महाराष्ट्र, प्रतापगढ़ किला महाबलेश्वर के पास महाराष्ट्र, सुवर्ण दुर्ग किला रत्नागिरी महाराष्ट्र, पन्हाला किला कोल्हापुर महाराष्ट्र, विजय दुर्ग किला रत्नागिरी महाराष्ट्र, सिंधु दुर्ग किला सिंधुदुर्ग मालवन महाराष्ट्र, जिंजी किला विल्लुपुरम तमिलनाडु। साथियों, इन विशाल किलों को बनाने में अनगिनत कारीगरों, शिल्पकारों और श्रमिकों की मेहनत शामिल थी। उनकी लगन और कौशल ने ऐसी विरासत तैयार की जिसे आज पूरी दुनिया सम्मान की दृष्टि से देखती है। ये विरासतें हमें प्रेरणा देती हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता। ईमानदारी, मेहनत और समर्पण से किया गया काम समय बीतने के बाद भी अपनी पहचान छोड़ जाता है। तो चलिए हम सब अपने कामों को पूरी निष्ठा और गुणवत्ता के साथ करें और अपने देश के विकास में योगदान दें। साथियों, इसी के साथ वक्त हो चला है मनोरंजन का, पर उससे पहले आज का प्रश्न सुन लेते हैं। आज का प्रश्न है, ESI क्या है? एक बार फिर से दोहराती हूँ, ESI क्या है? उत्तर जानने के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी आगरा। आप सभी के लिए एक प्यारा सा गीत देश के नाम।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ

0: seamless banking and many other exciting benefits. Aaj hi visit kare apni nearest SBI branch aur Premier Banking activate kare. Terms and conditions apply.
1: साथियों, आज ज्ञान सागर सेगमेंट में हम जानेंगे भारत के महान कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और शिक्षाविद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, संगीत और चित्रकला जैसे कई क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दिया। वर्ष 1913 में इन्हें उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला और वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई साहित्यकार बने। उन्होंने ही भारत का राष्ट्रगान जनगण मन लिखा और उनके द्वारा ही रचित आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना की, जो आगे चलकर विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। उनका विश्वास था कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रकृति, कला और जीवन से भी सीखना चाहिए। साथियों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जीवन हमें सिखाता है कि ज्ञान, रचनात्मकता और मानवता किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। उनके विचार आज भी हमें शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रप्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और साथियों, आपको आज का प्रश्न तो याद है ना? आज का प्रश्न था ESI क्या है। साथियों, ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस यानी कर्मचारी राज्य बीमा भारत सरकार की एक ऐसी सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसे ESIC यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन संचालित करता है। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के पात्र कर्मचारियों और उनके परिवारों की बीमारी, दुर्घटना, मातृत्व और अन्य परिस्थितियों में आर्थिक और चिकित्सा सहायता प्रदान करना। साथियों, ESI योजना श्रमिकों और उनके परिवारों को कठिन समय में सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए अगर आप ESI के दायरे में आते हैं तो अपना ESI कार्ड और उससे जुड़ी सुविधाओं की जानकारी अवश्य रखें, क्योंकि सही जानकारी ही हमारे अधिकारों की सबसे बड़ी ताकत है। इसी के साथ साथियों, वक्त है अंतराल का और उसके बाद आप सभी के लिए एक प्यारा सा गीत।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

तो चलिए साथियों, अब जान लेते हैं देश दुनिया की कुछ खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई मजबूती देने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें रक्षा, ऊर्जा, साइबर सुरक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की सहमति मिली। और साथियों, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि देश के कई हिस्सों में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। साथ ही

लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साथियों, कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने एक नया डिजिटल पोर्टल शुरू किया है, जिसमें PF बैलेंस देखना, क्लेम करना और अन्य सेवाओं का लाभ लेना अब पहले से ज़्यादा आसान हो जाएगा। भारत ने वर्ष 2036 ओलंपिक की मेज़बानी की अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आने वाले वर्षों में कई अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की योजना में गति दी है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखने की सलाह दी है, ताकि अधिक बारिश से फसलों को नुकसान ना हो। साथ ही कीट और रोगों की नियमित निगरानी करने की

नियमित निगरानी करने की सलाह दी है। जुलाई माह में देश भर में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। किसानों और श्रमिकों से भी अपने गांव, खेतों और आसपास के क्षेत्रों में पौधे लगाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के औद्योगिक और आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए लगभग 6,466 करोड़ की विकास योजना पर काम आगे बढ़ाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार के नए अवसर, उद्योगों को बढ़ावा और शहर की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना है, जिससे स्थानीय युवाओं और श्रमिकों को लाभ मिलेगा। साथियों, बरसात का मौसम अपने साथ ठंडक तो लाता है, लेकिन संक्रमण का खतरा भी बढ़ा देता है। अगर काम करते समय हाथ या पैर में कोई कट, खरोच या चोट लग जाए तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। अक्सर कई श्रमिक साथी काम की व्यस्तता में छोटी सी चोट को मामूली बोलकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन बरसात में गंदे पानी, मिट्टी और नमी की वजह से छोटे घाव भी जल्दी संक्रमित हो जाते हैं, जिससे सूजन, दर्द, पस या बुखार जैसी समस्या भी हो सकती है। इसलिए घाव को सबसे पहले साफ पानी से धोएं, अगर उपलब्ध हो तो एंटीसेप्टिक दवा लगाकर साफ पट्टी से बांध लें। काम करते समय कोशिश करें कि घाव पर धूल मिट्टी या गंदा पानी ना लगे। अगर घाव गहरा है या लगातार खून निकल रहा है तो किसी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से संपर्क करें। साथ ही घाव अगर लोहे से हुआ है तो टिटनेस भी ज़रूर लगवाएं। साथियों, छोटी सी सावधानी हमें बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और साथियों, अगर बारिश हो रही है और बारिश में हम बारिश का गीत ना सुने तो आनंद कैसे आएगा। तो इसलिए आप सभी के लिए एक प्यारा सा गीत।

साथियों, अब समय है आपसे विदा लेने का। आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम की चर्चा, उपयोगी जानकारियाँ और स्वास्थ्य संबंधी सुझाव आपको पसंद आए होंगे। अब अनुमति दीजिए अपने रेडियो साथी आरती चक्रवर्ती को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। शाम के 7 बजने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
2: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहां पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहां आया हूं, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिश्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए गुणवत्ता और बाजार पहुंच को मजबूत करने के लिए सहयोगात्मक प्रणाली स्थापित करना है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा

0: में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6,00,000 करोड़ रुपए के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक आज कोच्चि में संपन्न हुई। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों के सामने महिलाओं के विकास से जुड़े कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि ये साझा चिंताएं ब्रिक्स महिला मंत्रियों के मंच जैसे प्लेटफॉर्म के महत्व को दर्शाती हैं। ये सदस्य देशों के बीच संवाद और सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मॉनसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथी T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi today outlined a powerful roadmap for a future-ready and developed India, driven by the mantra Grow More, Achieve More. Addressing the Indian diaspora in Melbourne, Mr. Modi highlighted India's economic and technological progress.
2: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर एचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है।
1: While crediting the Indian community for strengthening bilateral partnership, Mr. Modi asserted that ties between India and Australia have reached great heights. Mr. Modi highlighted the cultural roots, mini-India hubs and emotional bonds across borders. Speaking on the occasion, Australian Prime Minister Anthony Albanese said the enthusiasm at the event reflected the strength of the Australia-India partnership and the growing warmth in bilateral relations. Later, briefing media in Melbourne, Foreign Secretary Vikram Misri said the relationship between India and Australia is a dynamic and a fast-growing one. Early in the day, Prime Minister Modi and his Australian counterpart participated in the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne, during which they held delegation-level talks aimed at strengthening bilateral ties. To secure peace and stability across the Indo-Pacific, the two leaders signed a landmark joint declaration on defence and security cooperation, institutionalized an annual Defence Ministers' Dialogue, and launched a unified maritime security collaboration roadmap. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two countries have signed a significant agreement in the field of nuclear energy that will enable the supply of uranium from Australia to India. He also announced the operationalization of the Australia-India Partnership on Cyber, Critical Technologies and Supply Chains, and a dedicated critical minerals corridor. Prime Minister Modi arrived in Melbourne last evening after concluding his visit to Indonesia. In a profound testament to the civilizational resonance anchoring modern diplomacy, Australia is set to repatriate three culturally significant ancient antiquities to India. Culture Ministry said these artifacts include a ceremonial bronze trident of goddess Bhadrakali, a majestic granite idol of Nandi, and a basalt sculpture depicting the six-headed Kartikeya. All these items date back to the 11th and 12th centuries and were originally sourced from historic temples in Tamil Nadu. The Central Bureau of Investigation

0: CBI and DRI Mumbai in a joint operation have busted wildlife trafficking racket. During the operation, they have recovered and rescued 53 protected animals and birds, including star tortoises, Egyptian vultures, and shikra birds. The CBI has registered 2 separate cases in this regard, and 3 accused persons have been arrested from Mumbai and 3 from Kolkata. The government has waived the basic customs duty on goods used in manufacturing of display assemblies, lithium ion cell and inductor coil module, with an aim to promote domestic production of electronic devices like smartphones, laptops, wearables and smart TVs. The exemption is in line with the government's efforts to promote domestic electronics manufacturing under the PLI scheme. Several British parliamentarians have expressed grave concern over the escalating unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, where many civilians have been killed or injured in brutal crackdown by Pakistani security forces. The region remains under strict lockdown, curfew and a complete communications blackout. Addressing the British Parliament, the United Kingdom Conservative Party leader and MP Bob Blackman said that the Pakistani security forces had opened fire on peaceful demonstrators in POJK, resulting in multiple deaths and injuries of civilians, including British nationals. The southwest monsoon has covered the entire country today by further advancing into remaining parts of Rajasthan, Haryana, Punjab and the North Arabian Sea. Incessant rain since last night in several areas of Delhi and adjoining areas has affected normal life, causing waterlogging in various places and affecting traffic movement. In the FIFA World Cup, France will face Morocco in the first quarterfinal at Boston tonight. The match will begin at 1:30 a.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 7:10 हुए हैं। विविधा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर आर के भारती की वार्ता, विषय है धमनियों में घुलता जहर।
2: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 7 दिसंबर 1987 के प्रस्तावानुसार संपूर्ण विश्व में प्रत्येक वर्ष 26 जून को मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। विश्व के सभी देशों में मादक द्रव्यों के नशे की जानलेवा लत नागरिकों, खासकर युवा वर्ग की धमनियों में जहर घोल रही है। आज लोग शराब, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, खैनी, गांजा, भांग, गुटखा, पान मसाला, अफीम, चरस, कोकीन, हेरोइन, ब्राउन शुगर, एम्फिटामाइन, एफेड्राइन, केटामाइन, एलएसडी, एसेटिक एनहाइड्राइट, मिथाइल डायोक्सी जैसी नशीली दवाइयों, कोडीन, एल्प्राजोलम तथा तरल इरेजर, व्हाइटनर के साथ प्रयुक्त होने वाला तरल, थिनर, एडहेसिव, पेट्रोल तथा दर्द निवारक बाम तथा कप सिरप आदि का भी सेवन कर या सूंघ कर बच्चे, किशोर तथा युवा लोग नशा करके अपनी धमनियों में जहर घोल रहे हैं। आप स्वयं समझ लें तथा अपने सभी को समझाएं कि नशा एक भयंकर विष है, जहर है। नशा मनुष्य को पतन, बीमारी एवं मृत्यु के सिवाय कुछ नहीं देता है। नशा एक सुनिश्चित मौत है। आज खुद स्वयं की, कल परिवार की, परसों रिश्तों की, तरसों समाज की, अगले दिन अपने राष्ट्र की और अंततः संपूर्ण मानवता की मौत है। अपने देश भारत में नशीली वस्तुओं के व्यसन, दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी एवं उनसे जुड़े अपराधों का जोर बढ़ता ही जा रहा है। भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 2013 के मध्य भारत में नशीली दवाओं एवं मादक पदार्थों के कारोबार में करीब 455% की वृद्धि दर्ज की गई है। अपने देश में 1 करोड़ से भी अधिक लोग तो केवल भांग एवं अफीम के नशे के आदि हैं। स्वर्ण त्रिभुज म्यांमार, थाईलैंड और लाओस तथा गोल्डन क्रिसेंट ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए मिजोरम, मणिपुर तथा पंजाब एवं बांग्लादेश एवं नेपाल की सीमाओं से सटे हुए राज्यों में नशे के व्यसन व नशीली वस्तुओं की तस्करी की स्थिति तो अत्यंत भयावह है। ड्रग्स व नशीली वस्तुओं की इस तस्करी में गिरफ्तार सर्वाधिक लोग नाइजीरिया व नेपाल के हैं। विचारणीय प्रश्न यह है कि आज युवा वर्ग मादक द्रव्यों की इस विनाशकारी लत की ओर इतना आकर्षित क्यों है, जब पिता, बड़े बुजुर्ग या माताएं किसी भी प्रकार का धूम्रपान या नशा करने के आदि हैं, तो उत्सुकतावश बच्चे एवं किशोर भी उनके रास्ते पर चलकर नशे की अंधेरी

0: गर्त में समा जाते हैं। अपने सहपाठी और हम उम्र मित्रों तथा छात्रावास एवं शहरों में अकेले अपने माता पिता की नजरों से दूर स्वच्छंद हो जाने पर भी छात्र एवं छात्राएं नशे की लत में पड़ जाते हैं। पारिवारिक वातावरण, बाजार से बच्चों से नशीली वस्तुएं मंगवाना, फिल्मों, टीवी कार्यक्रमों, प्राइवेट FM रेडियो, समाचार पत्र पत्रिकाओं, सोशल मीडिया तथा इंटरनेट वेबसाइटों पर नशीली चीजों के विज्ञापन तथा सुसज्जित एवं आकर्षक चित्रण भी नशे की बढ़ती इस सामाजिक कुरीति के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। बच्चों में भेदभाव, तुलना, उन पर अविश्वास तथा अत्यधिक निगरानी उनमें हीन भावना विकसित कर सकती है, जिससे ग्रसित होकर वे मादक पदार्थों का दुरुपयोग कर अपने शरीर की धमनियों में जहर घोले जा रहे हैं और अपने कैरियर व भविष्य को चौपट कर रहे हैं। किशोरावस्था में होने वाले स्वाभाविक हार्मोनल बदलाव, यौन शिक्षा के अभाव, खाली समय का रचनात्मक सदुपयोग न करने, स्वयं को कुरूप व पढ़ाई में पिछड़ जाने अथवा प्रेम प्रसंगों में असफल हो जाने के कारण भी आज का युवा नशीली वस्तुओं का सेवन शुरू कर देता है। किसी लंबी बीमारी व उसका सही उपचार न हो पाने, बेरोजगार होने अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार असफलता के कारण भी आज बहुत से युवक मादक पदार्थों का सेवन करके अपनी धमनियों में एक जानलेवा जहर घोल रहे हैं। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, हुक्का या अन्य किसी भी प्रकार का धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक एवं घातक है। धूम्रपान से शरीर में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति किसी भी बीमारी का आसानी से शिकार होकर अपनी जान गंवा सकता है। एक सिगरेट या बीड़ी से करीब 12 मिनट उम्र कम हो जाती है। तंबाकू में निकोटीन नामक एक विषैला रासायनिक तत्व होता है, जो शरीर की सभी प्रणालियों को विकृत कर देता है, जिससे पाचन तंत्र ही नहीं बल्कि उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, श्वास रोग, नाक व गले के रोग व मुख, फेफड़े तथा ब्लड के कैंसर हो जाते हैं। शराब के सेवन से फैटी लीवर सिंड्रोम, लीवर सिरोसिस व लीवर कैंसर से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। शराब से दिल की धमनियों व शिराओं के फैलने व सिकुड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक, दिल का दौरा व घातक असाध्य बीमारियां हो जाती हैं। गुर्दों में, स्नायु तंत्र में, श्वास में, रक्त में मिलकर यह नशे का जहर नशेड़ी व्यक्ति को अल्प आयु में ही मौत से परिचय करा देता है। मादक द्रव्यों के व्यसन के कारण परिवारों में कलह, आर्थिक तंगी, नैतिक पतन व विघटन हो रहा है। इससे महिलाओं को घरेलू हिंसा, समाज को बढ़ते हुए अपराध व सड़क दुर्घटनाओं से जूझना पड़ रहा है। नशा करने वाले व्यक्ति से उसके माता पिता, भाई बहन, नाते रिश्तेदार, पत्नी व बच्चे दूरी बना लेते हैं। ऐसा व्यक्ति हिंसक हो जाता है। एक नशाखोर व्यक्ति अपने घर, परिवार, समाज व राष्ट्र के लिए नकारा हो जाता है। नशा 100 बीमारियों को निमंत्रण देता है और अंततः नशे के आगोश में गए व्यक्ति को एक दिन भयंकर पीड़ादायी मौत अपने आगोश में समा लेती है। इस वार्ता के माध्यम से हम अपने सभी श्रोताओं से निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों पर नजर रखें और यदि आपका बच्चा ड्रग्स व अन्य घातक नशे का शिकार हो चुका है तो उसको आपकी डांट की नहीं बल्कि सहानुभूति, प्यार व इलाज की जरूरत है। नशा उन्मूलन व नशे के अवैध व्यापार के खिलाफ केंद्र व राज्य सरकारें तथा गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन अनेक योजनाएं व कार्यक्रम चला रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो व अन्य जन संचार संस्थान भी नशीली वस्तुओं के दुरुपयोग व अवैध व्यापार के विरुद्ध जागरूकता फैला रहे हैं। आइए आज हम सभी संकल्प लें कि हमें अपने समाज व राष्ट्र से ड्रग्स, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम, ई सिगरेट, सुल्फा, पान, तंबाकू, गांजा, भांग, चरस, अफीम, कोकीन, ब्राउन शुगर व शराब से मानव प्रजाति की धमनियों में घुलते जहर व नशा नाम की इस सामाजिक कुरीति को जड़ से मिटाना है और अपने देश भारत को विकसित, खुशहाल, स्वस्थ, आरोग्य एवं मंगलमय बनाना है।
1: विविधा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आर के भारती की वार्ता, विषय था धमनियों में घुलता जहर। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।

प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: निश्चित रूप से बहुत।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 229 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने बुंदेलखंड में बदली विकास की तस्वीर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस ने तेज की जांच। 8 आरोपियों समेत संदेह के दायरे में आए परिजनों के 30 बैंक अकाउंट सीज। प्रदेश सरकार 12 जुलाई को लगाएगी 35 करोड़ पौधे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा, हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। और प्रदेश में कई जनपदों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चेक और आयुष्मान कार्ड वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड के विकास का सपना डबल इंजन सरकार ने साकार किया है। सरकार इस क्षेत्र को यूपी के सबसे बड़े औद्योगिक शहर बीड़ा के रूप में विकसित कर रही है।
3: मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि हमारे बुंदेलखंड के विकास के लिए, यहां की विरासत के संरक्षण के लिए जो भी प्रोजेक्ट शासन के संज्ञान में आएगा, उसको आगे बढ़ा करके बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाने का काम हम लोग करेंगे, आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।
2: मुख्यमंत्री ने बांदा में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज अपने चित्रकूट दौरे के दूसरे दिन कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने भगवान श्री कामतानाथ के दर्शन किए और पावन कामतगिरी की परिक्रमा कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस की विशेष टीम ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने 8 आरोपियों समेत संदेह के दायरे में आए परिजनों और रिश्तेदारों के करीब 30 बैंक अकाउंट सीज कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपी अनुकल्प मिश्रा के चाचा को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही इनायत नगर स्थित एक सर्राफा प्रतिष्ठान के संचालक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने बताया कि संत समाज ने ट्रस्ट के फैसलों पर

0: संतुष्टि जताई है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट ने मंदिर में चढ़ावा गिनती स्थल का निरीक्षण किया है और ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे भविष्य में कोई अन्य घटना दोबारा न हो सके।
1: इस बात का विश्वास रखिए कि हम लोग इस कार्य को अब अधिक दक्षता के साथ करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और जब यहाँ का CEO नियुक्त हो जाएगा उसके पश्चात तो सारी कार्य पद्धति में एक निखार आएगा।
0: श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए जारी किए जाने वाले VIP पास की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल के रेफरेंस ID सस्पेंड कर दी गई है। इसके चलते उनके माध्यम से विशेष दर्शन पास जारी नहीं हो रहे हैं। नई रेफरेंस ID अभी तक जारी नहीं की गई है। ऐसे में पहले से जारी किए गए विशेष पास मान्य किए जा रहे हैं। नए पास नई रेफरेंस ID जारी होने के बाद बन सकेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज मिर्जापुर में पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए श्री चौधरी ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।
2: मंदिर बनने के बाद उसका एक प्रभावी ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट के ही देख रेख में होता है, सरकार का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है और निश्चित तौर से जो भी ट्रस्ट का हेड है वो भी जवाबदेह होगा और जो जांच में दोषी पाया जाएगा निश्चित तौर से कड़ी से कड़ी सजा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर PP चौधरी की अध्यक्षता में गठित संयुक्त संसदीय समिति 10 से 15 जुलाई तक पणजी और लखनऊ का दौरा करेगी। इस अध्ययन दौरे का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना तथा विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करना है। समिति इस दौरान उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, अधिवक्ता संघों और विभिन्न पेशेवर संगठनों के साथ परामर्श करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट नीतिगत नेतृत्व के लिए उत्तर प्रदेश को 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में यह सम्मान प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को प्रदान किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज कृषि के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन 543 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 750 लाख मीट्रिक टन हो गया है। देश के कुल उत्पादन में अकेले UP 22% योगदान कर रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस महाअभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि सरकार हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने को लेकर प्रतिबद्ध है और ये कीर्तिमान आसानी से हासिल करेगी।
3: 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और माननीय योगी जी की सरकार और यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ा नहीं। हमने पिछली बार भी 35 करोड़ का टारगेट था तो हमने 36 करोड़ पेड़ लगाए थे एक ही दिन में, तो हमारे लिए 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा जरूर है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, हम इस पे कहीं ज्यादा पेड़ लगाएंगे।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर विद्यार्थियों को 1 लाख से अधिक डिग्रियां और 51 पदक प्रदान किए गए। पदक पाने वालों में 9 छात्र और 42 छात्राएं शामिल हैं। इस मौके पर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए किट का वितरण और 800 बालिकाओं का HPV टीकाकरण कराया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि अब तक लगभग 3 लाख बालिकाओं का निशुल्क HPV टीकाकरण कराया जा चुका है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी को लेकर अभ्यर्थी 14 जुलाई तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने जानकारी दी है। TET परीक्षा 2 और 3 जुलाई को प्रतिदिन 2-2 पालियों और 4 जुलाई को प्रथम पाली में सम्पन्न हुई थी। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय ने प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के कई जनपदों में बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है।

0: राजधानी लखनऊ समेत फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर, संभल, नोएडा, अयोध्या, चित्रकूट, बिजनौर सहित कई जिलों में आज बारिश हुई। बारिश और जलभराव के चलते संभल और मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने आज स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। अमरोहा में बारिश और बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई गांवों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए यहां 11 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। लगातार बारिश के कारण गंडक नदी कुशीनगर के खड्डा में खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 11 जुलाई तक प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: पिछले 24 घंटों के दौरान वेस्ट यूपी में हेवी टू वेरी हेवी रेन के साथ कहीं कहीं एक्सट्रीमली हेवी रेन हुई है, और अगर आगे आने वाले दिनों में बात करें तो ये उत्तरोत्तर मध्य उत्तर प्रदेश और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ेगा। यद्यपि यह उत्तरोत्तर कमजोर होता जाएगा, परंतु इसके प्रभाव से कल जो है इसके सेंट्रल यूपी की तरफ आने पर और थोड़ा कमजोर होने पर वर्षा की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल यानी कि 10 जुलाई को भी जारी रहेगा, और इसके बाद 11 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में में व्यापक तौर पर कमी आ जाएगी और तराई इलाकों में या कहीं कहीं भारी वर्षा तक सीमित हो जाएगा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 229 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने बुंदेलखंड में बदली विकास की तस्वीर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस ने तेज की जांच। 8 आरोपियों समेत संदेह के दायरे में आए परिजनों के 30 बैंक अकाउंट सीज। प्रदेश सरकार 12 जुलाई को लगाएगी 35 करोड़ पौधे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा, हरित क्षेत्र बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है सरकार। और प्रदेश के कई जनपदों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी सुधी श्रोताओं को सप्रेम नमस्कार। आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, हमारा भारत देश केवल एक भूभाग नहीं बल्कि मानचित्र पर अंकित सीमाओं का नाम नहीं बल्कि ये उन असंख्य भावनाओं, परंपराओं, संस्कृतियों और सपनों का विराट संगम है जिसने हजारों वर्षों से संपूर्ण मानवता को सह अस्तित्व, सहिष्णुता और समरसता का संदेश दिया है। हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां विविधताएं विभाजन का कारण नहीं बनती बल्कि एक दूसरे को समृद्ध करती हैं। यही कारण है कि भारत को अनेकता में एकता की जीवंत मिसाल कहा जाता है।

हिमालय की हिम आच्छादित चोटियों से लेकर कन्याकुमारी के सागर तट तक, कच्छ के रण से लेकर अरुणाचल की हरित वादियों तक, हर क्षेत्र की अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी वेशभूषा, अपनी लोक परंपराएं और अपनी सांस्कृतिक पहचान है। फिर भी जब राष्ट्र की बात आती है तो इन सभी विविधताओं के ऊपर केवल एक पहचान उभर कर सामने आती है कि हम भारतीय हैं। यही भावना हमारे देश की आत्मा है। हमारे त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सामाजिक सद्भाव के उत्सव हैं। दीपावली की रोशनी, ईद की मिठास, गुरु पर्व की सेवा भावना, क्रिसमस का प्रेम और बैसाखी, पोंगल, बिहू, ओणम तथा नवरात्रि जैसे पर्व हमें ये स्मरण कराते हैं कि भारत की संस्कृति किसी एक रंग से नहीं बल्कि अनेक रंगों के सुंदर समन्वय से निर्मित हुई है। यही समन्वय हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।

श्रोताओं, हमारे देश का इतिहास भी इस सत्य का साक्षी है। जब जब मातृभूमि ने अपने सपूतों को पुकारा, तब तब देश के प्रत्येक कोने से लोगों ने जाति, भाषा, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। स्वतंत्रता संग्राम इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। लाखों ज्ञात और अज्ञात सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान इसलिए दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र भारत में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। आज भी यही भावना हमारे वीर सैनिकों में दिखाई देती है। सीमा पर तैनात जवान का कोई अलग धर्म या भाषा नहीं होती, उसका एकमात्र धर्म राष्ट्र की रक्षा और एकमात्र पहचान भारत माता का सपूत होना है।

श्रोताओं, हमारे देश की एकता केवल इतिहास का गौरव नहीं है, बल्कि वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की शक्ति भी है। आज जब विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, खेल और अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारा देश निरंतर नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है,

ये उपलब्धियां किसी एक राज्य या समुदाय की नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की सामूहिक सफलता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने विचारों में उदारता, व्यवहार में संवेदनशीलता और हृदय में राष्ट्र प्रेम को स्थान दें। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद कभी नहीं होने चाहिए।

होने चाहिए। विविधता हमारी पहचान है और एकता हमारी शक्ति। हमारे देश भारत की महानता इसी में है कि यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी भावनाओं की भाषा एक है। अनेक आस्थाएं हैं, फिर भी विश्वास एक है। अनेक परंपराएं हैं, फिर भी संस्कृति एक है। और अनेक पहचानें हैं, फिर भी राष्ट्र एक है। इसी भावना को हमारे संविधान ने भी सशक्त आधार प्रदान किया है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श हमें निरंतर ये प्रेरणा देते हैं कि हम एक ऐसे भारत के निर्माण में अपना योगदान दें जहां प्रत्येक नागरिक को समान सम्मान और समान अवसर प्राप्त हों।

आइए हम सभी ये संकल्प लें कि हम अपनी भाषा से पहले संवाद को, अपने मत से पहले राष्ट्रहित को और अपने स्वार्थ से पहले देश के गौरव को महत्व देंगे, क्योंकि जब हम एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं तभी भारत विश्व पटल पर और अधिक उज्ज्वल होकर चमकता है। अंत में हम कहना चाहेंगे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की उस भावना को स्मरण करें जिसमें वे ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां मन भय से मुक्त हो और मस्तक गर्व से ऊंचा हो। आइए हम उसी भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अनुमति चाहती हूं। नमस्कार। जय हिंद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्द गीत। आज हमारा कार्यक्रम केंद्रित है मोहब्बत पर, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले याराना फिल्म का ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे याराना फिल्म का युगल गीत कविता कृष्णमूर्ति और विनोद राठौर के स्वर में। इस गीत को संगीत से सवारा था अनु मलिक ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और महालक्ष्मी के स्वर में कयामत फिल्म से। इस गीत को लिखा है समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।
1: तेरे बिना ऐसे जिए जा रहा हूं मैं, लगता है जैसे कोई

अभी आपने सुना सौदागर फिल्म का गीत कविता कृष्णमूर्ति और सुरेश वाडकर की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं कुमार सानू और देवाशीष दास गुप्ता के स्वर में साथी फिल्म का गीत। शब्द रचना है समीर की, संगीत है नदीम श्रवण का।

अभी आप सुन रहे थे रंग फिल्म का गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। गीतकार थे समीर, संगीतकार थे नदीम श्रवण। इसके साथ ही कार्यक्रम शब्द गीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 8:30 हुए हैं। पेश है चित्रपट संगीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं प्रेम बंधन फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

नागिन फिल्म से। इसे गाया है किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर ने। वर्मा मलिक के गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आईवीएफ केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का

0: बाजार खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
0: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया।
1: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
3: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना

0: निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

0: उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एआरटी क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति आईवीएफ क्लिनिक, एआरटी केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिश सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोचयुक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के

0: Cooperation on defense and security cooperation to ensure free and open Indo-Pacific, also inked deal for supply of uranium from Australia. Prime Minister Narendra Modi says India aspires to be one of the world's top three economies driven by the motto of Grow More, Achieve More, addresses Indian diaspora in Melbourne. National Commission for Women forms a high-level expert committee to review regulatory framework and laws governing IVF clinics. Government waives basic customs duty on key components used in electronic devices to promote their domestic production. Iran accuses US of conducting airstrike near Bushehr nuclear power plant, attacks US bases in Bahrain, Kuwait and Qatar, and in FIFA World Cup, France to face Morocco in the first quarterfinal at Boston in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: Ada. ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल को यकीनी बनाने के सिलसिले में दिफा और सिक्योरिटी तआवुन के एक मुश्तरका ऐलानिए पर दस्तखत किए हैं। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की सप्लाई के लिए भी एक समझौता किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ज्यादा तरक्की करो, ज्यादा हुसूलयाबी करो के नज़्बुल ऐन से मुतासिर होकर दुनिया की तीन आला तरीन मईशतों में से एक बनने की ख्वाहिश रखता है। उन्होंने मेलबर्न में भारतीय बिरादरी से भी खिताब किया। ख्वातीन के कौमी कमीशन ने आला सतह की माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी है जो IVF क्लिनिक के जवाबित से मुतालिक फ्रेमवर्क और उनके सिलसिले में कवानीन का जायजा लेगी। हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक आलात में इस्तेमाल होने वाली अहम अशिया पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है ताकि मुल्क में उनकी मैन्युफैक्चरिंग को फरोग दिया जा सके। ईरान ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया है कि उसने बुशहर न्यूक्लियाई बिजली के प्लांट के नजदीक फजाई हमला किया। उसने बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी बेसिस पर हमले किए। और फीफा आलमी कप में अमेरिका के बोस्टन में आज रात पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस और मराकश आमने सामने होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब ने मेलबर्न में आज तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत सालाना लीडर समिट में शिरकत की, जिसके दौरान दोनों लीडरों ने वफ्द की सतह की बातचीत की जिसका मकसद बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करना था। भारत बहरुल काहिल में अमनो इस्तेहकाम कायम करने की गरज से दोनों लीडरों ने दिफा और सिक्योरिटी तआवुन के सिलसिले में संगे मील की हैसियत रखने वाले एक मुश्तरका ऐलानिए पर दस्तखत किए। नीस सालाना वुजराए दिफा के मुजाकरात की बुनियाद रखी और समुद्री सरहद की सिक्योरिटी में शराकत दारी के मुत्तहिदा लाहे अमल का इफ्तिताह किया। वजीर आजम मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया को दरख्शां जमहूरियत और अहम तरीन समुद्री ताकत करार दिया।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: मुजाकरात के बाद एक मुश्तरका प्रेस बयान में वजीर आजम मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे में एक अहम माहदे पर दस्तखत किए हैं जिसकी रूह से ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सप्लाई कर सकेगा। उन्होंने साइबर, अहम तरीन टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन्स के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया भारत शराकत दारी और एक मखसूस अहम तरीन मिनरल्स कॉरिडोर को शुरू करने का भी ऐलान किया।
2: आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
1: बाद में आज वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत ज्यादा तरक्की करो, ज्यादा हुसूलयाबी करो के नज़्बुल ऐन से मुतासिर होकर दुनिया की आला तरीन तीन मईशतों में से एक बनने की ख्वाहिश रखता है। मेलबर्न में भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने भारत की इकतसादी और तकनीकी पेशरफ्त को उजागर किया।
2: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन

0: वचन से भरे राष्ट्र है, हम अधीर है, बेसब्र है, हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: बाहमी शराकतदारी के लिए भारतीय बिरादरी को क्रेडिट देते हुए जनाब मोदी ने साफ लफ्जों में कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ताल्लुकात आला तरीन बुलंदियों तक पहुंच चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग के एक ऐसे इकोसिस्टम का जिक्र करते हुए जो चिप्स से शिप्स तक फैला हुआ है, उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और अद्वियात साजी के तमाम शुबों में एक आलमी ब्रांड है। कलीदी नौयत की सिक्योरिटी और इख्तिरात की तरफ तवज्जो करते हुए वजीर आजम ने भारत के अपने घरेलू दिफाई प्लेटफॉर्म्स पर आलमी भरोसेमंदी को उजागर किया। उन्होंने बिलखसूस ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंसदाद दहशतगर्दी के मुतयन शुदा निशानों का जिक्र किया।
0: भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा, धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गुंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी।
1: इस मौके पर खिताब करते हुए ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीज ने भारतीय बिरादरी को कसीर सकाफती पावर हाउस कहकर उसकी सताइश की, जो ऑस्ट्रेलिया की खुशहाली को आगे बढ़ाने में मुआविन है। उन्होंने भारतीय बिरादरी को एक कतई लिविंग ब्रिज कहकर उसकी तहसीन की। ये ऐसा पुल है जो कभी न रुकने वाली शराकतदारी की बुनियाद फराहम करता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मार्वल स्टेडियम के अंदरून तहसीन और सताइश के बुलंदबाग नारे एक बुनियादी हकीकत की बाजगश थे कि भारत ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात उमूमी सफारतकारी से बहुत ज्यादा बुलंदी इख्तियार कर चुके हैं। वजीर आजम मोदी का ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत एक उमंगों भरे तरक्की याफ्ता भारत, जो आलमगीर मैन्युफैक्चरिंग फतूहात से आगे बढ़कर इंतहाई अहम नौयत की इंसानियत नवाजी पर मबनी इकदाम का तस्वूर है, यह साबित करता है कि एक मजबूत भारत पूरी इंसानियत की खिदमत अंजाम देता है। जैसा कि वजीर आजम अल्बानीज ने जोश व खरोश से भरपूर इस बिरादरी को कतई तौर पर खलीज को पाटने वाला लिविंग ब्रिज कहकर एजाज से नवाजा, जिससे ये बिल्कुल वाजह है कि भारतीय बिरादरी दोनों मुल्कों के इक्तिसादी इंजनों और कलीदी दिफाई राहदारियों को सरगर्म तौर पर ताउन दे रही है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: मेलबर्न में मीडिया से बातचीत करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ताल्लुकात हम जहत नौयत के और तेजी से पेशरफ्त कर रहे हैं। ब्रिक्स मुल्कों की ख्वातीन वुजरा की मीटिंग आज कोची में खत्म हो गई। ख्वातीन और बच्चों की नशोनुमा की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी ने इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ब्रिक्स ममालिक में ख्वातीन की नशोनुमा से मुतालिक कई मुश्तरका मसाइल पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये मुश्तरका मसाइल ब्रिक्स ख्वातीन वुजरा ट्रैक जैसे प्लेटफॉर्म की इंतहाई अहमियत को उजागर करते हैं, ताकि मेंबर मुल्कों के दरमियान मुजाकरात को आगे बढ़ाया जाए और तआवुन को मुस्तहकम किया जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स खवातीन उजरा की मीटिंग कोची में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें पहली मरतबा खवातीन उजरा के प्लेटफॉर्म की जानिब से एक मुश्तरका ऐलानिया मंजूर किया गया। ये ब्रिक्स रुकन ममालिक के दरमियान खवातीन की क्यादत में तरक्की के फरोग के लिए बाहमी ताउन को मजबूत बनाने की सिमत एक अहम संगे मील है। 6 जुलाई से शुरू हुई 4 रोजा मीटिंग में ब्रिक्स खवातीन वर्किंग ग्रुप का इजलास और ब्रिक्स खवातीन उजरा का इजलास शामिल था। मीटिंग में भारत की जानिब से पेश किए गए ब्रिक्स डिजिटल खजीना और ब्रिक्स डिजिटल सलाहियत साजी के रहनुमा उसूलों की तजावीज का खैर मकदम किया गया। इसके अलावा इस अज़्म का इआदा किया गया कि खवातीन की क़यादत में तरक्की जामे और पायदार मुआशी व समाजी तरक्की के लिए एक अहम मुहर्रिक है। कोची से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
1: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि साफ मुतबादिल ईंधन और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की तरफ फौरन मुंतकिल होना सड़क ट्रांसपोर्ट शोबे में तब्दीली की एक अहम तरीन जरूरत है। गांधीनगर में 3 रोजा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट शो प्रवास का बाकायदा इफ्तिताह करते हुए वजीर मौसूफ ने रिवायती ईंधन पर इन्हिसार की बहुत ज्यादा इक्तिसादी और माहौलियाती लागत को उजागर किया और सड़क ट्रांसपोर्टरों से जोर देकर कहा कि वो मुनासिब कीमत पर दस्तियाब मुतबादिल ईंधनों को पुरजोश तरीके से इख्तियार करें। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा है कि भारत की

तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर 2047 तक काया पलट के लिए बुनियादी साइंसेस में मजबूत जड़ें कायम करना बहुत जरूरी है। भुवनेश्वर के नजदीक जटनी में साइंसी तालीम और तहकीक के कौमी इंस्टीट्यूट की 15वीं तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साइंसी एतबार से खुद किफालत मुल्क के मुस्तकबिल की तरक्की और आलमी क्यादत के लिए अहम तरीन उनसर होगी। तेजी से फैलती हुई तौलीद में मुआविन टेक्नोलॉजी ART शोबे में बेजाबतगियों से मुतालिक बढ़ते हुए खदशात के पेश नज़र ख्वातीन के कौमी कमीशन NCW ने आज एक आला सतह की माहिरीन की कमेटी तशकील दी है। ये कमेटी IVF क्लिनिक्स, तौलीद में मुआविन टेक्नोलॉजी ART मराकज और गैमेट बैंक से मुतालिक कवानीन और इंजिबाती फ्रेमवर्क का जामे जायजा लेगी। इस जायजे का बुनियादी मकसद ख्वातीन के तौलीद हुकूक, वकार और तहफ्फुज़ को यकीनी बनाना है। दिल्ली हाईकोर्ट की साबिक जस्टिस आशा मेनन माहिरीन की इस कमेटी की सरबराही करेंगी। कमेटी रजामंदी, राजदारी और हयातियाती सुराग रसानी से मुतालिक मौजूदा हिफाजती इकदाम का भी जायजा लेगी। इसके अलावा कमेटी उन जाब्तों और तरीक़ाकार की खामियों की भी निशानदही करेगी जो इस्तेहसाल और धोखादही पर मबनी सरगर्मियों को फरोग दे सकती हैं। कमेटी इदारा जाती जवाबदही को मजबूत बनाने के लिए असलाहत की सिफारिश भी करेगी। ये आकाशवाणी है। हुकूमत ने डिस्प्ले असेंबलीज, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर क्वाइल मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाली अशिया पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है, जिसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक आलात जैसे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, वियरेबल्स और स्मार्ट टीवीज मुल्क में ही बनाए जाने को फरोग दिया जा सके। वजारत खजाना ने इस सिलसिले में 3 अलहदा नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जिनकी रूह से इलेक्ट्रॉनिक आलात में इस्तेमाल होने वाले इन 3 अहम चीजों की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाली अशिया पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी को खत्म किया गया है। इन अशिया को टैक्स से मुस्तस्ना करना PLI स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक अशिया की मुल्क में ही मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने की हुकूमत की कोशिशों से मुताबिकत रखता है। ड्यूटी खत्म किए जाने के सबब दरामदात पर इनहिसार पर कमी आएगी और मकामी प्रोडक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम मजबूत होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी एस कृष्णन ने कहा कि हुकूमत के इस कदम से वैल्यू चेन और इकोसिस्टम को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज सुप्रीम कोर्ट की साबिक जज जस्टिस रंजना देसाई की सदारत में 7 मेंबरों पर मुश्तमिल एक कमेटी की तश्कील का ऐलान किया है, जो रियासत में यकसां सिविल कोड UCC पर अमल आवरी का एक खाका तैयार करेगी। तवक्को है कि मुजव्वजा कानून बिला इम्तियाज मजहब, शादी, तलाक, विरासत, वली अहदी और गोद लेने जैसे मामलात का अहाता करेगी। एक ईरानी अहलकार ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया है कि उसने आज बू शहर न्यूक्लियाई बिजली के प्लांट के नजदीक हवाई हमला किया। ईरान की सरकारी खबर रसा एजेंसी ने कहा है कि यह हमला तकरीबन दोपहर के वक्त किया गया, यानी अमेरिकी फौज की मरकजी कमान की जानिब से यह बयान दिए जाने के कुछ घंटे के बाद कि उसने ईरान के खिलाफ अपने हमलों को बंद कर दिया है। अलबत्ता अमेरिका की मरकजी कमान ने फौरी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की है। इससे कबल आज अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए फजाई हमले किए थे और तेहरान ने मगरबी एशिया में अमरीका के इत्तेहादी मुल्कों को निशाना बनाकर उस पर रद्दअमल का इजहार किया। दोनों तरफ से किए गए हमलों से मगरबी एशिया में जंग को खत्म करने में मदद देने के मकसद से किए गए उबूरी समझौते को खतरा लाहक हो गया है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज कहा है कि जनूब मगरबी मानसून पूरे मुल्क में फैल चुका है। IMD ने कल उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, जेली, हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कल तेज से बहुत तेज बारिश का इम्कान है। फीफा आलमी कप में बोस्टन में आज रात देर गए पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला मराकश से होगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में कल देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। क्वार्टर फाइनल के बाकी मैचों में नॉर्वे इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा, जबकि दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इतवार की सुबह स्विट्जरलैंड से होगा।
मर्दों के क्रिकेट में 5 मैचों की सीरीज के चौथे टी20 मैच में आज रात ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। भारतीय वक्त के मुताबिक मैच रात 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम सीरीज में 0-2 से पीछे है। गेम में अपने आप को बरकरार रखने के लिए इस मैच में जीत हासिल करनी जरूरी है।

0: आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल को यकीनी बनाने के सिलसिले में दिफा और सिक्योरिटी तआवुन के एक मुश्तरक ऐलानिए पर दस्तखत किए हैं। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की सप्लाई के लिए भी एक समझौता किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ज्यादा तरक्की करो ज्यादा हुसूल याबी करो के नज़्मुल ऐन से मुतासिर होकर दुनिया की तीन आला तरीन मईशतों में से एक बनने की ख्वाहिश रखता है। उन्होंने मेलबर्न में भारतीय बरादरी से भी खिताब किया। ख्वातीन के कौमी कमीशन ने आला सतह की माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी है जो IVF क्लिनिक के जवाबिस से मुतालिक फ्रेमवर्क और उनके सिलसिले में कवानीन का जायजा लेगी। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में नवाचार, उच्च कौशल, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: एक और भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित हो रहा देश है, दूसरी ओर दुनिया के तमाम देशों को भारत तकनीक, प्रतिभा और आगे बढ़ने के लिए उन्नत अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है, जिससे हमारे श्रोता अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम परिचित हैं। और यह है क्षेत्र भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र। ये वैश्विक क्षमता केंद्र वस्तुतः क्या है, किस रूप में भारत ही नहीं दुनिया में अपना योगदान दे रहे हैं, और एक ओर प्रतिभा को उचित अवसर मिल रहा है, नए नए नवाचार हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों को आगे बढ़ने में योगदान दे रहा है। कुछ इन्हीं विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे अपने इस अंक में। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, CEO और सेक्रेटरी जनरल PhD CII। स्वागत है आपका डॉक्टर मेहता।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित GCC बिजनेस समिट को संबोधित किया।
4: Today the greatest competitive advantage lies in generating knowledge, applying technology and solving complex problems. That's what the GCCs are. It's not as if it's the slightly upgraded version of your back room, back off or office space, the BOPs. No, this is a completely different domain. It has a lot of technology, no doubt, but the new human intervention, human skills and the human knowledge which gets crystallized, what makes this century going to stand out in the name of GCC?
2: शुरुआत डॉक्टर साहब हम यहीं से करना चाहेंगे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारी जो वैश्विक क्षमता केंद्र हैं वो किस रूप में योगदान दे रहे हैं, और उससे भी पहले समझना चाहेंगे आम जुबान में आम लोगों के लिए ये वैश्विक क्षमता केंद्र क्या हैं और किस रूप में यहाँ प्रतिभा का, तकनीक का संगम हो रहा, बड़ी कंपनियों के लिए हम उत्पाद बना रहे।
3: पिछले अगर दशक में देखें तो भारत एक बहुत ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हो गया है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए। और जो इससे पहले क्या होता था, भारत में सिर्फ बैक ऑफिस लोग रखते थे, उसमें कॉल सेंटर्स ये सब आते थे, लेकिन पिछले दशक में जिस तरीके से भारत में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नए नए जो भारत के कार्यक्रम जो कि जैसे मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, सारे नए नए जो कार्यक्रम आए उससे जो है एक भारत जो है एक इवॉल्व हो चुका है हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक सेंटर्स के तौर पे, जिसमें सिर्फ एक बैक ऑफिस ऑपरेशन तक ही ये सीमित नहीं है, बल्कि जिसमें रिसर्च होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, अब तो एक नया आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, इंजीनियरिंग है, फाइनेंस, फिनटेक, लीगल सर्विसेज, ऑल जो ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस हैं जिसमें जो भी चीजें यूज होती हैं, आज भारत उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हब बन चुका है। आज भारत

0: में 1800 से ज्यादा ऐसे ग्लोबल कैपेबिलिटीज सेंटर्स हैं जिसमें कि 20 लाख से अधिक लोगों को आज प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर आप देखें इसमें, जो कि भारत डेफिनेटली एक टैलेंट कैपिटल भी है। आज अगर आप देखें, भारत जो है 65% जो भारत की जनता है वो 35 साल से कम उम्र के लोग हैं। तो भारत एक यंग कंट्री है, एक यंग कंट्री होने के नाते हमारे पास टैलेंट पूल है। बट टैलेंट पूल होने के साथ साथ हमने पिछले करीब दशक में देखा है कि भारत एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज जो भारत का आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च हुआ था, तब भारत में सिर्फ करीब 300-400 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे। लेकिन आज जब हम ये बात कर रहे हैं, 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप जो है भारत के अंदर है, और भारत जो है दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन कैपिटल बनाने की बात करते हैं, क्योंकि टैलेंट कैपिटल तो है ही भारत विश्व का, लेकिन एक इनोवेशन कैपिटल बनाने की दिशा में भी भारत जो है आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनने जा रहे हैं, इसमें जो है आगे चल के, मैं समझता हूं आगे चल के सिर्फ एक कॉस्ट आर्बिट्रेज, क्या कॉस्ट के बेसिस पे कि भारत में लेबर सस्ती है, इस बेसिस पे ही आप अपना एक कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज है उसको आप नहीं ले सकते। आगे चलने के लिए हमें एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट की जरूरत है, और उसमें कितना हम इनोवेशन करते हैं, कितना हम उसको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इसमें इंटीग्रेट करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। और जब हम एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं उसके जो तीन मुख्य पिलर होंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के। पहला पिलर मैं समझता हूं एक स्किल, कि क्या हमारे पास स्किल सेट्स हैं आज भारत में। आप टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, जेनरेटिव एआई आ चुका है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, सेमीकंडक्टर है, इस साइड डेटा एनालिटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी भी ऐसी एक नया एक स्टेप आ चुका है जिससे जो है हर इंडस्ट्री अपना ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक चर्निंग हो रही है इंडस्ट्री में। क्योंकि भारत ने ऑलरेडी 2070 तक नेट जीरो होने का अपना एक कमिटमेंट कर चुके हैं। अगर आप लंबी दिशा में अगर आप देखना चाहते हैं, तो उसमें ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है जो हम करते आ रहे हैं वही सफिशियंट नहीं होगा, बल्कि इस दिशा में हमें अपने एजुकेशन को भी ले जाना है। तो जिससे कि भारत में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी भारत की आ चुकी है, भारत के अंदर इकोसिस्टम तैयार करना है जिसमें कि कंटिन्यूअस लर्निंग हो, जहां पे कि इंडस्ट्री, एकेडमिया, गवर्नमेंट सब साथ मिलके जो है, जो हमारी वर्कफोर्स है उसको जो है हमें फ्यूचर रेडी बनाना है।
1: श्रोताओं, देश की राजधानी दिल्ली में आज भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर केंद्र कई सारी बातों पर चर्चा हुई, बहुत सारे विचार रखे गए। और सबसे बेहतर हमारे विशेषज्ञ ने जो कहा कि एक ओर शिक्षा, प्रतिभा, कौशल, दूसरी ओर उद्योग, और तीसरी ओर देश की नीतियां इस दिशा में हो कि हम वस्तुतः दुनिया को दिशा दिखा सकें और तीनों का एकीकरण कर सकें। इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने कहा,
2: What is it that AI can do to enhance productivity, enhance efficiency and effectiveness across a range of sectors? How is it that India can adapt AI and what is it that India can contribute in this space? And which is why the thought was that India really needs to become the application and AI-based solution capital of the world. And the way in which we can actually roll out using our talent, what is the way in which we roll out AI for the rest of the world? Today, one of the things that many people, many experts do comment is that while there's a lot of investment taking place in building out data centers, in, you know, the chips that need to be done for this, the high bandwidth memory that needs to work in the data centers, on the infrastructure side, there's a lot of effort which is going on into building the models. But ultimately, all these are just the infrastructure piece of the play. What happens with what actually gets deployed at the enterprise level and at various levels? And the deployment of AI in enterprises is still lagging across the world, not just in India, but across the world. And that is truly where I think GCCs in India will come in and play that critical role.
1: डॉक्टर मेहता, यहाँ से दिशाएं स्पष्ट होनी शुरू हो रही हैं कि हमारा भविष्य क्या है और किस रूप में इसे कार्यान्वित करना है। यहाँ पर हमारा सवाल ये होगा कि जो

0: लक्ष्य हम सामने रख रहे हैं कि उच्च कौशल और तकनीक का जो वास्तविक उत्पाद है एआई के ऐप के रूप में, वह किस रूप में पूरी क्षमता के साथ हम दुनिया के सामने रख सकेंगे।
1: अभी सेक्रेटरी ने भी कहा कि कैसे हम स्किल सेट्स को, यहाँ पे सिर्फ बीपीओ जॉब्स, हमें बीपीओ जॉब के लिए ही नहीं काम करना है, बल्कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बन रहे हैं उसमें हमें हायर लेवल जॉब्स के लिए जो है अपने आप को तैयार करना है। तो उसमें जो पहला पिलर मैंने बताया स्किल है, और जो सेकेंड पिलर है वो होगा इनोवेशन। क्योंकि आप जो नेक्स्ट लेवल के जीसीसी आएंगे वो सिर्फ यहाँ पे भारत में सिर्फ ग्लोबल मैंडेट को सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं होंगे, बल्कि हमें एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, इनोवेशन का हब बनाना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करना है, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ेंगी, और उसके लिए हमें एक प्रोडक्ट हब बनाना पड़ेगा जिसमें कि हम विश्व के लिए इसमें प्रोडक्ट को बना सकें। जैसे कि मेक इन इंडिया हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च किया था आज से 10 साल पहले, उसमें कई सारी प्रोग्रेस हुई है। और क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, इंडिया के पास एक बहुत ही यूनिक टैलेंट है। आप अगर देखें तो साइंटिफिक टैलेंट इंडिया में सबसे ज्यादा है। आप देखें जो हमारी एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी है, जो प्रोवेस है, आपने देखा कि किस तरीके से कोविड के टाइम में भारत के एंटरप्राइजेज ने पूरी दुनिया में कैसे काम किया। भारत जो है एक फार्मा हब बन गया था कोविड के टाइम में, कैसे नई वैक्सीन हमने जनरेट की। तो एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमारा एक स्ट्रेंथ है। और तीसरा जो हमारा स्ट्रेंथ है इनोवेशन के लिए, वो है हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्योंकि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही काफी स्ट्रांग हो चुका है। आज हमारे देश में नए नए जो बच्चे हैं 18 साल 20 साल 30 साल से कम उम्र के जो युवा हैं, वो भी आपने देखा यूनिकॉर्न का स्टेटस ले चुके हैं। ऐसी ऐसी कंपनी देश में अभी आई है जिसमें कि 1.5 साल 2 साल के अंदर वो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन करीब, आज के अगर टर्म में देखें तो करीब 10,000 करोड़ से ऊपर जिसका वैल्यूएशन है, वो एक यूनिकॉर्न मानी जाती है कंपनी। तो ये हमारे देश में एक इनोवेशन का जो एक कल्चर बन चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फर्दर इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इंडस्ट्री एकेडमिया और गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन करके एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ एक्सीलरेट करना है इनोवेशन को। तभी हम जो यूनिवर्सिटीज में टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी उसको कैसे हम कॉमर्शियली उसको वायबल बनाएं, इस पे हमें काम करना है, जिससे कि जो विश्व की समस्याएं हैं तो उसको हम भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसको हम कैसे सॉल्यूशन निकालें। जो थर्ड पिलर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अब ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कैसे आएगी? सबसे पहले हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जो कि बहुत कुछ हो रहा है। आज अगर आप रोड की बात करें, भारत जो है विश्व का लार्जेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज बन चुका है। तो इसमें ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं भारत की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसीज स्टेबल हैं और हमारा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत उसमें स्टेबिलिटी है, और हमारे पास आज एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ हो चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतने सारे काम हो रहे हैं, और जो भारत का एक रिफॉर्म का जो मुहिम चली है वो बिल्कुल आगे चलती जा रही है। और डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें, जिसमें कि 1.4 बिलियन 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ मोबाइल से वो लोग कनेक्टेड हैं, तो डिजिटल कनेक्टिविटी हमारे गांव तक है, लास्ट माइल तक है। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं सब चीजों से होता है। और इंडिया ने कई ऐसे रिमार्केबल इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसमें समय से पहले ही इन सब चीजों का ऐलान किया था, और आज उसमें कई सारी प्रोग्रेस हो चुकी है। जैसे डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो सारे रिफॉर्म्स हैं, इससे जो है हमारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आर्बिट्रेशन के फील्ड में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के फील्ड में हमने काम किए हैं। इंडिया जो है अपने आप को एक वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इनोवेशन इकोसिस्टम बनने की तरफ इसमें काम कर रहा है।
0: डॉक्टर मेहता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में नवाचार, उच्च कौशल, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे

0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: Countrywide.

0: even keel.
1: Ambassador Anil Wadhwa, thank you so much for joining Akashvani's Insights program.
0: Thank you very much.
2: You were listening to a discussion on evolving situation in West Asia, implications for India's energy security. The participants were Anil Wadhwa, former ambassador, and Anubha Rohatogi, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: Insights.
4: Namaskar.
5: अभी हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुन रहे थे कार्यक्रम कंट्री वाइड इनसाइट्स। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं विश्व जनसंख्या दिवस पर केंद्रित काव्य गोष्ठी संख्या संवाद। इसमें प्रतिभागी हैं डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष, सुरेंद्र सिंह वर्मा सजग, सत्येंद्र सिंह निर्झर, वेद प्रकाश मणि। इस काव्य गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं मुकेश कुमार उपाध्याय।
6: आकाशवाणी आगरा के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जन जन में चेतना जागृत करने के लिए कवियों की संगोष्ठी के आयोजन में पधारे हुए हमारे देश के विभिन्न स्थानों से आए हुए कवियों डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा सजग जी, डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष जी, श्री सत्येंद्र सिंह निर्झर जी, श्री वेद प्रकाश मणि जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मुकेश मणिकांचन आज के इस कार्यक्रम का संगोष्ठी का संचालन करते हुए आप सबसे निवेदन करता हूँ कि कविता का वह मूल गुण जो जन जागृति के लिए सदैव से जाना जाता है, आप सब बारी बारी से एक जन जागरण की पंक्तियां रखते हुए आप सब से निवेदन करूंगा कि आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर अपनी कविताओं से जन जागरण एक नई दृष्टि और चेतना देने का प्रयास करें। फिर नया सूरज सुबह का साथ लेकर आ गए हैं, फिर नए कुछ कीमती जज्बात लेकर आ गए हैं। ऐ चिरागो, अब किसी उम्मीद को बुझने न देंगे, हम उजालों की नई सौगात लेकर आ गए हैं। आइए, मैं निवेदन कर रहा हूं अपने काव्य को छंदों के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले एटा से पधारे श्री सत्येंद्र सिंह निर्झर जी से। आए,
7: बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी। विश्व जनसंख्या दिवस पर इस कार्यक्रम, इस गोष्ठी में सभी का अभिनंदन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए विश्व जनसंख्या दिवस पर एक घनाक्षरी छंद दे रहा हूँ, सुनिएगा
8: जी। स्वागत भाई।
7: की बढ़ती जनसंख्या आज उन्नति में बाधक है, आप जान जाइए जी औरों को जनाइए। बड़े बड़े परिवार कष्टों की भरमार, मानो मेरी बात आप स्वयं देखवाइए। छोटा हो जो परिवार, खुशियां मिले हजार, खुशहाल जिंदगी का रास्ता बनाइए। और खान पान रहन सहन स्वास्थ्य जो जाओ ठीक, छोटे परिवार वाली नीत अपनाई। छोटे परिवार। और इसी संबंध में दूसरा घनाक्षरी देखें कि बाग बगीचे खेत खलिहान घट रहे, बढ़ती ही जा रही हैं रोज नई बस्तियां, और सूखते ही जा रहे हैं नदी नाले ताल कूप, पेड़ों से झर रही हरी हरी पत्तियां, लुप्त तो होते जा रहे हैं पर्वत पहाड़ियां, बढ़ रहे हैं कारखाने जल रही हैं भट्टियां, और जनसंख्या वृद्धि यदि यूं ही बढ़ती रही तो निर्झर मिट जाएंगी तेरी सब हस्तियां, निर्झर मिट जाएंगी तेरी सब हस्तियां। जैसा कि अभी वर्षा का मौसम चल रहा है तो एक सवैया छंद देखिएगा।
8: स्वागत है भाई, स्वागत।
7: कि मन भावन सावन माए सखी, बरसात स्नेह लगे यतिनी को, मन भावन सावन माह सखी, बरसात स्नेह लगे यतिनी को, मधु गीत सुनावत कोयलिया, सुच रूप भयो रमणीक मही को, परदेश पिया सुदे आए रही, तन बूंद गिरे हुलसा बतिजी को, सकी साजन साथ नहीं अब के, बिन साजन सावन लागत फीको, बिन साजन सावन लागत फीको। और एक और छवैया छंद देखें साहब बरसात पर, के स्वर गूंज तनाए मलारन के, कजरी बिन गीत को गावन कैसो, स्वर गूंज तनाए मलारन के, कजरी बिन गीत को गावन।

वन कैसो सखी पीपल डाल ही डोले नहीं करियावद रामन भावन कैसो भैया नहीं आयो बुलान हमें सखी बाबुल को घर आंगन कैसो बरसात वही द्रग भीज गए मन भावन ये सखी सावन कैसो मन भावन ये सखी सावन कैसो। और एक छोटा सा गीत निवेदित कर रहा हूँ आप सभी की सेवा में कि यार

0: हो जाएगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ये थे भाई सत्येंद्र सिंह निरक्षर, आपने जो विषय था उस पर बहुत सुंदर छंद प्रस्तुत किए। उसके अतिरिक्त श्रावण मास आसन्न है तो एक वह फुहार भी आपने एक गीत के माध्यम से रखी, धन्यवाद। आइए चलते हैं एक दूसरा स्वर, एक बड़ा स्वर गीत का हमारे मध्य, डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष जी के रूप में उपस्थित है। मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कृपया अपना रचना पाठ प्रस्तुत करें।
3: जी, आज हम संवाद कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं विश्व जनसंख्या के ऊपर। जनसंख्या से ही पृथ्वी प्रभावित है, हम उसको किस ओर ले जाएं, अच्छाई की ओर ले जाएं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं और हैं जो बुराई की ओर ले जा रहे हैं। तो मैं इस संबंध में एक गीत प्रस्तुत करता हूं, शीर्षक है जनसंख्या।
2: स्वागत है।
3: जनसंख्या पर करें विचार, जनसंख्या पर करें विचार, जागृत हो जाए संसार। जनसंख्या पर करें विचार, जागृत

हुआ प्रदूषण का विस्तार, हुआ प्रदूषण का विस्तार, जागृत हो जाए संसार, जनसंख्या पर करें विचार, जागृत हो जाए संसार। पर्यावरण प्रभावित है, जीव शुद्धता आश्रित है, घटने लगी वनस्पतियां, घटने लगी

0: संभावित
1: वाह
0: है,
1: वाह वाह वाह,
0: रोग धोग संभावित है,
1: क्या बात।
0: कुदरत है पालन आधार, कुदरत है पालन आधार, जागृत हो जाए संसार, जनसंख्या पर करें विचार।

0: भिन्न विकार
1: क्या बात है,
0: उपजे नहीं, विभिन्न विकार जागृत हो जाए संसार, जनसंख्या पर करें विचार, जागृत हो जाए संसार, नहीं अंध विश्वास करें, नहीं अंध विश्वास करें, सुखद भविष्यत आस करें, सुखद भविष्यत आस करें, सजग रहे संभले दुनिया, सजग रहे संभले दुनिया, शुद्धिकरण विकास करें, शुद्धिकरण विकास करें, रोकें जो कुछ है बेकार, रोकें जो कुछ है बेकार, जागृत हो जाए संसार, जनसंख्या पर करें विचार, जागृत हो जाए संसार। और अंत में इसका कि जनसांख्यिकी न बढ़ पाए, जनसांख्यिकी न बढ़ पाए, जग उन्नति पर चढ़ पाए, शिक्षित हों विज्ञान पढ़ें, शिक्षित हों

0: संसार
1: बढ़िया बढ़िया।
0: जनसंख्या पर करें विचार, जागृत हो जाए संसार।
2: बहुत बहुत
1: वाह
2: धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष जी। जनसंख्या पर विचार से संबंधित रचना आपने पूरी गहराई से पड़ताल प्रस्तुत की इस समस्या की, और ये मनुष्य के अंतर चेतना को झकझोरने का एक तरह से प्रयास किया आपकी
0: जी,
2: कविता के भावों ने, आपको बहुत धन्यवाद। आइए गीत और
0: आभार।
2: छंद की इस विधा के उपरांत काव्य की एक सशक्त विधा जो आज के समय में सर्वाधिक प्रासंगिक है, और वह है व्यंग। एक व्यंगकार के रूप में अलीगढ़ से चलकर आए भाई वेद प्रकाश मणि जी हमारे मध्य हैं। आइए सुनते हैं कि वो अपने व्यंग के माध्यम से आज के विषय पर क्या कहते हैं। आए भाई वेद प्रकाश मणि जी।
3: नमस्कार साथियों, भौतिकवादी युग में बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रभाव निसंदेह देश, समाज एवं परिवार में कुछ विसंगतियों के रूप में अवश्य ही पड़ता है, ये मेरा अपना मानना है। इसलिए नियंत्रण एवं संतुलन बनाए रखना भी बहुत जरूरी। तो कुछ विसंगतियां पारिवारिक स्थिति के रूप में आपके समक्ष रखने का प्रयास और कुछ सुझाव भी। विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है, विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है, नए नए आयाम गढ़ रही है। विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है, नए नए आयाम गढ़ रही है। चांद पर पहुंच रहे हैं लोग, किंतु मानवता सिकुड़ रही है, किंतु मानवता सिकुड़ रही है। वैसे तो दो और दो चार होते हैं, चूंकि संख्या संवाद विषय सामिक गोष्ठी कि वैसे तो दो और दो चार होते हैं, मिलने पर मधुर व्यवहार होते हैं। वैसे तो दो और दो चार होते हैं, मिलने पर मधुर व्यवहार होते हैं। वहाँ संख्या बल मायने नहीं रखती, जहाँ पर संगठित परिवार होते हैं, जहाँ पर संगठित परिवार होते हैं। और कुछ दृश्य मैं आपके समक्ष और रखना चाहता हूँ। पारिवारिक स्थिति देखिए कि यदि इच्छाओं की भूख सिर चढ़ने लगी है, यदि इच्छाओं की भूख सिर चढ़ने लगी है और स्थिति

अपनों में दरार भीतर पड़ने लगी है, बाहरी हस्तक्षेप समझो बढ़ने लगी है, बाहरी हस्तक्षेप समझो बढ़ने लगी है। और जब से घर में मतभेद बढ़ने लगे हैं, कि जब से घर में मत

हैं, वजह यही कि लोग फिर बिछुड़ने लगे हैं, वजह यही कि लोग फिर बिछुड़ने लगे हैं। और परिवार का एक दृश्य और देखिए कि घर में चार बहू बेटे और बेटियां, एक आप अनुमान लगाइए कि परिवार में कितने सदस्य हैं, फिर भी ये स्थिति क्यों कि घर में चार बहू बेटे और बेटियां, फिर भी मात पिता को कम है रोटियां, कि घर में चार

हैं बोटियां, बंटवारे के संग खुलती लंगोटियां, बंटवारे के संग खुलती लंगोटियां। और आज जो हमारे परिवार में कुछ ऐसे वृद्ध जनों की स्थिति उत्पन्न हुई है कि जिनको वृद्ध आश्रम में रहने का भी एक दुर्भाग्यवश कारण रहता है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं कहना चाहता हूं कि माँ बाप कितने लाचार हो जाते हैं, तब वो कहते हैं कि बेवजह लबों पे जिनके फिर से पहरे हैं, कि बेवजह लबों पे जिनके फिर से पहरे हैं, मत पूछिए कि घाव और कितने गहरे हैं, कि बेवजह लबों पे जिनके फिर से पहरे हैं, मत पूछिए कि घाव

बहरे हैं, जब अपने ही लोग गूंगे अंधे बहरे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि अपेक्षा व उपेक्षा से कुछ हार जाते हैं, अपेक्षा व उपेक्षा से कुछ हार जाते हैं, इसीलिए विरोधी बाजी मार जाते हैं। अपेक्षा व उपेक्षा से कुछ हार जाते हैं, इसीलिए विरोधी बाजी मार जाते हैं। गुरु माता पिता अन्य का जो प्यार पाते हैं, वो सबका साथ पाके लक्ष्य पार जाते हैं, वो सबका साथ पाके लक्ष्य पार जाते हैं। और जो आज कुछ विसंगति है समाज में, देश में, उसको मैं व्यंगात्मक रूप से भी कहना चाहता हूं कि फिर से शिकारी आए हैं एक नाव में, कि फिर से शिकारी आए हैं एक नाव में, जाने कितनी मछली फंसेंगी दाव में। कि फिर से शिकारी आए हैं एक नाव में, जाने कितनी मछली फंसेंगी दाव में। रूप बदल के आए हैं फिर से गांव में, खलल पड़ेगी गांव की ठंडी छांव में, खलल पड़ेगी गांव की ठंडी छांव में। और एक मन गीत के माध्यम से मेरा मन है कि आप तक मैं वो बात पहुंचाऊं कि मन गंगा है तन पावन है, धरती पर सब मन भावन है। मन

0: वृंदावन है।
1: वाह
0: और
1: वाह वाह,
0: अंतिम बंद देखिए,
1: स्वागत भाई।
0: मन ने संयम यदि तोड़ा है, पर्याप्त न लगता थोड़ा है। मन ने संयम यदि तोड़ा है, पर्याप्त न लगता थोड़ा है। यदि संतुष्टि चादर ओढ़ा है, सुख ने दामन ना छोड़ा है। यदि संतुष्टि

0: नावन है।
1: बहुत सुंदर भाई वेद
0: बहुत बढ़िया।
1: प्रकाश मणि जी।
0: और इसी गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए आज जो इस गोष्ठी का श्रेष्ठ संचालन कर रहे हैं हमारे भाई डॉक्टर मुकेश मणकांचन जी, जो कि सिरसागंज की माटी से यहाँ हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस काव्य गोष्ठी में भी उनकी भी अपनी काव्य वाणी के माध्यम से अपना योगदान दें। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं श्री
1: स्वागत
0: मुकेश मणकांत जी।
1: स्वागत। बहुत धन्यवाद भाई मणि जी। बहुत सुंदर गोष्ठी, संदेश प्रद रचनाओं का वाचन, गीत, छंद और व्यंग, ये विभिन्न विधाएं यहाँ हमने देखी। मैं चाहता हूँ कि आगरा आकाशवाणी के क्षेत्र में ब्रजभाषा के प्रति लोगों का जो प्रेम है, एक ब्रजभाषा का छोटा सा लोकगीत, समय की अपनी सीमा है और इसी विषय पर, यद्यपि बातें वो पूर्व की कविताओं में वही हैं लेकिन थोड़ा सा स्वरूप बदला हुआ है, सुनिएगा।
0: स्वागत स्वागत।

अदबी बिचारी, सुनो तुम भैया बात हमारी, संसाधन छोटे पड़ गए हैं, आश्वासन झूठे पड़ गए हैं।

हाल बिगारी। सुनो तुम भैया बात हमारी, धरा पर संकट आयो भारी, धरा पर संकट आयो भारी। और क्या स्थितियां हैं, बढ़ती जनसंख्या का क्या दुष्प्रभाव है कि खेत मढ़ैया बट बट कट गए, खेत मढ़ैया बट बट कट गए, रही बची पटवारी चट गए, रही बची पटवारी चट गए। मुश्किल गुजर चल रही घर की,

बरसत हमारी, धरा पर संकट आयो भारी। अब ये गलतियां क्यों हुई कि भूल गयो परिवार नियोजन, भूल गयो परिवार नियोजन, कठिन भयो पेट भर भोजन, कठिन भयो पेट भर भोजन, खर्चा बहुत कमाई कम है, खर्चा बहुत कमाई कम है, बढ़ती जाए उधारी, सुनो तुम भैया बात हमारी, सुनो तुम भैया बात हमारी। और अंत में निवेदन एक कवि करता है आप सब श्रोताओं से, मत बदहाली गले लगाओ।

0: मत बदहाली गले लगाओ, फैमिली प्लानिंग को अपनाओ, फैमिली प्लानिंग को अपनाओ। बच्चे दो ही तो अच्छे हैं, बच्चे दो ही तो अच्छे हैं, महके जीवन फुलवारी। सुनो तुम भैया बात हमारी, सुनो तुम भैया बात हमारी, धरा पर संकट आयो भारी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने सराहा। और आइए चलते हैं अब गोष्ठी के शीर्ष की ओर। एक ऐसे काव्य के व्यक्तित्व जिनके पास गहन जीवन अनुभव है, वे कभी एक किसान के रूप में काम करते हैं, कभी एक अधिवक्ता के रूप में काम करते हैं, कभी वो एक राजनीतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में काम करते हैं। अपने जीवन में विभिन्न अनुभव और दृष्टिकोण समेटे हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा सजग जी को। कृपया अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें।
1: धन्यवाद संचालक जी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी। जनसंख्या दिवस का आयोजन है, बिल्कुल मैं इसको मानता हूँ, जनसंख्या का नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें थोड़ा ध्यान ये भी रखना चाहिए कि जनसंख्या का नियंत्रण ऐसा न हो कि जो हमारे रिश्तों को ही खत्म कर दे।
2: क्या बात, बिल्कुल।
1: तो मेरी ये जो रचना है उसको मैंने शीर्षक दिया है कि रिश्तों का क्या होगा। तो एक मिशन बहुत पहले आप लोगों को पता होगा चलाया था सरकार ने कि भाई हम दो हमारे दो, लेकिन अब स्थिति उससे भी और आगे चली गई है, तो मैंने उस पर ही अपने विचार रखे हैं। सुने कि अब तक दो के दो माने थे, आगे जाने क्या होगा, दो के बीच अकेला अब है, परिवारों का क्या होगा, चाचा चाची ताऊ ताई कौन इन्हें पहचानेगा, जीजा जीजी फूफा फूफी कैसे कोई जानेगा, होगी मात अकेली जिसकी मौसी किसे बताएगा, होगा अगर अकेला बालक यह जग बहुत सताएगा, वह भी जाने कहाँ बसेगा, वो अकेला है उसका क्या पता वो कहाँ बस जाएगा, वह भी जाने कहाँ बसेगा, घर वालों का क्या होगा, अब तक दो के दो माने थे, आगे जाने क्या होगा, खड़े रहेंगे महल तिवारे सुने सब रह जाएंगे, बाहर जाने पर निगरानी तुम किसको कह जाएंगे, दुख में सुख में सदा अकेला कैसे मन लग पाएगा, चारों ओर लगेगा सूना अपना नजर न आएगा, रह जाएंगे मात पिता ही फिर रिश्तों का क्या होगा, अब तक दो के दो माने थे आगे जाने क्या होगा, देवर भाभी जेठ जेठानी कहने भर की बातें होंगी, नेग टेग के गीतन होंगे नहीं जगानी रातें होंगी, बिना बहन कब राखी होगी, भैया दूज कहाँ होगी, देवर भाभी की होली जी घर घर धूम कहाँ होगी, भाई चारा मिट जाएगा बंधु प्रेम का क्या होगा, अब तक दो के दो माने थे आगे जाने क्या होगा, दुनिया की इस चकाचौंध में कितने लोग सफल होंगे, माता पिता से अलग लाडले आज नहीं तो कल होंगे, शिक्षा पाने पुत्र अकेला परदेशी बन जाएगा, माता पिता का जीवन दुष्कर एकाकी बन जाएगा, बेटा अगर नहीं लौटा परदेश चला गया पढ़ने के लिए और नहीं लौटा क्या होगा, बेटा अगर नहीं लौटा तो माता पिता का क्या होगा, अब तक दो के दो माने थे आगे जाने क्या होगा। एक कहावत है कि मूल से ब्याज ज्यादा प्यारी होती है, ब्याज मूल से प्यारी जाता समझो दादा दादी से, इसीलिए तो पोता पोती सदा लिपटते दादी से, मधुर तोतली बोली सुनकर फूले नहीं समाते हैं, तनिक चोट लग जाए उनको आंसू बहुत बहाते हैं, ख्वार बुढ़ापा बिना उन्हीं के, ख्वार बुढ़ापा बिना उन्हीं के अंतर जाने क्या होगा, अब तक तो के दो माने थे आगे जाने क्या होगा, सदियों की प्राचीन रिवाजें कैसे कौन निभाएगा, परिवारों की बिगड़ी बातें कैसे कौन बनाएगा, अब तक एक परिवार में कहीं कोई बात बिगड़ गई तो परिवार इकट्ठा हुआ तो मिलकर उस बात को बना लेते, लेकिन अब क्या होगा कि परिवारों की

0: बिगड़ी बातें कैसे कौन बनाएगा, मात पिता को कंधा देने पासन कोई परिवारी, मात पिता को कंधा देने पासन कोई परिवारी, तब बेटे को वर्थी तक भी हो जाएगी अति भारी, तब बेटे को वर्थी तक भी हो जाएगी अति भारी, बस पछतावा रह जाएगा, बस पछतावा रह जाएगा, हाथ हमारे क्या हुआ, अब तक दो के दो माने थे आगे जाने क्या हुआ, अब तक दो के दो माने थे आगे जाने क्या हुआ। धन्यवाद,
1: बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आपने एक और पहलू, एक नया आयाम रिश्तों की तरफ आपने संकेत किया कविता के माध्यम से। आज की इस काव्य गोष्ठी में हम सब ने विश्व जनसंख्या दिवस के जो उद्देश्य हैं, जो चिंताएं हैं पूरी दुनिया की, उन चिंताओं के संबंध में अपनी अपनी राय कविता के माध्यम से रखी, और हम आशा करते हैं कि इन विचारों से प्रेरित होकर हम समस्या के समाधान के लिए हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कदम बढ़ाएगा। आज की काव्य गोष्ठी के लिए मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा जी सजग, डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष जी, श्री सत्येंद्र सिंह निर्जर जी, श्री वेद प्रकाश मणि जी, सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे विश्व जनसंख्या दिवस पर केंद्रित काव्य गोष्ठी संख्या संवाद। प्रतिभागी कवि थे डॉ शेषपाल सिंह शेष, सुरेंद्र सिंह वर्मा सजग, सत्येंद्र सिंह निर्झर, वेद प्रकाश मणि। इस काव्य गोष्ठी का संचालन कर रहे थे मुकेश कुमार उपाध्याय। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का राग रामदासी मल्हार में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का राग रामदासी मल्हार में ख्याल गायन। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टिलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीजी का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियू को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. India and Australia today adopted a